मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 14वीं तिथि, तदनुसार 4 जून सन 2026। सुबह के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हैं कि उसकी चमक से आसमां के तारे छुप गए, चारों ओर सारे फूल खिल गए और पंछी अपने सफर को निकल पड़े। बहती हवाओं की ताजगी एक नई जिंदगी की कहानी को बयां कर रही है और कह रही है कि जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। आगे बढ़ने के इसी संघर्ष और मंजिल को पा लेने के हौसले के साथ लेकर नमस्ते लखनऊ का एक और उत्साह और उमंगों भरा अंक, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। सुप्रभात लखनऊ, नमस्कार।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6 बजे हैं, करते हैं सुबह सवेरे की शुरुआत देश दुनिया की खबरों के साथ। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से, बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया।

0: है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के आज के अंक में पहली मुलाकात किसान भाइयों के साथ। कार्यक्रम है कृषि चर्चा। आज कार्यक्रम में सुनिए भेंट वार्ता, गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर शिवनायक सिंह से भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां मिठास की फसल इस समय आपके खेत में है तो वहां सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं गन्ना वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय जहां गन्ने की फसल खेत में है तो सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें किसान भाई बहन।
3: जी किसान भाइयों, बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों, इस समय हमारी गन्ने की फसल खेतों में है। एक वो फसल है जिसको आपने सितंबर अक्टूबर बोया गया होगा, जिसको कि हम शरदकालीन गन्ना कहते हैं। दूसरा गन्ना हमारा है जो फरवरी मार्च में बोते हैं। और तीसरे गन्ने की फसल हम उसको कहते हैं जब गेहूं की फसल काट करके और विलंब में गन्ने की बुआई की जाती है। तो जो शरदकाल में गन्ना बोया हुआ है तो उसमें कल्ले निकलने का समय पूरा हो चुका है, उसमें भरपूर कल्ले निकल आ चुके होंगे। आगे कल्ले निकलने से उनको रोकना है, लिहाजा ये ज़रूरी है कि अब आप अपने खेत में गन्ने की लाइनों के किनारे किनारे मिट्टी चढ़ाने का काम शुरू कर दें, जिससे कि जो बाद में जो निकलने वाले कल्ले हैं वो ना निकलें। क्योंकि बाद में जो कल्ले निकलते हैं वो पहले से जो निकले हुए कल्ले हैं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और हमारी उपज में गिरावट का कारण बनते हैं। दूसरी हमारी फसल जो बसंतकालीन गन्ना है या लेट में बोया हुआ गन्ना है, तो उसमें कई एक हमारी गन्ने की फसलें होंगी जिसमें कि कल्ले निकलने की भी अवस्था चल रही है
2: जी।
3: तो ऐसे में देखिए, इस समय वातावरण में बहुत शुष्कता है, पानी बरस नहीं रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी गन्ने को तो चाहिए। लेकिन किसान भाइयों से मेरा पूरा निवेदन है, गन्ने के खेत में जो है ना फ्लड मेथड से गन्ने की सिंचाई ना करें।
2: डॉक्टर साहब, गर्मी बहुत है, चरम पर है
3: जी,
2: तो ऐसे में फसल की प्यास बुझाना जरूरी है
3: जी।
2: तो सिंचाई का उपयुक्त समय क्या होगा?
3: देखिए, ऐसा नहीं कि सिंचाई के जो उपयुक्त समय है सुबह शाम अगर किया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहता है।
2: डॉक्टर साहब, कोई टॉप ड्रेसिंग भी करनी है इस समय?
3: शरद काल का गन्ना है, वहाँ अगर आप टॉप ड्रेसिंग गन्ने में यूरिया की कर चुके हों तो ठीक है। लेकिन जो बसंत काल में बोया हुआ गन्ना है या जो लेट में बोया हुआ गन्ना है, उसमें आपको यूरिया की टॉप ड्रेसिंग अवश्य करनी है।
2: डॉक्टर साहब, गन्ने की फसल जो इस अवस्था में है तो फसल सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है।
3: बहुत ही समसामयिक आपने प्रश्न पूछा है। इस समय देखिए, गन्ने में जो शीर्ष वेधक है, ऐसे में कीटनाशक दवा का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। कि एक रसायन आता है जिसको कि हम क्लोरेंट्रा नीली प्रॉल के नाम से जानते हैं, इसकी 150 मिलीलीटर दवा को 400 लीटर पानी में मिला करके आप गन्ने की लाइनों के किनारे किनारे ड्रेंचिंग करनी है, यानी पौधों को भिगो है, प्रति एकड़ गन्ने की लाइनों के किनारे किनारे प्रयोग करना है। गन्ने के खेत में समुचित नमी होनी चाहिए, यदि नमी नहीं भी है तो आप इसको प्रयोग में ला करके यानी ड्रेंचिंग कर दें और तत्पश्चात पानी चला दें, तो जिससे क्या होगा ना

0: कि ये दवा गन्ने की पौधों के अंदर पहुंच जाएगी और जो कीड़ा लगा हुआ है वो नियंत्रित हो जाएगा और जो लगने वाले कीड़े हैं वो भी नहीं लगेंगे। जैविक नियंत्रण भी हमारे गन्ने की खेती में किया जा सकता है। और इसको ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम, ट्राइकोकारे 50,000 जो RGV अंडे होते हैं ये 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होते हैं और ये बहुत ही सस्ते होते हैं। इन कार्डों को चार चार स्ट्रिप उसमें होती हैं, उनको निकाल करके आप गन्ने की पत्तियों के नीचे आपको स्टेपलर मार करके उसको
1: चिपका देना।
0: चिपका देना है और ऐसे आपको 1 हेक्टेयर में 10 स्ट्रिप आपको लगानी है। तो इस तरह से आप जो है ना जैविक नियंत्रण विधि से भी आप गन्ने की कीड़ों का नियंत्रण कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे
0: जी
1: गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा नंबर है 94-151-52-102, 94151-52102।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं मिठास के किसान भाइयों बहनों का?
0: बीमारी रहित बीज अगर गन्ने की बुआई करेंगे तो आप इस गन्ने की जो लाल सड़न की बीमारी है उससे काफी हद तक मुक्ति पा सकते हैं।
1: डॉक्टर SN सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें इस समय किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। डॉक्टर शिव नायक सिंह से भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय, कार्यक्रम कृषि चर्चा के अंतर्गत। मीडियम वेव के मीटर पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 6:10 हुए हैं, समय हो चला है कार्यक्रम सुविचार का। आज का विषय संस्कार, स्वर डॉक्टर शीबा राकेश का।
3: मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके ज्ञान या पद में नहीं बल्कि उसके संस्कारों में निहित है। ज्ञान किसी को बाहरी जगत का अधिकारी बना सकता है किंतु संस्कार ही उसे भीतर से महान बनाते हैं। यही कारण है कि भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति केवल बौद्धिक विकास तक सीमित नहीं थी बल्कि वो विद्यार्थियों के चारित्रिक उत्थान और नैतिक परिष्कार का साधन भी थी। प्राचीन भारत में शिक्षा का केंद्र गुरुकुल हुआ करते जहाँ विद्यार्थी केवल गणित, व्याकरण, वेद वेदांग या अस्त्र शस्त्र चलाना ही नहीं सीखते थे बल्कि सबसे पहले स्वनियंत्रण, अनुशासन और संयम का अभ्यास भी करते थे। गुरु का आचरण विद्यार्थियों के लिए एक जीवंत पाठ्य पुस्तक होता। शिष्य उनके आचार विचार से प्रेरणा लेते और जीवन में उन मूल्यों को उतारते थे। मनुष्य का मन यदि असंयमित हो तो वो उसका सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होता है। मन में उठने वाली वासनाएं, इच्छाएं और विकार व्यक्ति को भटका देते हैं। इसी को रोकने के लिए शास्त्रों में भी कहा गया है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि मन विकारों में फंस गया तो वो पतन का मार्ग प्रशस्त करेगा और यदि साधना द्वारा शुद्ध कर लिया गया तो वही मुक्ति का द्वार भी बन सकता है। एक विद्वान व्यक्ति यदि ईमानदार ना हो तो उसका ज्ञान समाज के लिए खतरा बन सकता है। एक बुद्धिमान यदि चरित्रहीन हो तो उसकी प्रतिभा विध्वंस का साधन बन सकती है। एक शिक्षित व्यक्ति यदि संवेदनहीन हो तो वो समाज को बांधने के बजाय तोड़ देगा। इसीलिए शिक्षा का पहला लक्ष्य ये होना चाहिए कि विद्यार्थी सुसंस्कारी और आत्मानुशासित नागरिक। संस्कार मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख सुविधा जुटाना नहीं बल्कि समाज और मानवता के लिए योगदान देना है। संस्कार हमें कठिनाइयों से लड़ने का साहस देते हैं। वो हमें वाणी का माधुर्य, व्यवहार की शालीनता और आचरण की पवित्रता सिखाते हैं। वे लोभ, ईर्ष्या और स्वार्थ जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से बचाकर हमें सेवा, सहयोग और परोपकार की राह पर ले जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, इन्हें टालना संभव नहीं, परंतु इन्हीं कठिनाइयों में ये परखा जाता है कि मनुष्य का मन कितना दृढ़ और संस्कारित है। आलस्य और प्रमाद मनुष्य को नीचे गिराते हैं, परिश्रम और आत्मसंयम उसे ऊपर उठाते हैं। स्वार्थ और छल जीवन को अंधकारमय करते हैं, त्याग और सेवा जीवन को दिव्य बना देते हैं। वास्तव में विपत्तियां ही वो कसौटी हैं जिस पर मनुष्य के संस्कार परखे जाते हैं। शास्त्रों और संतों ने बार बार यही शिक्षा दी है कि स्वयं को जीतना ही सबसे बड़ी विजय है। वाणी मधुर हो, कर्म पवित्र हो और विचार उदात्त हो, धन संपत्ति क्षण भंगुर है पर संस्कार स्थायी हैं। ये सत्य है कि भौतिक प्रगति आवश्यक है, परंतु यदि उसके साथ आंतरिक संस्कार ना हो तो वो प्रगति अधूरी और विनाशकारी सिद्ध होगी। आज जब संसार भौतिकता, स्पर्धा और उपभोगवाद की दौड़ में उलझा हुआ है, तब ये और भी आवश्यक हो गया है कि हम अपने मन को संस्कारित करें। विद्यालय और विश्वविद्यालय केवल विद्या के केंद्र ना होकर

0: पवित्र निर्माण के तीर्थ बने। घर परिवार में माता पिता बच्चों को केवल सुविधाएं ही ना दे बल्कि अच्छे संस्कार भी दे। समाज को अपने उत्सव और परंपराओं के माध्यम से लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग और सेवा भाव जगाना चाहिए। संस्कारित मन ही जीवन को सच्चा वैभव प्रदान करता है। शिक्षा, धन, पद, प्रतिष्ठा, ये सब तभी सार्थक है जब उनके साथ आंतरिक शुचिता और सुसंस्कार जुड़े हों। जो मनुष्य अपने मन को अनुशासित करता है, सच्चे अर्थों में वो ही विजयी कहलाता है। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और सच्चे अर्थों में मानव जीवन का लक्ष्य भी यही है।
1: संस्कार, डॉक्टर शिवा राकेश के स्वर में इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुविचार। मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ के सफर में अगला पड़ाव ईश्वर की आराधना का। सुबह के 6:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आराधना।

कर्तव्य ही धर्म है, प्रेम ही ईश्वर है, सेवा ही पूजा है और सत्य ही भक्ति है। और इसी भक्ति भाव से आइए करते हैं आराधना कार्यक्रम की शुरुआत महेंद्र कपूर के स्वर में इस भक्ति गीत के साथ।

भटक भटक के मैं दुनिया हारा, मुश्किल में दिया न कोई साथ, सुलझ गई हर एक मुश्किल, माता रानी ने जब पकड़ा हाथ।

0: वाणी शीतल चंद्रमा मुखमंडल सूर्य समान, गुरु चरणन तिरलोक है गुरु प्रभु अमृत की खान।
1: गुरु की वाणी सो रंग लाए, गुरु

हरी हरी जपत फिरे कर्म किए न एक, फिर जग रोत फिरे हरि हित किए न एक। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है, और यही है हरि का नाम।

जब भी टूटने लगे हौसला और आस, भगवान याद दिलाती हैं मैं हूँ तेरे पास। ईश्वर के स्मरण के साथ और इस भक्ति गीत के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज आपने जिन कलाकारों को सुना वो हैं महेंद्र कपूर, नरेंद्र चंचल, संत अनूप सिंह और लता मंगेशकर।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आराधना। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। प्रभु के सिमरन में अगली प्रस्तुति श्री रामचरितमानस गान, आइए सुनते हैं।

अवध का राजपद अस्वीकार करते हुए भरत पश्चाताप के आंसुओं में डूब जाते हैं। राज सिंहासन पर बैठने का प्रस्ताव सुनकर उन्हें उस प्राणी का स्मरण हो आता है जिसकी ग्रह दशा विपरीत हो गई हो, जो वायु रोग से पीड़ित हो और ऊपर से जिसको बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और इन सब लक्षणों से मुक्ति पाने के लिए जिसे मदिरा पिलाई जा रही हो। ये कैसा उपचार है भला? कैकेयी का पुत्र होने के नाते संसार में जो कुछ उनके योग्य था, विधाता ने उन्हें सब कुछ दे दिया। विडंबना ये है कि दशरथ का पुत्र और श्रीराम का छोटा भाई होने का गौरव उन्हें व्यर्थ ही मिला। उनके मन में प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि कुमाता कैकेयी को छोड़ और कौन कहेगा कि जो कुछ हुआ

वो अच्छा ही हुआ है। भरत को ये भय नहीं कि जगत उन्हें बुरा कहेगा। उन्हें अपना परलोक बिगड़ने की भी चिंता नहीं। उनके हृदय में तो बस एक ही आग प्रज्वलित है कि वो श्री राम तथा सीता के दुख का कारण बने। भरत लक्ष्मण के भाग्य की सराहना करते हैं, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर श्री राम के चरणों में मन लगाया और इस प्रकार अपना जीवन सार्थक किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, संगीत निर्देशक सतीश भाटिया और गायक कलाकार सुरेश वाडेकर। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 हुए हैं। संस्कृत में समाचार सुनिए दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: सभा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्ली राज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसंतप्त परिवारान् प्रति गहन संवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 7 बजे हैं नमस्ते लखनऊ के सफर में, अब बातें सेहत की। कार्यक्रम है स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय गर्मी में लू से बचाव। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और सूरज अपनी तपिश से जमीन को झुलसाने लगता है, वैसे वैसे हमारे शरीर पर इसका असर दिखने लगता है। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अप्रैल से जून के बीच जो गर्म हवाएं चलती हैं, उन्हें हम लू के नाम से जानते हैं। ये न सिर्फ गर्म हवा होती है बल्कि शरीर के तापमान को असंतुलित करने वाली एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन सकती है। आज हम बात करेंगे कि गर्मी में लू से कैसे बचा जाए और क्या सावधानियां हमें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनानी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें और सुरक्षित भी। श्रोताओं, लू लगना कोई मामूली बात नहीं है। जब वातावरण का तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंचता है और हवा में नमी कम होती है, तब ये गर्म हवाएं शरीर से तेजी से पसीना सुखा देती हैं। शरीर में मौजूद जल तत्व और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ जाता है। इसका नतीजा ये होता है कि व्यक्ति को सिर दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, उल्टी, घबराहट, बुखार और कई बार बेहोशी तक महसूस हो सकती है। खास तौर पर छोटे बच्चे, बुजुर्ग और वे लोग जो दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे कि मजदूर, किसान, ट्रैफिक पुलिस, उनके लिए लू गंभीर खतरा बन सकती है। इसलिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गर्मी में खुद को सूरज की सीधी तपिश से बचाना ही सबसे असरदार उपाय है। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का समय सबसे अधिक संवेदनशील होता है। इस समय बाहर निकलना अगर जरूरी ना हो तो घर में ही रहें, और अगर निकलना ही पड़े तो सिर पर हल्का गीला कपड़ा, टोपी या छाता जरूर रखें। शरीर को पूरी तरह ढकने वाले हल्के सूती कपड़े पहने और आंखों को धूप से बचाने के लिए चश्मा जरूर लगाएं। पानी पीना लू से बचाव में सबसे बड़ा सहारा है, लेकिन ये पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए ही नहीं बल्कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए पीना चाहिए। दिन में बार बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें। इसके अलावा बेल का शरबत, आम का पन्ना, नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ जैसे देसी पेय शरीर में ठंडक लाते हैं और खोए हुए लवणों की पूर्ति करते हैं। मुनक्का और खजूर को रात भर भिगोकर सुबह खाने से शरीर को ताकत मिलती है और लू से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आहार भी श्रोताओं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मौसम में तली भुनी और मसालेदार चीजों से परहेज करें। हल्का, आसानी से पचने वाला भोजन करें जिसमें मौसमी सब्जियां, दही, फल और तरल पदार्थ शामिल हों। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये सब गर्मी के अनमोल उपहार हैं जो शरीर को ठंडक देने में मदद करते हैं। दोपहर के भोजन में प्याज और पुदीने की चटनी जैसे देसी उपायों का भी इस्तेमाल करें, क्योंकि प्याज में प्राकृतिक शीतलता होती है जो लू से बचाने में मदद करती है। अगर किसी व्यक्ति को लू लग जाती है तो सबसे पहले उसे ठंडी जगह पर ले जाएं, उसके शरीर को ठंडे पानी से पोछें और उसे नमक शक्कर वाला घोल दें, यानी नमक शक्कर वाला पानी दें। यदि हालत गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि लू का असर कई बार जानलेवा भी हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में कई बार इसे मामूली समझ लिया जाता है, लेकिन ये लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है। लू से बचाव केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला नहीं है बल्कि ये एक सामूहिक जागरूकता की भी जरूरत है। गांव और मोहल्लों में छोटे छोटे समूह बनाकर गर्मी के मौसम में बुजुर्गों और बच्चों का ध्यान रखना, उन्हें पानी पिलाते रहना और लक्षणों पर तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है। श्रोताओं, मौसम का बदलना प्राकृतिक

0: क्रिया है, लेकिन इस बदलाव के साथ हमारी आदतें, खान पान और जीवन शैली भी बदले, यही समझदारी है। लू से बचना कठिन नहीं है अगर हम कुछ सरल सावधानियां अपनाएं और अपने शरीर को समय पर राहत दें। ये गर्मी की तपन केवल चुनौती ही नहीं, ये हमें अपनी देसी समझ, हमारे पारंपरिक ज्ञान और शरीर की जरूरतों से फिर से जोड़ने का अवसर भी है। तो आइए इस गर्मी में हम अपने और अपने अपनों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लें, दिनचर्या में ठंडक, संतुलन और सावधानी को शामिल करें। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति, सभी को नमस्कार।
1: गर्मी में लू से बचाव, इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर, कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है मीडियम वेव 401.6 मीटर और सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। सुबह के 7:05 हुए हैं, लीजिए सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। सबसे पहले आपको बता दें दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण होगा 11:10 से। आज इस श्रृंखला में सुनेंगे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को, विषय होगा स्वास्थ्य। दिल्ली केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम सुनेंगे 10:00। और अब आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों के बारे में एक जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर सुनेंगे पंडित डी के दातार का वायलिन वादन। लोकगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगी शिखा श्रीवास्तव, इनके स्वर में अवधि लोकगीत सुनेंगे 9:50 पर कार्यक्रम लोकरंग में और 2:45 पर कार्यक्रम लोक माधुरी में। 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे अनिमेश मुखर्जी के स्वर में गीत और भजन। हिंदी कार्यक्रम लेकर आएंगे 8:00। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे महेंद्र भीष्म की कहानी बचाव, वाचन संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का होगा। खेल जगत इस कार्यक्रम के प्रसारण का समय होगा 7:31 पर। हमारी सायंकालीन सभा के आरंभ में 5:10 पर होगा इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे भेंट वार्ता, राष्ट्रीयकृत बैंक की समेकित विकास योजनाएं। इस विषय पर राजीव कुमार से भेंट करता होंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। नई उड़ान इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 5:45 पर, जिसमें नव दृष्टि के अंतर्गत जानेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा AI की नई पहचान के बारे में। 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र की वार्ता, स्वच्छ गांवों के लिए स्मार्ट समाधान, साथियों की चर्चा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन पर। खेती किसानी ये कार्यक्रम लेकर आएंगे 6:50 पर, जिसमें आज सुनेंगे भेंटवार्ता, सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर श्याम राज सिंह से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसके अलावा कार्यक्रम में कृषि विविधीकरण विषय पर चर्चा के साथ सुनेंगे लोकगीत और जानकारी की बातें। विज्ञान और किसान इस कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 2:30 पर, जिसमें सुनेंगे भेंटवार्ता, कृत्रिम गर्भाधान से पशु नस्ल सुधार। इस विषय पर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। 1:15 पर कार्यक्रम घर आंगन में महिलाएं सुनेंगी नाटक माई मरे मौसी जिए, आलेख प्रतिभा त्रिपाठी का और कलाकार होंगे नूतन वशिष्ठ, राघवेंद्र सिंह, सुधांशु पटेल, कपिल तिलहरी, वंदना श्रीवास्तव और ओम प्रकाश उजाला। इसके साथ ही कार्यक्रम में होगी चर्चा और डालेंगे एक नजर योजनाओं पर। आज सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश बैतबाजी। जिले की हलचल कार्यक्रम का प्रसारण होगा 9:15 पर। आज सुनिए प्रयागराज और बलिया जिले की हलचल। और अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:10 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम विविधा। आज का विषय बच्चे बचे आभासी दुनिया के भ्रम से। प्रेजेंटर होंगी डॉक्टर शिबा राकेश।

इन सभी कार्यक्रमों के साथ श्रोताओं के मनोरंजन के लिए समय समय पर फिल्म संगीत के कार्यक्रम का भी प्रसारण होगा, जिसमें शामिल होंगे पत्र, ईमेल और फोन कॉल्स। तो ये थी आज आकाशवाणी लखनऊ से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। अपने रेडियो सेट पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। सुबह के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। प्रेजेंटर हैं डॉक्टर शीबा राकेश। आज विविधा कार्यक्रम में विषय है बच्चे बचे आभासी दुनिया के भ्रम से।

नमस्कार श्रोताओं, समय है सुबह के 7:10 का और ये समय होता है विविध रंगों से सजे कार्यक्रम विविधा का। और आज की विविधा में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त शिबा राकेश। दोस्तों, आज सुबह जब मैं टहल रही थी तो मौसम बड़ा सुहावना था। गर्मियों के बावजूद एक सुहाना सा सूरज सबका इंतजार कर रहा था। चिड़िया चहचहा रही थी और वहीं बेंच पर बैठे एक 7-8 साल के बच्चे पर मेरी नजर पड़ी। उसकी आंखें मोबाइल की स्क्रीन पर टिकी थीं और उंगलियां तेजी से चल रही थीं। पास से एक बड़ी खूबसूरत रंग बिरंगी तितली गुजरी, पर उस बच्चे ने सिर उठाकर उस तितली को देखा तक नहीं। उसे खबर ही नहीं थी कि उसके आसपास की वास्तविक दुनिया कितनी खूबसूरत है। यही आज की हमारी और आपकी कड़वी हकीकत है। इसीलिए विविधा में मैंने सोचा कि आज बात एक बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर की जाए, और ये विषय है बच्चे और आभासी दुनिया का भ्रम। श्रोताओं, आज का दौर डिजिटल दौर है। इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन इस तकनीक ने हमारे बच्चों के सामने एक समानांतर दुनिया खड़ी कर दी है, जिसे हम आभासी दुनिया या वर्चुअल वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। एक ऐसी दुनिया जो रील्स, वीडियो गेम्स, लाइक, कमेंट्स और फॉलोइंग से बनी है। ये दुनिया देखने में बड़ी रंगीन, बड़ी आकर्षक लगती है, लेकिन असल में ये सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम है। जरा सोचिए, अभी कुछ सालों पहले तक बच्चों की शामें कहाँ बीतती थीं? खेल के मैदान में, जहाँ धूल होती थी, पसीना होता था, दोस्तों से नोक झोंक होती थी और टीम भावना सीखी जाती थी। आज के दौर में बच्चों की शामें कहाँ बीत रही हैं? बंद कमरों में, अंधेरे में, आंखों के ठीक सामने चमकती फोन की स्क्रीन्स पर। और हम इसे आधुनिकता का नाम देते हैं। पबजी या फ्री फायर जैसे कितने ही नकली खेलों में नकली दुश्मनों को मार रहे हैं हमारे बच्चे और नकली जंग जीत रहे हैं। लेकिन इस नकली जंग में वो क्या खो रहे हैं, क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है? वो खो रहे हैं अपना असली बचपन, अपनी सेहत और अपनी सामाजिक समझ। आभासी दुनिया का ये भ्रम बच्चों के कोमल मन को कई तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे पहला तो नुकसान यही है कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर एक गंभीर प्रभाव देखने के लिए मिलता है। घंटों एक ही जगह बैठे रहने से बच्चों में मोटापा, आंखों की कमजोरी और अनिद्रा जैसी बीमारियां आम हो चुकी हैं। मानसिक स्तर पर वो एक शॉर्ट अटेंशन स्पैन के शिकार होते जा रहे हैं। उन्हें हर चीज तुरंत चाहिए, यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मानिए इंस्टेंट नूडल्स। अब असल जिंदगी में चीजें उनके मुताबिक नहीं होती तो वो चिड़चिड़े, हिंसक या फिर पूरी तरह से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। यहाँ दूसरा बड़ा भ्रम है बनावटी पहचान और अकेलेपन का। सोशल मीडिया पर सैकड़ों फॉलोअर्स या फ्रेंड्स होने का मतलब ये नहीं कि बच्चा अकेला नहीं, ये सिर्फ एक संख्या है। असल में बच्चा अपनों के बीच बैठकर भी अकेला महसूस करता है। घातक स्थिति ये है कि वो स्क्रीन पर दिखने वाली चमक दमक को ही सच मान बैठता है। कोई यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, हमारे बच्चे उसकी नकल करना चाहते हैं। जब वो अपनी असल जिंदगी की तुलना उस झूठी दुनिया से करने लगते हैं तो उसके भीतर हीन भावना यानी इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा होने लगता है। यहाँ मेरा मानना है कि कसूर केवल बच्चों का नहीं, एक समाज और अभिभावक के तौर पर हमें भी आत्ममंथन करने की गहन आवश्यकता है। आज कई घरों में देखा जाता है कि जब बच्चा रोता है या तंग करता है तो माँ बाप उसके हाथ में स्मार्टफोन थमा देते हैं ताकि वो खुद शांत रह सके। आजकल कुछ लोग इसे डिजिटल नानी भी कहने लगे हैं। हम अपनी

स्कूलियत के लिए अपने बच्चों को एक ऐसी दलदल में धकेल रहे हैं जहां से वापस आना नामुमकिन है। जब हम खुद घर आकर बात करने के बजाय फोन पर बैठे रहते हैं तो हमारे बच्चे भी वही सीखते हैं। तो अब बात ये आती है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का उपाय क्या है? क्या इसका उपाय ये है कि हम अपने बच्चों से मोबाइल को पूरी तरह छीन ले? नहीं, आज के युग में ना तो ये मुमकिन है और ना ही ये ठीक तरीका है। तकनीक खराब नहीं, उसका अति प्रयोग खराब है। हमें अपने बच्चों को डिजिटल डिटॉक्स और स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट सिखाना होगा। अभिभावकों को कुछ छोटे और जरूरी कदम उठाने होंगे, जैसे हम उन्हें क्वालिटी टाइम दें, उनके साथ बैठें, बात करें, उनके स्कूल, उनके दोस्त और उनकी भावनाओं को समझें। घर में कुछ नियम तय करें और एक नो गैजेट जोन जरूर बनाएं। जैसे खाना खाते समय या सोने से कम एक घंटा पहले परिवार का कोई भी सदस्य फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। क्वालिटी टाइम दें, बच्चों के साथ बैठकर बातें करें, प्रकृति और किताबों से बच्चों को जोड़ें। बच्चों को बाहर घूमने ले जाएं जहां वो पार्क जैसी जगह पर जाकर पेड़ पौधे, मिट्टी और खुले आसमान का एहसास ले सकें। उन्हें कॉमिक्स और कहानियों की किताबें पढ़ने की आदत डालें। परियों की दुनिया आज भी आभासी दुनिया से कहीं ज्यादा रंगीन है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे पहले आप खुद उदाहरण बने। यदि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा फोन छोड़े तो सबसे पहले उपदेश नहीं आचरण ठीक करना होगा। हमें अपने बच्चों को इस आभासी दुनिया के माया जाल से बाहर निकालना ही होगा ताकि वो असली दुनिया में खुलकर सांस ले सकें। वीडियो गेम के ग्राफिक्स चाहे कितने भी सजीव क्यों ना हो, वो असली बारिश की बूंदों और गीली मिट्टी की खुशबू का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। बच्चों को ये सिखाना होगा कि वो एक संवेदनशील इंसान बन सके, असली रिश्ते बना सके। और ये याद रखें कि बचपन दोबारा नहीं लौटता, हमें इसे स्क्रीन के पिक्सल्स में खोने से बचाना होगा। हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि हमारी जिंदगी जो ईश्वर ने हमें दी है वो एक बहुमूल्य वरदान है। हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है, इनके पास असीमित ऊर्जा और बेहतरीन आइडियाज हैं। एक बार अपने बच्चे को अपने साथ बैठा कर ये बताइए कि जिंदगी का मजा दोस्तों के साथ खुलकर हंसने में है, ना कि चैट पर LOL या ROFL लिखने में। असली सुकून माता पिता के साथ चाय की चुस्की में है, ना कि किसी अजनबी के लाइक और कमेंट्स के इंतजार में। जहां हमारे बच्चे इतना समझे वहां उन्होंने असली जिंदगी का मूल्य समझ लिया। मुझे आशा है कि विविधा का आज का अंक आपको अच्छा लगा होगा। कल किसी नए विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे कार्यक्रम विविधा में। तब तक दीजिए शीबा को अनुमति। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा मीडियम वेव 401.61 मीटर पर। यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 7:20 होने को हैं। सुनिए प्रादेशिक समाचार गोरखपुर केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का

0: दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री

0: पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लोकहित के 24 प्रस्ताव पारित किए गए। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दे दी।
1: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम हैं और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर हैं, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
0: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना के तहत मक्का खरीद नीति को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था, आगामी आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा तथा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित जन भागीदारी आधारित कार्यक्रमों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम केवल औपचारिक आयोजन न होकर जन भागीदारी और जन जागरण का व्यापक अभियान बने। बैठक में मुख्यमंत्री ने 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों में आयोजित होने वाली आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा की सूचिता निष्पक्षता और गोपनीयता को बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण GIDA के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है कि सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
3: प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त, 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया, 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं, लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में ही आजमगढ़ बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया।
4: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे

0: द यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है, और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया।
0: केंद्रीय मंत्री श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
2: इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 2 लाख के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा, और करीब 16,000 बसेज हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। प्रस्तुत है मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर एक विशेष रिपोर्ट।
3: सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुँचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में 4-6 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक इस अवधि में न्यूनतम तापमान में भी 2-3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने लोकहित के 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून व्यवस्था सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर की समीक्षा बैठक। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रस्तावित आयोजनों को जन जागरण का व्यापक अभियान बनाने का दिया निर्देश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल।

0: और वाराणसी में आज से शुरू हो रही है ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की, और आप है नमस्ते लखनऊ के सफर में। बारी है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम की। प्रस्तुत है वायलिन वादन, कलाकार हैं पंडित डी के दातार। सबसे पहले सुनते हैं वायलिन पर राग अहीर भैरव। विलंबित रचना 3 ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगीति कर रहे हैं नयन घोष, स्वर मंडल पर राजन माशलेकर और तानपुरी पर मदन बोंगलम और एम दतार।

अभी आप सुन रहे थे वायलिन पर राग अहीर भैरव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं पंडित डी के दतार। वायलिन पर आइए अब सुनते हैं राग मिश्र भैरवी, रचना कहरवा ताल में निबद्ध है।

वायलिन पर ये थी राग मिश्र भैरवी की प्रस्तुति। कलाकार थे पंडित डी के दतार। आपके साथ तबले पर संगति की नयन घोष ने, स्वर मंडल पर राजन माशेलकर ने, तानपुरे पर मदन बोंगल और एम दतार ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 8 बजे हैं, सुनिए हिंदी समाचार पत्र का समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शाह।
0: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त और ओडीओपी यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति

0: नियुक्ति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
1: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में जीएसटी लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
4: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जाँच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ

0: इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
1: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
0: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती। शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है। तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋतव्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
0: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइन

0: अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को एक गोल से हराकर भारत ख्वातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ बातचीत करेंगे। मोहतरमा रॉड्रिगेज भारत के 5 दिन के दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंची हैं। उनके हमरा मुख्तलिफ महकमों के वजीरों पर मुश्तमिल एक वफ्द भी भारत आया है। इसमें उमूर खारजा, मईशत, खजाने, साइंस और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। मोहतरमा रॉड्रिगेज इससे पहले साल 2015 में वजीर खारजा की हैसियत से और इसके बाद 2019, 2023, 2024 और 2025 में नायब सदर की हैसियत से भारत के दौरे पर आ चुकी हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस बातचीत में भारत वेनेजुएला ताल्लुकात के तमाम तर पहलू ज़ेर गौर आएंगे और मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने के तौर तरीके तलाश किए जाएंगे, जिनमें तवानाई की यकीनी फराहमी, तिजारत, सरमायाकारी, दवासाजी, हिफ्ज़ान सेहत, नकलो हमल और काबिल तजदीद तवानाई के शोबे शामिल हैं। वेनेजुएला का वफद भारत की तकनीकी और सनअती सलाहियत से वाकफियत हासिल करने और इश्तराक के मौके तलाश करने की खातिर तवानाई, दवासाजी और मोटर गाड़ियों के शोबे से वाबस्ता कई मकामात का दौरा भी करेगा। तवानाई और सरमायाकारी के शोबे में भारत वेनेजुएला का एक अहम साझेदार रहा है। भारत के सरकारी मिल्कियत इदारों ने तवानाई के शोबे में वेनेजुएला में काफी सरमायाकारी की है और वो अपनी मौजूदगी बढ़ाने की खातिर मुख्तलिफ मौके तलाश करने के ख्वाहिशमंद है। उम्मीद है कि वेनेजुएला के लीडर के इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे और मुख्तलिफ शोबों में राबतों को तकवियत भी मिलेगी। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज मेघालय के शहर शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। शुमाल मशरकी खित्ते के फरोग से मुतालिक वजारत ने कहा है कि इस इजलास में इलाकाई तरक्की के अहम शोबों के लिए तश्कील दी गई आला सतह की सीएम टास्क फोर्सेज की पेशरफ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास के दौरान सियाहत, ज़िरात, बागबानी, सरमायाकारी के फरोग, दूध, अंडों, मछली और गोश्त में खुद किफालत, खेलों के फरोग, इक्तिसादी कॉरिडोर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा, कनेक्टिविटी और हथकरघा और दस्तकारी के बारे में प्रेजेंटेशन पेश की जाएंगी। उम्मीद है कि इस तबादला ख्याल से मुश्तरक मकासद के हुसूल के लिए रियासतों और मुतल्लिका फरीकों के माबैन तालमेल के साथ इकदाम करने में सहूलत होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। अपने इस दौरे में जनाब अमित शाह पुष्पा बांता पैलेस होटल का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत करेंगे। लंकामूरा के मकाम पर सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ की सरहदी चौकी पर वो जाएंगे और रियासती नीज मरकजी सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ आला सतह की मीटिंग करेंगे। रियासती सरकार ने जनाब अमित शाह के दौरे के सिलसिले में आला सतह की इंतजामी और सिक्योरिटी मीटिंग का भी एहतमाम किया है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कानून साजों से कहा है कि अमरीका और भारत अपने उस तजारती समझौते को हतमी शक्ल देने से महज कुछ हफ्ते दूर हैं जिसका तवील अरसे से इंतजार था। खारजी उमूर से मुतालिक हाउस कमेटी के सवालों के जवाब देते हुए कल रात जनाब रूबियो ने बताया कि वाशिंगटन और नई दिल्ली समझौते को मुकम्मल करने के करीब हैं। जनाब रूबियो ने इस बात को कई बार उजागर किया कि भारत बहरुल काहल खित्ते में भारत अहम स्ट्रेटजिक शराकत दार है। उनका यह बयान दुनिया की 2 सबसे बड़ी और सबसे कदीम जमहूरियत के दरमियान माशी ताल्लुकात की बढ़ती रफ्तार की जानिब इशारा करता है। जनाब रूबियो ने मजीद कहा कि उनके भारत दौरे के दौरान क्वाड के उनके हम मनसबों से भी तबादला ख्याल हुआ। क्वाड ग्रुप में भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लाओ पीडीआर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा थोंग सावान फोम्बी फाने के साथ कल नई दिल्ली में 10वीं भारत लाओ पीडीआर मुश्तरक कमीशन मीटिंग की मुश्तरक सदारत की। मीटिंग के दौरान फरीकैन ने तिजारत और सरमायाकारी, सेहत, तवानाई, डिजिटल कनेक्टिविटी, तरक्याती शराकतदारी, सलाहियत साजी और सकाफत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके अलावा दोनों फरीकों ने खित्ते में भारत आसियान ताउन और पेशरफ्त को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत की। अपनी इफ्तिताही तकरीर में डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और लाओ पीडीआर के दरमियान करीबी सकाफती ताल्लुकात हैं जो बुद्धि

0: हिंदुइज्म और रामायण के मुश्तरक विरसे में नजर आते हैं। जनाब जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात सदियों पुराने हैं, जो गहरे सकाफती और अवाम से अवाम राबतों पर मबनी हैं। दूसरी जानिब लाओ पीडीआर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा ने कहा कि यह मसरूफियत दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे ताल्लुक की अक्कासी करती है और मौजूदा इलाकाई और आलमी माशी गैर यकीनी और चैलेंजों के बावजूद दोनों मुल्कों के मुश्तरक अजायम की यकीन दहानी कराती है। बरतानिया की वजीर खारजा और दौलत मुश्तरक मामलों की वजीर यूविट कूपर भारत के अपने दो रोजा सरकारी दौरे पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। मोहतरमा कूपर का आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात का प्रोग्राम है। वह आज शाम वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगी। वजारत खारजा ने बताया कि मोहतरमा कूपर का दौरा भारत बरतानिया जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पार्लियामानी हल्का और दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक वाराणसी एक बार फिर तारीखी बैन अवी तकरीब का गवाह बनने जा रहा है। G20 मीटिंगों की कामयाब मेजबानी के बाद वाराणसी अब आज और कल ब्रिक्स सकाफती ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेजबानी करेगा। इस मीटिंग में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया समेत 11 मुल्कों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। ये मीटिंग सीनियर सिफारतकारों, पॉलिसी साजों और सकाफती माहिरीन को यकजा करेगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: G20 मीटिंग के दौरान काशी के आलमी शोहरत याफ्ता GI टैग वाली मसनूआत की खसूसी नुमाइश मुनक़िद की जाएगी। नुमाइश के दौरान 6 कारीगर 6 मुनफरिद मसनूआत पेश करेंगे, जो वाराणसी की गुनागुन दस्तकारी रिवायात की अक्कासी करती हैं। ये मसनूआत काशी के सदियों पुराने फन, कारीगरी और सकाफती विरासत का जीता जागता सबूत हैं। नुमाइश के जरिए गैर मुल्की मंदूबीन न सिर्फ इन मसनूआत की इनफरादियत से वाकिफ होंगे, बल्कि मुकामी फनकारों और कारीगरों को अपनी मसनूआत आलमी बाजार तक पहुंचाने का मौका भी मिलेगा। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में भारत गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नज़रिए के तहत काबिल ज़िक्र यकसर तब्दीली के दौर से गुजरा है। इस अरसे के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की फलाह व बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई फ्लैगशिप इकदाम किए। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 सालों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की कोशिशों पर खसूसी फीचर पेश कर रहा है। इसके तहत आज कारोबार को आसान बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदामात पर रोशनी डाली जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत ने पिछले 12 साल के दौरान कारोबार के नज्म व ज़ब्त से मुतालिक माहौल और कारोबार में आसानी में बेहतरी के लिए कई पायदार इस्लाहात की हैं। साल 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल इख्तरा को परवान चढ़ा रही है, जिससे इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल रहा है और सरमायाकारी पर मबनी तरक्की मुमकिन हो पाई है। हुकूमत की कोशिशों से इस साल मार्च के महीने में स्टार्टअप्स की तादाद 2,23,000 हो गई है, जो साल 2016 में महज 500 के करीब थी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए महाराष्ट्र के थाने के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बेसर ने कहा कि रास्त और बराह रास्त टैक्सों में हुकूमत की जानिब से की गई इस्लाहात से इक्तसादी इस्तेहकाम आया है।
2: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
1: साल 2016 में शुरू हुआ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, ख्वातीन कारोबारियों, स्टार्टअप्स, एमएसएमई, अपनी मदद आप ग्रुपों और दिव्यांग जनों को खरीदारी के असल धारे से जोड़ रहा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए जैम पर एक फरोख्त कुनिंदा और कंपनी की CMD कामिनी गुप्ता ने बताया कि जैम का तरीक़ेकार आसान और शफाफ है।
3: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जिम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।

0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज शाम गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है, जो खेलों के आलमी मंजरनामे पर एक तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस बड़े प्रोग्राम में शामिल होंगे। इस चैंपियनशिप के लिए दुनिया भर से योग के मद्दाह और एथलीट्स अहमदाबाद में जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: इस पांच रोजा चैंपियनशिप में अमेरिका समेत 60 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका हिस्सा लेंगे। इसका एहतमाम वर्ल्ड योगासन के तहत किया गया है और योगासन भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। संगे मेल की हैसियत रखने वाले इस प्रोग्राम का मकसद आलमी सतह पर योग और तंदुरुस्ती के बारे में बेदारी फैलाने के साथ साथ आलमी सतह पर खेल मुकाबलों में योग को शामिल करने की राह हमवार करना है। इस मुकाबले में शामिल होने वाले एथलीट्स योगासन के 7 जुमरों में हिस्सा लेंगे। आलमी सतह पर मेयार परख के पैमाने के तहत कुवत, लचक, तवाजुन, पायदारी और दुरुस्तगी की बुनियाद पर योगासन करने वालों को परखा जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में वाकई गेस्ट हाउस में गुज़िश्ता रोज लगी जबरदस्त आग में 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि महलुकीन में 12 गैर मुल्की और 9 भारतीय शहरी शामिल हैं। पुलिस ने कहा कि केस दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात जारी हैं। पुलिस के मुताबिक आग लगने वाली इमारत के मालिक लोकेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान दिल्ली के वजीर आला के दफ्तर ने कहा कि उन खामियों की पूरी संजीदगी से जांच की जाएगी जो इस अफसोसनाक आतिश जदगी वाकई की वजह बनी और जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कल रात ब्रह्मपुर थाने के तहत आने वाले इलाके में एक प्राइवेट अस्पताल में जबरदस्त आग लगने से 3 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हो गए। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, मगरबी बंगाल के हिमालयी जैली खित्ते, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश होने का इम्कान है। फुटबॉल में मेजबान भारत गोवा के मारगाओ में सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम।
2: शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नेपाल की बरसरे इकतदार पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामी छाने की मुलाकात को नुमाया किया है, जिसमें पीएम ने कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। अखबार की एक और अहम खबर है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कबायली अफराद की हमाजहत तरक्की से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि आदिवासियों की हमाजहत तरक्की के लिए उनके पास जाकर उनके मसाइल को समझना होगा। मरकजी हुकूमत फिजाई आलूदगी को कम करने के मकसद से दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलेगी।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वेनेजुएला के कायम मुकाम सदर डेल्सी रोड्रिगेस के साथ आज नई दिल्ली में बातचीत करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज शिलोंग में शुमाल मशरकी काउंसिल के 73वें मुकम्मल इजलास की सदारत करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका और भारत के दरमियान तजारती समझौता चंद हफ्ते के अंदर अंदर तय पा जाएगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरलम और माहे में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहली आलमी योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज अहमदाबाद में शुरू हो रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी शाम को वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और फुटबॉल में गोवा में भूटान को 1 से हराकर भारत खवातीन की सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 8:45 हुए हैं। थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत।

0: विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आकाशवाणी लखनऊ से कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले पहले पहले श्रोताओं के लिए हम बता दें आपको हमारा पता, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com, ये है वो पता जहां पे करना है आपको मेल और फरमाइश करना है अपने पसंद के गीत, अपनी एड्रेस और अपने नाम के साथ में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आज इस खूबसूरत से गाने के साथ में, जिसमें आवाज़ मुकेश की है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और ये गाना है फिल्म इशारा से, जिसके लिए हमने मेल शामिल कर लिया है ग्राम पजौनिया जिला जालौन से सतेंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा का, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान और भाई राजकुमार बुड़ाना का, मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन का, तालिब अंसारी का, राजा कटरा बाराबंकी से, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार और मोहम्मद हसनैन पवार का, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और गुलाम रोड हर गोविंद नगर नवाब शहर पंजाब से सुरिंदर संधू, अनिता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू, प्रीतिशा संधू और मैक्स का। तो चलिए सुनते हैं इस खूबसूरत से गाने को जो है मुकेश जी की आवाज में, फिल्म है इशारा और ये गाना पहुंच रहा है अब आपके रेडियो सेट पर।

आकाशवाणी लखनऊ से ये है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और शामिल हो गया है हमारे इस कार्यक्रम में और कई ढेर सारे मेल हमारे इन श्रोताओं का। मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, रसीद वारसी और यशफ अब्बासी का गांव खारिया ठाणी जिला सिरसा हरियाणा से, सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजारनिया का खैल बाजार पानीपत से, नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी ननक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुगू भाविक सिक्का, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत मोहन, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, पीपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश और ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू, गांव नथना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। और आपके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है फिल्म झुक गया आसमान का ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसमें है आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत शंकर जय किशन का।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आकाशवाणी लखनऊ से यह है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और सुनना चाहते हैं आप भी अपनी पसंद के गीत तो नोट कर लीजिए हमारा पता, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। और इस मेल आईडी पर और भी हमारे पास भी मेल आ चुके हैं। ये हैं अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बलोद, छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, डॉली बेबी, पूजा तामूरिया, राधिका और प्रभा देवी तामूरिया और मास्टर अलकबीर, वर्डिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, दंतरेगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावद से मुश्ताक साहिद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोंड और मोहम्मद शादाब खत्री, बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद से खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया डावर, बेबी हालिमा डावर, बेबी जिकरा डावर और बेबी आयशा खत्री, घूंघट रेडियो श्रोता संघ जिला धार धर्मपुरी से मूसा जी खत्री, ईशा जी खत्री और जाकिर खत्री, गाँव जाखोद से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। और आपके रेडियो सेट पे पहुंच रहा है फिल्म गुलामी का ये ट्रैक लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ में, बोल गुलजार के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस खूबसूरत ट्रैक के बाद में अब आ गई है बारी हमारे अगले श्रोताओं के मेल की, जो हैं याकूब आसमा कुरैशी, यूसुफ आसमा कुरैशी, सरफुद्दीन आसमा कुरैशी, वसीम आसमा कुरैशी, गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामशंकर, पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, रामसागर शाहू, रसूलपुर वाले, गांव फ्रासी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, सरगुजा मैनपाट से सोनम थापा, फातिमा थापा, आदिबा थापा, आसमा थापा, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान, बलिया उत्तर प्रदेश से फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, डब्बू वली बेलदार, शिमला हिमाचल प्रदेश से वली उल्ला डोम, डब्बू उल्ला डोम, रेशमा नाज डोम, बेबी अंसारी डोम, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, बस स्टैंड लखनऊ से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आसमा कौर, धर्मजीत, फातिमा कौर, बटिंडा रोड मंडी डबवली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। और आप सबके रेडियो सेट पर पहुंच रहा है ये खूबसूरत सा ट्रैक जिसे हमने लिया है फिल्म आया सा।

और ये कार्यक्रम का है अंतिम गाना, जिसे हमने लिया है फिल्म दिल तेरा दीवाना से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की है आवाज़। और इस गाने के लिए हमने जिन श्रोताओं के मेल को कर लिया है शामिल, ये हैं फुलेर नगर बीड महाराष्ट्र से बाल प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा और आकांक्षा करवा, ग्राम

ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कामरून निशा, साबिस्ता मोहम्मद, नसीब पलक, लुबना और यश मंसूरी, ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्र वधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया और बाबू कठेरिया। और पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर इस कार्यक्रम का ये अंतिम नजराना।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दिल तेरा दीवाना फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अब समाप्त करने की दीजिए इजाज़त। अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति को नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, ये है आकाशवाणी लखनऊ और हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और बलिया जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्रा का।
1: मई महीने के प्रथम सप्ताह में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह प्रयागराज जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षा मित्रों के वेतन में हुई

0: बढ़ोतरी के लिए उन्हें शुभकामना व बधाई देते हुए कहा कि बढ़े हुए मानदेय के साथ कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी आप लोगों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में खुशहाली आए, यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के कार्यों की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में आप सभी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्कूलों में अब बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब अभिभावक अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जन प्रतिनिधिगणों के साथ कार्यक्रम स्थल पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मई के प्रथम सप्ताह में ही भारतीय सेना की ओर से 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का उद्घाटन किया। यह संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी कमान व मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से 4 से 6 मई तक आयोजित की गई। उद्घाटन अवसर पर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनिधि सेन गुप्ता, आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मौजूद रहे। नॉर्थ टेक सिंपोजियम का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान और शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में रक्षा त्रिवेणी संगम है। रक्षा मंत्री ने कहा, हर कालखंड में वारफेयर का चेहरा बदला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई तकनीक का समावेश होते हुए दुनिया ने देखा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय रक्षा बलों के अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प को दिया, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित प्रभावशाली अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों में और भी मजबूत बनाया। इस आयोजन का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजन को रक्षा त्रिवेणी संगम में इस पवित्र संगम की धारा में साकार होते देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय प्रयागराज एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत में कुल 2,30,121 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें फौजदारी के कुल 1,817 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 80 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जनपद न्यायाधीश प्रयागराज के निर्देशन में 9 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक साथ रहने के लिए समझौता किया गया और एक दूसरे को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। इसी माह के दूसरे सप्ताह त्रिवेणी संगम तट पर नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के द्वारा जनपद के नाविकों को 300 लाइफ जैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में कार्य करने वाले नाविकों एवं संगम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लाइफ जैकेट दुर्घटनाओं की स्थिति में जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबोधन के दौरान नाविकों से अपील की कि वे नाव संचालन के दौरान अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट का प्रयोग स्वयं करें तथा श्रद्धालुओं से भी करवाएं। यात्रियों को भी सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करें और नाव में सवार सभी लोगों के द्वारा जब तक लाइफ जैकेट नहीं पहन लिया जाए तब तक नाव का संचालन नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
1: प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का।
2: बलिया जनपद में पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विकास भवन सभागार में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने की। समारोह में जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 11-11 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना तथा अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर 21,000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि की प्रतीकात्मक चेक पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना और प्रदेश स्तर पर सम्मानित मेधावी

छात्रों के समारोह का अवलोकन किया गया। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के वृक्षारोपण अभियान को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा विभिन्न थीम आधारित वनों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सदस्य सचिव जिला वृक्षारोपण समिति एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया पृथ्वीराज KSB ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 में अलग अलग उद्देश्यों के अनुरूप विशेष प्रकार के वन विकसित किए जाएंगे। शासनादेश के अनुसार मिशन छाया, वंदे मातरम वाटिका, महर्षि चरक, औषधि वन, समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन, अविरल धारा वृक्षारोपण और ग्रीन चौपाल जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि मिशन छाया के तहत हीट वेव से राहत दिलाने के लिए पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, आम और कलम जैसे छायादार वृक्षों का

0: मातरम वाटिका महर्षि चरक औषधिवन समरसवन समृद्धिवन कपिवन ऊर्जावन अविरल धारा वृक्षारोपण और ग्रीन चौपाल जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि मिशन छाया के तहत हीट वेव से राहत दिलाने के लिए पीपल बरगद पाकड़ नीम आम और कलम जैसे छायादार वृक्षों का रोपण सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कराया जाएगा। वहीं वंदे मातरम वाटिका के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर 150 पौधों का रोपण कर विशेष वाटिका स्थापित की जाएगी। बलिया जिला स्वास्थ्य समिति एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य रिपीट जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव-गांव अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 32,000 गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। जिलाधिकारी ने ब्लॉक वार समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित AMIOS को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि हर हाल में 14 अगस्त तक 100% आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक और गांव के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा उसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी AMIOS को ANM एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठक करने को कहा। साथ ही जनपद के शेष 6,53,615 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों से अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जनपद बलिया में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से प्रारंभ हुआ। जनपद में 8,050 प्रगणक एवं सुपरवाइजर कुल 7,005 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में तैनात किए गए हैं जो घर घर जाकर जनगणना 2027 में। अपर जिलाधिकारी जिला जनगणना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जनगणना अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के स्व जनगणना नोडल अधिकारी एवं राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर छवि लाल ने बताया कि
1: समस्त श्रोतागणों से निवेदन करता हूं कि वह भी जनगणना में सहभागिता सुनिश्चित करें और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को 100% सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जिले की हलचल। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
1: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
0: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
2: मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। एक आवश्यक सूचना, प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prasarbharti.gov.in/NIPP/ अथवा akashvani.gov.in/files/nipp.pdf। सूचना समाप्त हुई।

0: लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: अपने रेडियो सेट पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। श्रोताओं, हम आपको आप बता दें, सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण होगा रात्रि 11:10 से, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल को, विषय होगा स्वास्थ्य। इसके साथ ही साथ क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 10:00। इस कार्यक्रम को भी हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे।

शाम 5:10 पर कार्यक्रम युवा तरंग में आज सुनेंगे भेंटवार्ता राष्ट्रीयकृत बैंक की समेकित विकास योजनाएं और इस विषय पर राजीव कुमार से भेंट करता होंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।

आज दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम घर आंगन में महिलाएं सुनेंगी नाटक माई मरे मौसी जिए, आलेख प्रतिभा त्रिपाठी का होगा। और इस नाटक में कलाकार होंगे नूतन वशिष्ठ, राघवेंद्र सिंह, सुधांशु पटेल, कपिल तिल, हरि वंदना श्रीवास्तव और ओम प्रकाश उजाला। शाम 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता, सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन और इस विषय पर डॉक्टर श्याम राज सिंह से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर पर हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में सुनिए आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश बैतबाजी।
4: आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से आज का उर्दू प्रोग्राम लेकर हाजिर है आपका मेजबान शमसुल आरफीन। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, बैतबाजी के तीसरे एपिसोड में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह से आपने हमारे बैतबाजी प्रोग्राम को मोहब्बत दी, उसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। सामईन, चलिए अब हम आज की बैतबाजी की तरफ रुख करते हैं। आज की बैतबाजी में जिन दो टीमों ने हमारी दावत पर लब्बैक कहा है, उनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से है। इन टीमों की बात करें तो टीम ए में हैं मोहतरम जनाब इम्तियाज़ अली साहब और मोहतरमा कहकशा खातून साहिबा, और टीम बी में हैं मोहतरमा दरख्शा खातून साहिबा और मोहतरम जनाब यूसुफ आरिफ साहब। आप दोनों टीमों का हमारे उर्दू प्रोग्राम बिलखसूस बैतबाजी में खैर मकदम है। अब मैं इस बैतबाजी का बाकायदा आगाज करता हूँ। आइए टीम ए के लिए अब मैं अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ता हूँ कि खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, मुझको अब करना ही क्या है सांस लेने के सिवा, और थी शबे तारीख चोर आए जो कुछ थले गए, कर ही क्या सकता था बंदा खांस लेने के सिवा। अलिफ टीम ए के लिए।
5: अजीज

0: जब सर फोर ना ठहरा तो फिर ए संगे दिल तेरा ही संगे आस्ता क्यों हो।
1: हो टीमे के लिए।
2: वो मौज तला तुम क्या समझे, वो लज्जत दरिया क्या जाने।
1: बहुत खूब अंदाज़
2: है। वो मौज तला तुम क्या समझे, वो लज्जत दरिया क्या जाने, जो दूर खड़े थे साहिल पर मझधार की बातें करते हैं।
1: मझधार की बातें करते हैं, टीम बी के लिए नून।
0: नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हैं गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और।
1: कोई दिन और ए के लिए।
2: रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ,
1: आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।
0: एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, एक उम्र से हूँ लज्जत गिरिया से भी महरूम, ए राहत जा मुझको रुलाने के लिए आ।
1: टीमे के लिए आ।
2: अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, अब तक दिले खुश फहम को तुझसे है उम्मीदें, ये आखिरी शम भी बुझाने के लिए आ।
1: वाह आ आ, आपका टक्कर हो रहा है इस वक्त भाई, बॉल आपकी पाले में, टीम बी के लिए अलिफ।
0: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा।
1: क्या शेर है।
0: अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा।
1: मैं तुम्हारा टीम ए के लिए अलिफ। ये अमीर आमिर का शायद शेर है।
3: अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता।
1: क्या शेर है भाई, बहुत खूब।
3: अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता, तेरे चेहरे की कशिश थी कि पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता,
1: वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता।
4: उससे मत नजरें मिला, चढ़ता हुआ सूरज है वो, छीन कर आंखों से तेरी रोशनी ले जाएगा।
1: वाह वाह वाह वाह, ले जाएगा अलिफ टीमे के लिए।
2: अगर ठुकरा दिया हमको बहुत पछताओगे एक दिन, अगर ठुकरा दिया हमको बहुत पछताओगे एक दिन, किसी को चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है।
1: किसी को चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये टीम बी के लिए।
4: ये और बात है कि जबां खोलते नहीं, ये और बात है कि जबां खोलते नहीं, हम भी जवाब रखते हैं तेरे सवाल का।
1: सवाल का अलिफ टीम ए के लिए।
2: ए मौज बला उनको भी जरा दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफान का नजारा करते हैं।
4: न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से।
1: वाह,
4: न जाने कितने दिल बन जाएंगे एक दिल के टुकड़े से, वो तोड़े आयना हम आयना खाना बना देंगे।
1: बहुत खूब, बना देंगे टीम ए के लिए ये।
2: याद करके अपनी बर्बादी को रो देते हैं हम।
1: वाह।
2: याद करके अपनी बर्बादी को रो देते हैं हम, जब उड़ाती है हवाएं तुंद खाके कुए दोस्त।
1: टीम बी के लिए।
0: तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम था तेरे लहजे में आ गया।
2: इतरा रहे हो आज पहन कर नई कुबा, दामन था तार तार अभी कल की बात है।
1: कल की बात है ये टीम बी के लिए। अमीरी जब से आई है तो लहजा उसका बदला है, बड़ा ही तुर्श लहजा है, वो लहजा मार देता है ये।
0: ये वरक वरक तेरी दास्तां, ये सबक सबक तेरे तज़किरे, ये वरक वरक तेरी दास्तां, ये सबक सबक तेरे तज़किरे, करूँ तो कैसे करूँ अलग तुझे जिंदगी की किताब से।
1: ये
3: जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का, ये जला दिया वो बुझा दिया, ये तो काम है किसी और का, न हवा के कोई खिलाफ है, न हवा किसी के खिलाफ है
1: ये टीम बी के लिए।
4: ये कैसा दस्तूरे जुबाबंदी है यार अब तेरी महफिल में, ये कैसा दस्तूरे जुबाबंदी है यार अब तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जबा मेरी
1: ये।
2: ये मेरी जबा ये गजल नहीं, ये मेरी जबा ये गजल नहीं, मैं सुना रहा हूँ कहानियाँ, ये मेरी जबा ये गजल नहीं, मैं सुना रहा हूँ कहानियाँ, कि किसी के अहदे शबाब पर मिटी कैसी कैसी जवानियाँ, कभी आंसुओं को सुखा गई मेरे सोजे दिल की हरारते, कभी आंसुओं को सुखा गई मेरे सोजे दिल की हरारते, कभी दिल की नाव डुबो गई मेरे आंसुओं की रवानियाँ।
1: बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा।

0: शेर है, आंसुओं की रवानिया। नून।
1: नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो,
0: हाँ।
1: नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबा आते आते,
0: कि आती है उर्दू जुबा आते आते। ये टीमे के लिए।
2: ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने,
0: उम्दा शेर है।
2: ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई
0: पाई। ये टीम बी के लिए।
1: ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब,
0: बहुत खूब।
1: ये मसाइले तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बाद ख्वार होता।
3: अहले हवस क्या साथ निभाते, सख्त कठिन थी मंजिल मंजिल, इश्क तो आखिर इश्क ही ठहरा, राहें ढूंढी मुश्किल मुश्किल। जब भी वो नजदीक हुए हैं दिल का ऐसा हाल हुआ है, जब भी वो नजदीक हुए हैं दिल का ऐसा हाल हुआ है, जैसे नैया डगमग डगमग, जैसे दीपक झिलमिल झिलमिल
0: झिलमिल झिलमिल। लाम वाह। और हम आपको बता दें, इस पहले राउंड के दो शेर आप लोग और पढ़ेंगे, एक आप फिर आप, उसके बाद हम राउंड टू शुरू करेंगे। जी।
4: लगानी पड़ती है डुबकियां उभरने से पहले।
0: वाह।
4: लगानी पड़ती है डुबकियां उभरने से पहले, गुरूब का मतलब जवाल थोड़ी है।
0: गुरूब का मतलब जवाल थोड़ी है।
2: ये मुकद्दरों की लिखावटे जो चमक गई वो पढ़ी गई, ये मुकद्दरों की लिखावटे जो चमक गई वो पढ़ी गई, जो मेरे कलम से लिखा गया उसे क्यों किसी ने पढ़ा नहीं।
0: पढ़ा नहीं, बहुत खूब। और आखिरी शेर टीम भी पढ़ेंगे इस राउंड में।
4: निगाह की बरछियां जो सह सके सीना उसी का है।
0: निगाह की बरछियां जो सह सके सीना उसी का है।
4: निगाह की बरछियां जो सह सके सीना उसी का है, हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है।
0: वाह वाह वाह। हमारा आपका जीना नहीं जीना उसी का है। अभी हम लोग और जीते हैं और राउंड टू तक चलते हैं भाई। और पहला राउंड जबरदस्त हो गया माशाल्लाह, बहुत ही खूब आप दोनों ने परफॉर्म किया है। हम ये नहीं कहेंगे कि टीम ए ने अच्छा पढ़ा और टीम बी ने अच्छा पढ़ा, आप दोनों ने बहुत अच्छा पढ़ा है। राउंड टू के लिए आप लोग तैयार है? ये राउंड है लफ्जी राउंड। इसमें हम हर टीम को पांच पांच वर्ड देंगे और उसको उससे एक शेर कहना है, ठीक है? आप लोग तैयार हैं? शुरू करें। टीम ए के लिए पहला वर्ड है, पहला लफ्ज है बीमार।
3: मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ मुझे देखने आना।
0: अरे वाह।
3: मैं मरीज़े मोहब्बत हूँ मुझे देखने आना, परहेज नहीं करना बीमार समझकर।
0: वाह वाह वाह वाह। क्या आप क्या कह रहे थे कि फल फ्रूट भी साथ में लेके आना, वही हम देख रहे थे आप लोगों को। ठीक है, बहुत अच्छा। टीम बी के लिए है लफ्ज दरिया।
1: दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने।
0: दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने।
1: दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने।
0: वाह। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। टीम ए के लिए एक बार फिर से, और इनके लिए जो लफ्ज है वो है रंजिश।
3: रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ।
0: आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। टीम बी के लिए है लफ्ज परचम।
1: तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन,
0: बहुत खूब।
1: तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था।
0: वाह वाह वाह वाह। तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था, मजाज लखनवी। टीम ए के लिए एक बार फिर से लफ्ज है सितमगर।
3: इधर आ सितमगर हुनर आजमाए।
0: इधर आ सितमगर हुनर आजमाए।
3: इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए।
0: वाह वाह वाह। आप लोगों के लिए है, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। बहुत ही खूब। टीम बी के लिए लफ्ज है गजल।
1: अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पल के सवार लूं।
0: बहुत खूब।
1: अभी इस तरफ न निगाह कर मैं गजल की पल के सवार लूं, मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना तुझे आईने में उतार लूं।
0: बहुत ही खूब। तुझे आईने में उतार लूं। टीम ए के लिए लफ्ज है लब।
3: नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है।
0: हाँ, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। बहुत ही खूब। टीम बी इश्क।
1: ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसा बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है।
0: वाह वाह वाह वाह। बहुत ही खूब। टीम ए के लिए लफ्ज है गुल।
3: ये आरजू थी तुझे गुल के रूप

लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में आज की कलाकार शिखा श्रीवास्तव, इनके स्वर में अवधि लोकगीत। आप हम 2:45 पर दोपहर कार्यक्रम लोक माधुरी में भी सुन सकते हैं। इस नकटा गीत के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
1: कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए।
0: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहें, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और कार्यक्रम का पहला नजराना फिल्म नीला आकाश के इस गीत के साथ आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है आवाज़, बोल रजा मेहंदी अली खान के और संगीत मदन मोहन का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं, सुबह के 10:10 हुए हैं। सुनिए न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण, जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे बस कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने से रोकने का प्रस्ताव पारित किया। बांग्लादेश में खसरे के प्रकोप से मृतकों की संख्या बढ़कर 601 हुई। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में, और भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। ब्यौरा हमारी संवाददाता।

0: राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। वो इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 25 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधि मंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद नज़दीक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में लागू हो सकता है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा भी हुई है। रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग तथा कई व्यापक परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकना है। यह प्रस्ताव 208 मतों से पारित हुआ। चार रिपब्लिकन सांसदों ने भी डेमोक्रेट सांसदों का साथ दिया। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को कांग्रेस की मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि प्रस्ताव को अभी रिपब्लिकन बहुमत वाली सीनेट की मंजूरी मिलना बाकी है। यदि सीनेट इसे मंजूरी भी देती है तब भी राष्ट्रपति ट्रंप इसे वीटो कर सकते हैं। इस बीच डेमोक्रेट और कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने कहा है कि सैन्य कार्रवाई से जुड़े फैसलों में कांग्रेस की भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसराइल और लेबनान में संघर्ष विराम को फिर से लागू करने तथा लेबनान के अंदर कुछ विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की है, जहां हिजबुल्ला लड़ाकों की मौजूदगी नहीं होगी। अमेरिका की मध्यस्थता में हुई चौथे दौर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि संघर्ष विराम तभी प्रभावी रहेगा जब हिजबुल्ला पूरी तरह से गोलीबारी बंद करे और लितानी नदी के दक्षिण के क्षेत्रों से अपने सभी लड़ाकों को हटाए। समझौते के अनुसार इन क्षेत्रों की सुरक्षा और नियंत्रण की जिम्मेदारी लेबनान की सेना संभालेगी। दोनों पक्षों ने कहा है कि ये कदम व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप लगातार गंभीर होता जा रहा है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार खसरे से मृतकों की संख्या बढ़कर 601 हो गई है। इन मौतों की पुष्टि खसरे से हुई है, जबकि 511 मौतों को संदिग्ध खसरा मामलों के रूप में दर्ज किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला बीमारी का प्रकोप तेजी से फैल रहा है और इसे रोकने के प्रयास अभी पर्याप्त नहीं है। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेसिस ने बीमारी पर काबू पाने के लिए और तेज कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि इबोला वायरस अब उत्तर और दक्षिण कीवू प्रांतों के साथ साथ पड़ोसी देश युगांडा तक पहुंच चुका है। मई के मध्य से अब तक 344 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है और 60 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, पुर्तगाल, त्रिनिदाद और टोबैगो तथा जिम्बाब्वे को सुरक्षा परिषद

0: का अस्थायी सदस्य चुना है। इन देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। वे 1 जनवरी 2027 से परिषद में अपना कार्यभार संभालेंगे और 31 दिसंबर 2028 तक सदस्य बने रहेंगे। नवनिर्वाचित देश डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया का स्थान लेंगे। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। नासा ने मंगल ग्रह की परिक्रमा कर रहे अपने मेवेन अंतरिक्ष यान के मिशन के समाप्त होने की घोषणा की है। लगभग 6 महीने तक कोई संपर्क न होने के बाद नासा ने पुष्टि की कि 1 दशक से अधिक समय तक चले इस मिशन का अंत हो गया है। वर्ष 2013 में प्रक्षेपित मेवेन का उद्देश्य मंगल ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन करना था। पिछले वर्ष दिसंबर में मंगल ग्रह के पीछे जाने के बाद यान से संपर्क टूट गया था। श्रीलंका के अगुरुथावोटा के बटाकोटा स्थित एक वृद्धाश्रम में आग लगने से 8 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। घायल हुए 8 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वृद्धाश्रम से 51 निवासियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। घटना की जांच जारी है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करना है।
1: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कलात्मक और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार की विजेता भारतीय टीम फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से खेलेगी। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने से रोकने का प्रस्ताव पारित किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में और भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 10:20 हुए हैं। नए तरानों का कार्यक्रम चित्रपट से लेकर हम आएंगे बस कुछ ही पलों में।

0: घर आंगन में है बाहर कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार
2: जुड़ रहा है हर कोना हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब
1: एक ऐसा कार्यक्रम
2: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी
1: विकास की बातें संगीत की मिठास
2: और एक नए भारत की आवाज़
1: जुड़िए हर शाम 5:45 पर
2: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर, और यह है कार्यक्रम चित्रपट से, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं नए तराने। और ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं हम इस पहले पहले ट्रैक के साथ में, जिसे हमने लिया है फिल्म कॉकटेल 2 से। अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की है आवाज़, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के, और संगीत प्रीतम चक्रवर्ती का।

सत्य प्रेम की कथा। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गाना, पायल देव और विशाल मिश्रा की आवाज़ है। AM तुराज ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है पायल देव ने।

0: Thank you so much for such a memorable trip.
1: आकाशवाणी लखनऊ से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा ब्रेक।
2: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
3: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
3: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
4: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
8: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी लखनऊ से ये है नए तरानों का कार्यक्रम चित्रपट से, और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लुका छिपी का ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसमें आवाज है अखिल और ध्वनि भानुशाली की। इस गाने को लिखा है कुणाल वर्मा ने और संगीत दिया है अभिजीत वाग्नेय ने।

शादी में ज़रूर आना, इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, बोल शकील आज़मी के हैं और संगीत कौशिक आकाश गुड्डू का।

0: आकाशवाणी लखनऊ से चित्रपट से कार्यक्रम में समय हो चला है एक और अंतराल का।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
2: 8700001424।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी लखनऊ से ये है कार्यक्रम चित्रपट से, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह और सचिन जिगर को फिल्म जरा हट के जरा बच के में। बोल सचिन अमिताभ भट्टाचार्य के हैं और संगीत सचिन जिगर का।

आकाशवाणी लखनऊ से ये है कार्यक्रम चित्रपट से, और अब आपकी रेडियो सेट पर पहुंच रहा है राघव चैतन्य और जोनिता गांधी की आवाज में चांद मेरा दिल फिल्म का ये ट्रैक, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

ये है आकाशवाणी लखनऊ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से, जहां पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर इस कार्यक्रम का अंतिम नजराना। फिल्म है चांद मेरा दिल, फिल्म है खामोशियां। अरिजीत सिंह की है आवाज़, बोल सईद कादरी के हैं और संगीत बॉबी इमरान का।

0: खामोशियाँ फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज़ में, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है।
1: जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, और वक्त हो चला है फिल्म संगीत के फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें का। तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को निधि चौधरी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जैसा कि ये हमारा फिल्म संगीत का इंटरेक्टिव प्रोग्राम है, तो जल्दी से हम आपको अपना फ़ोन नंबर बता दें ताकि जो भी नए श्रोता आज हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में, वो भी हमें कॉल करके अपने पसंद के गीतों की फरमाइश हमसे कर सकें। हमारा नंबर है 0522-2238852। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 0522-2238852। तो चलिए करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत और जान लेते हैं कि आज हमारे पहले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो
3: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
3: मैं पंशीराम शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील ठाठरी गांव कंठी से।
0: जी परशुराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप?
3: ये हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी करते हैं, तो वहाँ का मौसम और इस समय क्या हो रहा है खेती बाड़ी में, कुछ बताएंगे हमें वहाँ की जानकारी?
3: जैसे दीदी हमने मक्कियाँ लगा रखी है और राजमा लगा रहे हैं।
0: अच्छा अच्छा, राजमा, ओके। और तो ये बताइए, आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं लखनऊ आकाशवाणी को?
3: बिल्कुल, मैं बहुत सुनता हूँ आकाशवाणी लखनऊ को, और मुझे आपके कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं
0: जी।
3: सुनता रहता हूँ बिल्कुल, शाम को 11 बजे तक सुनता हूँ, और 7 बजकर जो 20 मिनट पर प्रादेशिक समाचार और बाकी सभी सुबह से जो भक्ति संगीत का होता है वो उसको भी सुनता हूँ मैं
0: जी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो ये बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
3: दीदी जैसे कि आज मेरी पहली कॉल लगी है तो

0: आज माता के भेंट सुनूंगा। और पिछले महीने मैंने वादा किया था कि मैं मेरा फोन 2 मई को लगा था और मैंने बोला था मैं अपने बहन भाइयों के लिए 1 महीना छोड़ के 3 या 4 जून को फोन लगाऊंगा।
1: वाह वाह वाह, आप मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं, और जो भी श्रोता इस समय रेडियो पे सुन रहे होंगे आपकी आवाज़, वो भी ये सुन के इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमें जो है कुछ समय के बाद ट्राई करना चाहिए फ़ोन, ताकि और भी नए लोगों को मौका मिल सके। आपने ये बहुत अच्छा काम किया और हमें बहुत खुशी है कि आपकी कॉल हमारे यहाँ लगी है। तो बताइए कौन सी फिल्म का और कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: मैं दीदी आज माता के भेंट सुनूंगा सुहाग फिल्म से।
1: हाँ।
0: सबसे बड़ा है तेरा नाम शेरों वाली बिगड़े बना दे मेरे काम। मैं तो प्रार्थना करता हूँ माता रानी के चरणों में कि सबके बिगड़े काम बन जाएं, सबके अच्छे काम बने, जैसे आप हमारे लिए अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, तो माता रानी की कृपा आप पर भी सदा बनी रहे।
1: जी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत आप नेक दिल के इंसान भी लग रहे हैं मुझे बात करते करते। तो बताइए ये किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे सॉन्ग आप? किसी
0: का मेरे घर में मेरे बहन भाई पुष्करनाथ, रिंकू देवी और राकेश जी है शिमला में, और अविनाश जी है, गजराज लोधी जी है, और अंकल विजय पांडे जी है, और अविनाश जी है, जितने भी श्रोता है जिनको भूल गया क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं लूंगा।
1: ठीक, ठीक।
0: तो मैं सुनने वाले श्रोताओं से इतना ही कहूंगा कि 1 महीने का ब्रेक मत ना भी दो, तो 1 हफ्ते का ब्रेक सभी सुनने वालों।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी आपकी तरफ से सभी सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि आपकी बात को ध्यान से सुने, ताकि नए नए कॉलर भी हमसे जुड़ सके और आप भी नए नए लोगों की बातें सुन सके, नई नई आवाजें सुन सके। तो हमें कॉल करने के लिए
0: आनंद होता है जब मैं अपने दूसरे बहन भाइयों की बातें सुनता हूं, अपने से ज्यादा मुझे दूसरों की आवाज सुन के आनंद मिलता है।
1: हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
0: धन्यवाद,
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और कार्यक्रम में अब जान लेते हैं कि अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो मैम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए।
1: जी मैम, मैं पूनम बात कर रही हूँ कानपुर से। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ पूनम जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, और बहुत दिनों बाद मेरी आपसे बातचीत हो रही है तो
1: बिल्कुल मैम, बहुत दिनों बाद आपसे हम आज बात कर पा रहे हैं, क्योंकि आप जब कार्यक्रम में आती हैं तो कभी मेरा कॉल नहीं लगता, या फिर
0: जी जी
1: ऐसा
0: जी
1: इत्तेफाक हो जाता है कि
0: जी जी
1: बात हो नहीं पाती है,
0: हाँ
1: लेकिन आज मौका मिला है।
0: बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है। देखिए, इसीलिए हमारे पहले कॉलर जो आज प्रोग्राम के जुड़े थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो रेगुलर कॉलर हैं वो थोड़े थोड़े अंतराल पे हमें कॉल किया करें, ताकि नए कॉलर्स का भी मौका मिल को भी मौका मिल सके, या फिर जिनका फ़ोन बहुत दिनों से नहीं लगा है उनसे भी बातचीत हो सके। तो चलिए
1: जी
0: पूनम
1: मैम,
0: जी, बताइए
1: जी
0: आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी।
1: जी मैम, आज फिल्म का नाम रहेगा वक्त हमारा है, गीत के बोल है मौसम है मस्ताना, क्योंकि मैम बारिश हो गई है ना,
0: अच्छा,
1: तो अभी कुछ हद तक गर्मी से भी राहत मिली है और काफी हद तक मौसम भी ठंडा हो चुका है।
0: अच्छा, तो फिर आज
1: जी
0: आप किसको ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगी?
1: हाँ जी मैम, पहले तो आपको और हमारी दोस्त है रिंकी पिंकी जी, गुंजन तिवारी जी हैं, सीतापुर से समा परवीन जी हैं, और अनु पांडे जी हैं, और अविनाश जी हैं, और भगवान सिंह जी हैं, और रमेश प्रजापति जी हैं, राम बाबू शर्मा जी हैं, फुलचंद पाल जी हैं, और साथ साथ प्रेम सिंह सिसोदिया जी हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं, साहिल जी हैं, और राजू भाई हैं, जयपाल भाई हैं, सभी को गीत सुनाना चाहती हूँ।
0: बहुत सारे लोगों का नाम आपने लिया है, तो चलिए आपकी पसंद का ये गीत पहुंचाते हैं आपके रेडियो सेट तक। हमें कॉल
1: जी
0: करने के
1: बहुत
0: लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद मैम, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और जान लेते हैं कि अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मैं सुल्तान अज़ा बात कर रहा हूँ।
0: सुल्तान जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: मैं कुछ खाना सब्जी मंडी बरेली से।
0: बरेली से बात कर रहे हैं आप
1: जी,
0: तो
1: क्या
0: बताइए।
1: कहें, कुछ कहा नहीं जाता। क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता।
0: जी
1: दर्द मीठा है पर रहा नहीं जाता। किस कदर मोहब्बत हो गई मैं से, इसको सुने बिना रहा नहीं जाता।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।

0: आकाशवाणी के सारे प्रोग्राम सुनते
1: बिल्कुल
0: हैं, आकाशवाणी लखनऊ को सुनते हैं, एफएम रेनबो को सुनते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैम, मूवी का नाम है हम आपके हैं कौन।
0: जी,
1: गाने के बोल हैं जूते दे दो पैसे ले लो, क्यों शादियां और चल रही हैं हमारे बरेली के अंदर।
0: अरे वाह वाह वाह,
1: ये रस्म बहुत ही अच्छी लगती है, जूते चलाया जाता है उस टाइम पे।
0: जी, बहुत अच्छी अच्छी रस्में हमारे जो भी शादियां होती हैं उनमें छोटी छोटी रस्में होती हैं जो वाकई
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: ही
1: इनसे
0: शानदार होती
1: बड़ा अच्छा
0: हैं।
1: लगता है उस टाइम पे जो पैसे लेना और देना होता है, वो जूता का जो एक वो होता है, हालांकि पैसे जिम में रहते हैं लेकिन जो वो मिलते हैं ना गिफ्ट के तौर पे, तो
0: वो बहुत ही
1: वो बड़ा
0: अच्छी
1: अच्छा
0: बात होती
1: लगता
0: है।
1: है। और
0: हाँ,
1: कहते हैं उठा गया, वो खर्च नहीं होता है पैसे वाले पे।
0: बिल्कुल सही बात कही आपने। बताइए, गीत आप किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: जी मेरे दोस्त हैं बहुत सारे।
0: जी, नाम ले लीजिए।
1: अरे बिल्कुल मैम, मेरा दोस्त है सादिक रजा है, नदीम रजा है, मोनिस रजा है, इकबाल भाई, अफजाल भाई, जीशान रजा है, मम्मी पापा,
0: जी,
1: सब लोग सुनते हैं आपको रोज।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आपके इस जो शानदार गीत जो
1: मैम
0: आपने,
1: आपका नाम नहीं पहचाना, मैंने आवाज नहीं पहचानी आपकी।
0: जी मैं निधि चौधरी बोल रही हूँ, और
1: अच्छी,
0: लीजिए
1: ओके,
0: आप सुनिए आपका ये मनपसंद गीत आपके
1: थैंक यू
0: रेडियो
1: मैम,
0: सेट पर।
1: थैंक यू मैम।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। आप आकाशवाणी लखनऊ से ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और जान लेते हैं कि इस प्रोग्राम में अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए।
1: जी, हम गुलस्ता सिद्दीकी बोल रहे हैं, संडीका से।
0: गुलस्ता सिद्दीकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: थैंक यू मैम।
0: क्या कर रही हैं आप? जी मैं ठीक।
1: जी हम तो अभी बैठे थे।
0: हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं आप?
1: जी जी मैम सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए, आज आपने फोन किया है तो कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आज आप?
1: जी हमें बेवफा मूवी का सुना दीजिए, मेरा दिल जिस दिल से फिदा है।
0: अच्छा, तो किसी का नाम लेना चाहेंगी आप?
1: जी मैम, समा परवीन है, साहिबा अंसारी है, जितने लोग सुन रहे हैं सभी को और आपको।
0: जी ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए हमको भी एक सॉन्ग डेडिकेट करने के लिए बड़ा धन्यवाद आपका।
1: जी मैम, आपने कॉल उठाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका भी हमें कॉल करने के लिए। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर।
1: थैंक यू।

0: कार्यक्रम चल रहा है, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और जान लेते हैं कि अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो,
1: जय माता दी।
0: जय माता दी, नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम पूरन वर्मा है
0: जी,
1: और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमहल बुगला से बात कर रहा हूँ। मैडम
0: पूरन वर्मा जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं रेगुलरली?
1: जी मैडम, मैं आपका कार्यक्रम सुनता रहता हूँ। और
0: क्या करते हैं क्या करते हैं आप?
1: जी हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती बाड़ी करते हैं, तो इस समय तो बहुत गर्म हो रहा होगा।
1: हाँ जी मैडम, अभी तो खाली खेत पड़े हैं अभी तो।
0: जी जी जी, तो बताइए आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: जी मैडम, आज फिल्म का नाम रहेगा इंसान, वो गाने के बोले जब से दिल दिया है तुझको, ये गाना सुनना चाहूंगा मैडम।
0: अच्छा अच्छा, किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये गीत?
1: जी मैडम, सबसे पहले आपको
0: धन्यवाद।
1: और मेरा दोस्त है राकेश, भगवान सिंह परवान जी है, रमेश भैया जी है, और गोरी भाई है, अमर साहू है, राहुल है इटावा से, और जितने भी कॉलर आपके कार्यक्रम में लाइव कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ सुनने वाले कॉलरों के साथ समाप्त होता।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए, और लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट पर। नमस्कार।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। और जान लेते हैं कि अब कौन जुड़ चुका है हमारे साथ। हेलो
1: नीति जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत दिनों बाद मेरी आपसे बात हो रही है। और
1: हाँ, बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है। बट मैं जब भी, निधि जी, एक ऐसी बात है, आप आते हैं ना प्रोग्राम में
0: जी,
1: तो जरूर करके लगता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है और
1: जी हाँ।
0: हमें भी बात
1: और जैसे
0: करना
1: हम
0: बहुत अच्छा
1: आकाशवाणी
0: लगता है।
1: लखनऊ सुनने लगे हैं ना, तो हमारे काफी दोस्त बन गए हैं, जैसे भगवान सिंह परमार, हारून अंसारी, ये लोग तो अभी लाइव सुन रहे हैं। और अभी अभी हम ना आपको बताऊं,
0: हाँ
1: तीन
0: हाँ
1: दिन से हमारे एक नए दोस्त बने हैं,
0: हाँ हाँ
1: उनका नाम है मिंटू तिवारी। बड़े अच्छे

0: सदस्य हैं वो हमारे
1: अच्छा अच्छा
0: आकाशवाणी के, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी बताते हैं।
1: अरे
0: हमें
1: वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक कार्यक्रम से आपके कितने सारे आपके दोस्त बन चुके हैं और अच्छी अच्छी बातें आपको पता चल रही है। इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या ही हो सकती है।
0: जी बिल्कुल, इतने अच्छे से दोस्त मिलते हैं। जैसे अभी मिंटू जी, हमारी बात होती रहती है रोज, 2-3 दिन से हमारी रेगुलर बात हो रही है।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: वो भी हमारे बारे में जानने लगे और हम भी उनके बारे में काफी जानकारी मिली है। तो
1: कितनी
0: ऐसा
1: अच्छी
0: मतलब हमारा
1: बात है
0: आकाशवाणी
1: कि
0: लखनऊ से ऐसा प्रेम हो गया, इतना प्यार हो
1: जी
0: गया कि
1: जी
0: बस
1: जी
0: नए नए दोस्त
1: दूर
0: हमें मिलते ही जा
1: दूर
0: रहे हैं।
1: बैठे बैठे आपके सारे दोस्त बनते जा रहे हैं और माध्यम बन रहा है आकाशवाणी लखनऊ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो चलिए
0: जी
1: बताइए, आज
0: बिल्कुल
1: आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: जी, जैसे कि आपको बताऊं निधि जी, अभी काफी गर्मी पड़ रही है और अभी प्री मानसून भी शुरू हो चुका है और हमारे खेत खाली भी पड़े हैं, तो मैं अपने खेतों के लिए गाना सुनना चाहूंगा। खानदान फिल्म का, नील गगन के उड़ते बादल,
1: जी
0: धूप
1: जी
0: में जलते खेत हमारे कर दे तू छाया, वो वाला गीत मैं अपने खेतों के लिए डेडिकेट करना चाहूंगा।
1: चलिए, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और आपने इतने सारे लोगों के नाम ऑलरेडी ले लिए हैं, तो सभी के लिए आपकी तरफ से ये सॉन्ग आपके रेडियो सेट पर। हमें कॉल करने के लिए
0: जी
1: धन्यवाद। नमस्कार।
0: थैंक यू सो मच निधि जी, मुझे

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और अब वक्त हो चला है फिर से अगले कॉलर की कॉल लेने का। देख लेते हैं कि कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
1: जी। मैं यासिर अहमद बात कर रहा हूँ, उम्मीदों का शहर मियां उन्नाव से। थैंक
0: यासिर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या करते
1: यू
0: हैं आप?
1: मैम।
0: क्या करते हैं आप यासिर जी?
1: हेलो
0: हेलो, आपको आवाज़ आ रही है?
1: जी, जी आ
0: जी,
1: रही है
0: मैं पूछ रही हूँ, आप क्या करते हैं यासिर जी?
1: जी। मैं तो एक इलेक्ट्रीशियन हूँ
0: अच्छा, ओके।
1: जी।
0: तो आप हमारे प्रोग्राम्स को सुनना पसंद करते हैं?
1: जी प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, आज
1: जी
0: आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: जी मूवी का नाम है बोल बच्चन। गाने के बोल हैं, जब से देखी है झलक तुम्हारी, वॉइस है मोहित चौहान जी की।
0: अच्छा, किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं ये गीत?
1: नहीं, जितने सुनने उन सभी को और आपको।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के
1: ओके
0: लिए। लीजिए, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
1: ओके बाय।
0: जी।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और अब जान लेते हैं कि अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो।
1: हेलो निधि जी, नमस्ते।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: मास्टर राधेश्याम साग के बोल रहे, डिस्ट्रिक्ट कासगंज से।
0: राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और आपने तो
1: थैंक यू
0: बता ही
1: मैम।
0: दिया आप मास्टर जी हैं, तो क्या आजकल तो छुट्टियां चल रही होंगी?
1: हाँ जी, जून की छुट्टी है, जुलाई में खुलेगा, 1 जुलाई को।
0: जी, तो आपको भी थोड़ा रेस्ट मिल गया है, और मनोरंजन के लिए आप आकाशवाणी लखनऊ सुनते हैं।
1: जी,
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: फिल्म का नाम है अमीरी गरीबी और गाने

0: के बोल हैं, भूल भुलैया अकियां सैया, रास्ता भूल गई मैं।
1: अच्छा, तो ये बताइए, वैसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आप किस किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं?
0: जी मैं जो है 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ।
1: अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तो आजकल आप अपनी छुट्टियाँ जो है अच्छे से परिवार के साथ बिता रहे होंगे। और ये बताइए, ये जो गीत आपने अभी बताया है, ये किसको डेडिकेट करना चाहेंगे आप?
0: जी नाम तो किसी का विशेष का नहीं लेंगे, लेकिन पूरी आकाशवाणी टीम और समस्त श्रोताओं को डेडिकेट है, क्योंकि वो श्रेष्ठता भी लाने में लगे हुए हैं इसलिए।
1: जी, बहुत बहुत अच्छी बात। और हमें कॉल करने के लिए राधे श्याम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
0: थैंक
1: नमस्कार।
0: यू, नमस्कार।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और जान लेते हैं कि अगले कॉलर कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत सा ट्रैक।

नितिन मुकेश और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम से अपनी दोस्त निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पतंग। सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
0: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
2: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
2: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओं, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
2: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हम

0: ने उस इलाके को देखा भी है।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता, बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
1: अजी जी, इसका कारण ये है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
1: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
1: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आएं।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
1: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
1: जी,
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की, खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
1: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है, जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है।
1: जी,
0: यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे।
1: जी,
0: जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ हाँ, जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे, मैग्नेटिक हिल?
1: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था।
0: हाँ हाँ,
1: लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते। ये एक दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
0: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती
1: जी,
0: है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
1: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
0: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
1: जी,
0: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
1: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
0: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
1: जी,
0: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800044055 पर।

0: और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
1: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
0: भारत अर्थात इंडिया।
1: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच।
4: Wonderful shot. The scoop shot. It gets through. It's a big one. It's a huge boundary. Goes wide through the offside. He's got him. That's it. India win.
3: अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
5: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
5: सर।
6: तुम दोनों आ जाओ अंदर, आ जाओ शाबाश।
5: क्या अभी आपके पास समय होगा?
6: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
5: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
6: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
5: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
6: अच्छा।
5: सर, कोई कहता था कि इंडिया जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
6: और
5: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
6: हाँ, बोलो।
5: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
6: बिल्कुल।
5: लेकिन सर, दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
6: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
5: 5000 वर्ष पहले?
6: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
5: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
6: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
5: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
6: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
5: अच्छा।
6: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
5: जैसे?
6: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
5: वैदिक समूह?
6: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों

0: द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
1: भरत?
2: भरत नाम तो हमने सुना है।
0: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
1: ओ भरत, अच्छा तो ये बात है।
0: हाँ।
1: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
0: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
2: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
0: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा, ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
1: वो क्या सर?
0: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
2: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
1: भला ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
1: अच्छा।
0: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
1: है ही नहीं?
0: हाँ।
1: ऐसा कैसे?
0: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
1: ओ।
0: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
1: हिंदू।
0: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
1: तो फिर?
0: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
0: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
2: आपने अब तक तीन ग्रंथों के नाम बताए।
0: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो तीन ग्रंथ?
1: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
0: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ।
2: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
0: बिल्कुल।
2: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
0: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
1: अच्छा।
0: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
1: अच्छा।
0: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
1: वो क्या?
0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
2: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ?
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है, उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा।
2: सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष
1: और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 250

0: हजार वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी।
1: ओ,
0: हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं। और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ।
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश भारत अर्थात इंडिया के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है भारत अर्थात इंडिया।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
4: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
5: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा। देखा है ना? पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है, और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
6: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
7: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
8: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
7: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
8: हाँ पूछो बेटा।
7: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
8: बेटा भला हम कैसे उड़

0: सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
1: लेकिन माँ,
0: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
1: जी
0: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
1: अच्छा माँ, ये लो माँ।
0: ला
2: कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
1: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल
0: अरे
1: गया मुझे,
0: क्या मिल
1: मिल
0: गया,
1: गया मुझे, माँ माँ ओ माँ,
0: क्या मिल
1: जो
0: गया,
1: चाहता
0: क्या मिल गया,
1: था मुझे मिल गया। हाँ
2: क्या मिल गया भाई, क्या मिल गया,
0: जोसेफ क्या हो गया तुम्हें बेटा,
1: माँ
0: बताओ तो
1: माँ
0: सही क्या हो गया है।
1: माँ, मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ, उड़ने
0: ओफो
1: का तरीका मिल गया।
2: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ।
1: स्टीफन स्टीफन, माँ माँ
0: हाँ?
1: माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ
0: धुआं,
1: इस कमरे के धुएं को देखो, इसमें इसमें क्या उड़ रहा है,
0: क्या
1: बताओ
0: उड़ रहा है,
1: क्या,
0: क्या
1: बताओ
0: उड़
1: उसमें
0: रहा
1: क्या
0: है,
1: उड़ रहा है।
0: कुछ भी
1: हाँ
0: तो नहीं,
2: कुछ भी तो नहीं है।
1: ओ नहीं स्टीफन, नहीं, ध्यान से।

0: का मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
0: स्टीफन, स्टीफन, माँ, माँ, माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो।
1: धुआं?
0: हाँ, इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें, इसमें क्या उड़ रहा है? बताओ, बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
2: कुछ भी तो नहीं।
1: कुछ भी तो नहीं है।
0: ओ नहीं स्टीफन, नहीं, ध्यान से देखो। हाँ, ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
1: वो तो है, मगर
0: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन, कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: कहते तो तुम ठीक हो।
0: तो फिर, तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें, हैं?
1: हाँ।
0: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें, तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
0: ठीक है, आओ मेरे साथ।
2: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
3: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे
5: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
6: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
5: हाँ भाई, भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार, भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
6: अभी पता चल जाएगा, पर यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
5: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
6: आओ, आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
7: ना जाने क्या करेंगे,
5: भला कोई चीज उड़ नहीं सकती। अच्छा
7: मजा आ गया, हो गया है।
5: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
6: भाई साहब हट जाइए। आ गए, आ गए, यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
5: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
6: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ,
5: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
6: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
5: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे, अरे वो देखो, हाँ? स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
6: हाँ? और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
5: अरे अरे अरे, वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो, वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
6: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
5: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
6: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
5: अरे जबरदस्त, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल दिखा दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
6: वो देखो, वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ, उधर देखो।
5: अरे हां, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया।
3: साथियों, ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ,

0: जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा। शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान, और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार, नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म लोफर के गीत के साथ, जिसे अपनी आवाज से सजाया है मोहम्मद रफी ने। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम। अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं जमाने को दिखाना है फिल्म से। आवाज़ है शैलेंद्र सिंह की। इस गीत को संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने।

शैलेन सिंह की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे ये गीत। फिल्म का नाम था ज़माने को दिखाना है। और अगली आवाज़ हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं हम किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दूसरा आदमी। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दूसरा आदमी। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। संगीत है एस जी बर्मन का और गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था तेरे घर के सामने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं जीवन मृत्यु फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मोहब्बत रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म जीवन मृत्यु का गीत, और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे अब समाप्त होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, कुछ ही पलों में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजनाएं शुरू हो चुकी।

0: काम हो रहा है।
1: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि सुमित्रा उर्फ सुनीता, पत्नी प्रेमचंद, ग्राम मधसिया, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ से 1.5 माह पहले कहीं लापता हो गई हैं। सुमित्रा उर्फ सुनीता की उम्र लगभग 27 वर्ष, कद लगभग 5 फुट और इकहरा शरीर है। इनके होठ के नीचे काला तिल है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके पाए जाने के संबंध में सूचना आप कृपया इस नंबर पर दे सकते हैं। नंबर है 7905824157। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 7905824157। सूचना प्राप्त हुई है कि ज्योति प्रजापति, पुत्री घनश्याम प्रजापति, निवासी ग्राम महवार, थाना तहबरपुर, जनपद आजमगढ़ से दिनांक 5 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। ज्योति की उम्र लगभग 17 वर्ष, कद लगभग 155 सेंटीमीटर, रंग गोरा और चेहरा गोल है। इनकी दाई आंख के ऊपर कटे का निशान है। इनके पाए जाने के संबंध में सूचना आप कृपया इस नंबर पर दे सकते हैं। नंबर है 9450246867। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9450246867। श्री गजाधर निवासी पिपरी पट्टी, थाना अखंड नगर, जनपद सुल्तानपुर से सूचित करते हैं कि उनकी बेटी काजल दिनांक 26 दिसंबर सन 2023 से कहीं लापता हैं। काजल की उम्र लगभग 12 वर्ष, कद लगभग 5 फुट, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। इनके घुटने के नीचे चोट का निशान है। जिस समय ये लापता हुई थी उस समय इन्होंने लाल रंग की टी शर्ट और नीले रंग का लोअर पहन रखा था और पैरों में लाल रंग के जूते थे। इनके पाए जाने के संबंध में सूचना आप कृपया इस नंबर पर दे सकते हैं। नंबर है 7897781933। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 7897781933। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। श्रोताओं, आपको बता दें कि सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुन सकेंगे 11:10 से हमारे दिल्ली केंद्र से। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे आज रात 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से। हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे कहानी बचाओ महेंद्र भीष्म की, वाचन और संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का। साथ ही आपको बता दें कि खेती किसानी कार्यक्रम में 6:50 पर आप सुनेंगे भेंटवार्ता सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन

0: डॉक्टर श्याम राज सिंह से, और इनसे भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में इलाकाई खबरें नशर की जाएंगी।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से रियासत के नज़्म व नसक, आइंदा होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान और मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुजव्वज़ा अवामी शराकत दारी पर मबनी प्रोग्रामों का जायजा लिया। इस दौरान वज़ीर आला ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने के मौके पर 5 जून आलमी योम माहौलियात से 21 जून बैनुल अक़वामी योम योग तक मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम सिर्फ रस्मी इनेकाद न होकर अवामी शराकत दारी और अवामी बेदारी की मुहिम बने। मीटिंग में वज़ीर आला ने 8, 9 और 10 जून को 2 मीटिंगों में मुनक़िद होने वाले कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती इम्तिहान की इफ़्फ़त और राजदारी को बनाए रखने के अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि नज़्म व नसक से खिलवाड़ करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में मफादे आम्मा की 24 तजावीज़ मंजूर की गईं। शहरी तरक्की के वज़ीर ए के शर्मा ने बताया कि काबीना ने शहरी ट्रांसपोर्ट खिदमात को बेहतर बनाने के लिए 1725 नए इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की मंजूरी दी है। ई बसें नोएडा समेत शहरी इलाकों के 17 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशनों और 18 बड़े शहरों में चलाई जाएंगी। काबीना ने सरकारी वकला के अलाउंस में इजाफे की तजवीज़ को भी मंजूरी दी। हमारे नामा निगार ने इतला दी है कि काबीना ने खरीफ मार्केटिंग साल 2025-26 के लिए हिमायती कीमत स्कीम के तहत मक्का की खरीदारी की पॉलिसी को भी मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने कल दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को तब्दील करने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड को मदद फराहम करने की स्कीम को मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। मरकजी वजीर जनाब वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के साथ मिलकर नाफिज किया जाएगा। बनारस में आज ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग का इफ्तिताह हुआ। मीटिंग से कबल मुख्तलिफ ममालिक से आए नुमाइंदों का रवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। मीटिंग की शुरुआत हिंदुस्तान हुकूमत के वजारत सकाफत के सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल के खिताब से हुई। वाज़ह रहे कि हिंदुस्तान इस बार ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप की दूसरी मीटिंग की मेज़बानी कर रहा है जो 2 रोज तक मुनक़िद होगी। मीटिंग में हिंदुस्तान के अलावा चीन, जनूबी अफ्रीका, इंडोनेशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, ब्राजील और ईरान के नुमाइंदे बराह रास्त शामिल हुए हैं। दरियसना रूस, इथोपिया और मिस्र के नुमाइंदे हाइब्रिड मोड के तवस्सुत से मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ह है कि इस दौरान अराकीन ममालिक के दरमियान सकाफती तआवुन, विरासत, तहफ्फुज़ और सकाफती तबादले को मजबूत करने से जुड़े मुख्तलिफ मौजू पर बहस होगी। इस दौरान मरकजी सकाफती सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल ने बताया,
1: ये लिविंग हेरिटेज है न केवल भारत की बल्कि पूरे विश्व की, और यहाँ का जो सांस्कृतिक परिवेश है, यहाँ की जो गंगा जी की जो सुंदरता है, जो हमारी युगे युगीन पुरानी सभ्यता है, उस सभ्यता का ये प्रतीक है। इसलिए इससे अच्छा स्थान ब्रिक्स के कल्चरल ट्रैक की डिस्कशंस के लिए नहीं हो सकता, और इसीलिए स्थान को चुना गया।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल इम्तिहान के उम्मीदवार

घर आंगन कार्यक्रम की सबे श्रोता सखियन का प्रतिभा त्रिपाठी क्यार नमस्कार। आशा करी थन हमरी सबे सखी हो रे सब परिवार स्वस्थ और प्रसन्न हुई हैं और अपन अपन भाई बाजा माँ घर अंगना सुने बदे एकदम तैयार हुई हैं। और वैसे देखो आज काल जो उन्हें हुई गदेलन के स्कूल के छुट्टी हुई गए हैं तो बहुत जने तो भाई कहूँ दादी के घरे गए हुई हैं, को नानी के घरे गए हुई और बहुत से घरन में हो सकत है कि भाई नाती नतकुर पोता पोती यू लोग आए हुए हैं। तो कुल मिलाए के घरे के माहौल जो उन्हें इतनी बिरिया एकदम उत्सव वाला हो हल्ला वाला एकदम मौज मस्ती वाला माहौल रहा थे घरे में और नीको बहुत लागत है। लेकिन हाँ एक बात और है कि भाई ऐसे में होत कहें कि काम जो उन्हें ना वही तनुक बढ़ जाते हैं ना, तो ऐसे में देखो का करे के चाहिए कि सबका मिल बांट के तनुक भाई हाथ बटाए के घरे के कामकाज निपटावे के चाहिए जो उन्हें कि एक मनई के ऊपर बोझा ना पड़े, है ना। और एक के साथ देखो होत का है ना ऐसे कि जब हम सब मिलजुल के काम काज करी थन घरे का तो यही से एक बात और होती कि काम तो हल्का होबे करे थे साथ में जो हमारे परिवार के जो रिश्ते हैं ना आपसी उनमा बड़ी मिठास घुला थी बड़ी मधुरता आवत थी बहुत अपनापन आवत थे। हाँ और हम सब का यह कोशिश करे का चाहिए कि भाई हमारे रिश्तन माँ मिठास बनी रहे और यही के खातिर हमका हमेशा एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह के भाव रखे का चाहिए। हाँ और देखो जब हम कहे थन कि सम्मान और स्नेह के भाव रखे का चाहिए तो हम पंचन रखित भी है लेकिन होत का है कि कऊ बेर वही का समय समय पर प्रकट भी करे का चाहिए। या नहीं कि भाई हम रखे तो मन में भाव बहुत कुछ हैं मूल जब हम उनका दिखाई नहीं प्रकट नहीं करी थन तो सामने वाले का एहसास नहीं होते। हाँ तो यही के लिए ज़रूरी है कि हम समय समय पर वही का प्रकट भी करी वही का जताई भी है। और आपका बताइए कि देखो यही के लिए हमारे शब्दकोश माँ एक दुई शब्द बड़े अच्छे हैं जो उनकी हमारे रिश्तन माँ मिठास घोरत हैं वही माँ और नज़दीकी ले आवत हैं और मजबूत करत हैं और वही शब्द हैं भाई धन्यवाद आभार क्षमा। यह शब्द जो है खाली शब्द नहीं ना बल्कि यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभावत हैं हमारे रिश्तन का मजबूत बनावे खातिर। अक्सर आप देखे वही हो कि देखो बाहर जब हम निकली था ना कौनों हमका तनिक से सहयोग कर देते तो हम वही का तुरंत धन्यवाद कही था ना और यही से सामने वाले का

भी लागत है। लेकिन जब हम अपने घर परिवार में हुई थन तो हम सोचे थे कि भाई यू तो हमारे अपने लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे मतारी बाप हैं, पति पत्नी हैं, तो वहाँ हम तनुक से कंजूसी कही जाई थन, तो यह कंजूसी बिल्कुल ठीक नहीं ना। लेकिन यह हमेशा हमका महसूस करे के चाहिए कि हमारे घर परिवार में जौन भी मनई है, जौन भी रिश्ता है, हमारे लिए कुछ कही रहे हैं। चाहे वो भाई देखो आपस में पति पत्नी हैं, वही अगर मान लो दोपहरिया में खाना बनाए रही हैं इतनी गर्मी में, तो जो मनसेदू भाई उनका जरूर आभार प्रकट करे के चाहिए। हाँ, और कऊ बेर होता है कि वही इतना मेहनत करिन कुछ बनाइन, और तनुक से अगर उनमें कुछ गड़बड़ी हो गई, कहूँ नून कम हो गए, बह ज़्यादा हो गए, तो वह पे देखो धन्यवाद तो दूर की बात है, आपस में जो ने वही कहा सुनी हो लगा थी। तो यही से रिश्ते बड़े ख़राब हो जाते हैं। और जरा सी समझदारी से अगर काम लिया जाए, उनका भाई ये कहा जाए, अगर एक कप वही चाय ला के दे रही हैं, पानी शरबत दे रही हैं, तो आप एक बार बस धन्यवाद बोल के देखो, फिर देखो कितना रिश्ते में ना कैसे बदलाव आप महसूस करियो। और खाली हम एका कह ही नहीं रहे हैं भाई, आप यही का करके भी देखो। हाँ, और जैसे होती अक्सर हमारी जो सखी हो रही हैं वही तो एहमत भाई तनुक एका निभावत ही मूल जो ने, या भाई लगन है ना बंसेदू जो ने, वही तनुक एमा कंजूसी कही जाते हैं। अब मान लो कोनो गड़बड़ हो गई है तो भाई एक शब्द है क्षमा मांग लियो, का घूमे जाते हैं आपस में तो लोग हैं। और जैसे देखो अभी हम आपका एक गाँव नहीं सुनवा रहे हैं, कई एमा जो ये बलमा राम है यूँ कई से कई गड़बड़ी कही रहे हैं, तो अगर ऐसी गड़बड़ी हो जाए भाई बनाई है होबे करे थी कबो न कबो, तो बस आप तनुक से क्षमा मांग लियो, और या हम जो गाँव नहीं सुनवा रहे हैं का सुनो, आनंद लियो, सीखो भी। स्वर है पूर्विका पांडे बहिनी ग्यारह।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: और श्रोता पंचो, देखो आज हम रिश्तन की बात कर रहे हैं कि हमारे रिश्ते कैसे मजबूत होते हैं, कैसे वही माँ अपनापन घुलत है। और बताइए कि पहले तो देखो इतने लोगन मिलजुल के साथ में रहते रहें कि रिश्तन का लेके कितनी कहावतें बन गई हैं। और यही में से देखो एक कहावत आप सभी सुने होइयो, कहने होती है कि माई मरे मौसी जी हैं, जेकर कि मतलब यह है कि भाई माई से बढ़ के मौसी जो ने ध्यान देती हैं। और आज हम आप सबका एक यह शीर्षक पर बना हुआ नाटक सुनवा रहे हैं, जो ने कि शीर्षक यह है कि माई मरे मौसी जी हैं, या अवधि नाटक आप सब सुनो। आलेख है प्रतिभा त्रिपाठी के, यानी हम रहे।
2: अरे भाई काली चरण, धरती के गुरुत्वाकर्षण के असर तुम्हारे सकल पर साफ दिखाई पड़ रहा है।
3: हाँ हाँ, बस तुम्ही का अमरी सकल पर आकर्षण दिखाई देते है, बाकी जेका देखे चाहिए वही का तो दिखात नहीं।
2: अरे भाई आकर्षण नहीं, गुरुत्वाकर्षण।
3: देखो यार, हमसे ज्यादा अंग्रेजी नजारा करो, बताई दिया।
2: अरे अरे अच्छा अच्छा, चलो हिंदी में पूछी थन, तुम्हार सकल काहे लटकी आए, बड़े गुमसुम बैठे हो, कहा बात है? मोहब्बत के गाड़ी पटरी पर तो है ना, मतलब मंजू जी तक दिल की बात पहुंची कि ना ही पहुंची?
3: याक बात ध्यान से सुन ले गुड्डू, जौन यू तुम्हारी आदत है ना जले पर नमक छिड़के वाली, यू हमका बिल्कुल पसंद ना आई, समझो कि नहीं?
2: अरे अरे बस भाई बस, नाराज ना हो, हम तो ये कह रहे हैं कि परेशानी का है, बताओ हमका, हम है ना तुम्हारी मदद खातिर।
3: अब का बताए यार, हम रात दिन मंजू जी के आगे पीछे चक्कर काटे थन, और वो है कि हमका घास है नहीं डरती।
2: तो यो बात है, यार यो बताओ कि तुम मंजू जी के पीछे खाली धूमकेतु के जैसे चक्कर काटत हो कि कबाओ उनका कुछ गिफ्ट विफ्ट भी दिए हो?
3: सोचित तो है यार, लेकिन
2: लेकिन मतलब
3: सब कुछ पैसा खेल आए, 1500 से नीचे कौनो बात है नहीं बनत।
2: मतलब कि तुम्हारी मोहब्बत का महंगाई डायन खाए रही है।
3: ओका
2: काली भाई, हमार एक बात गठिया है लो कि जब लड़की के दिल के पहुंचे का सीधा रास्ता ना मिले तो बाईपास का रास्ता पकड़ लो।
3: बाईपास रास्ता मतलब?
2: मतलब वही के महतारी के दिल में जगह बनावे का चाहिए, काहे कि गुलाब के फूल से जौन बात नहीं बनत, वही बात गोभी के फूल से बन जाती।
3: पहेली ना बुझाओ यार, जरा खुल के बताओ।
2: अरे तुम हाँ एकदम पगला, तुम सुनाओ। मंजू जी के अम्मा मतलब तुम्हार होए वाली सासू माँ के दिल में जगह बनाओ, और वही के लाने कबाओ कबाओ बढ़िया गोभी का फूल, कबो गांठी में लगावे वाला तेल, कबो आंखी में डारे वाला ड्रॉप, भेंट कई के प्रणाम करो और फिर देखो कमाल, हर लगे न फिट करी और रंग चोखा, हमारी सलाह पर अमल करी हो तो प्यार में कबो न खियो धोखा।
3: अच्छा तो चलो अब्बा जाए थे, होवे वाली सासू माँ से आशीर्वाद ले ले थे।
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
4: अरे मौसी, ओ मौसी, मौसी, अरे ओ मौसी,
5: कोई?
4: अरे हमन कहा हो?
5: अरे आओ आओ कल्लू, आ जाओ अंदर, आ जाओ, मुंह काय को रहा होते हो?
4: अरे आ रहे ना, आ रहे ना।
5: आओ आओ कल्लू बैठो।
4: प्रणाम मौसी, प्रणाम।
5: अरे खुशी रहो, जीते रहो, खूब आगे बढ़ाओ।
4: मौसी अब हमका कल्लू कह के ना घुरावा करो, अब हम सयान हुए गए हैं, काली चरण कहा करो नहीं तो।
5: अरे ठीक है ठीक है, आओ बैठो काली चरण जी।
4: अरे मौसी घामे में काहे पौड़ी हो?
5: अरे बेटा, या महंगाई के जमाना मा हवा धूर और धूप यह तो रहेगा, जौने के मने दिन भर खा सका दिए।
3: मौसी या धूप और ताजी हवा तुमका गावन मा ही सेते मिल रही है, शहरन मा तो

0: यहू केर मोल देवे परत है।
1: अच्छा वे कैसे?
0: अब देखो साहिरन माँ अति ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई है कि घर में सूरज झाक तक नहीं पावत, तो ताजी हवा और धूप आवे कहाँ से? यही के खातिर लोग पारिक में जात है और पारिक में जाए बदे टिकट लागत है, तो पैसा खर्चे का पड़ा कि नहीं?
1: हाँ यू तो तुम्हार बात सोरव आना सही आए। हाँ, आज तो हम इन्हें का धूपे खवाए के भेजब। इतनी महंगाई माँ यहाँ चीज खवाए देओ तो वह बहुत ही मुला मुँह तो छुए परी हमका।
0: कौने सोच विचार में पड़ गए मौसी?
1: अरे बेटवा यह सोचे थे के हम सुरसा का तो देखन नहीं।
0: अच्छा?
1: बोला हमका लागत है के सुरसा जरूर महंगाई जैस रही हुई है, तब तो महंगाई दिनों दिन बढ़त जाए है। अच्छा या सब छोड़ो, अति दूर से आए हो, तुम्हारी खातिर खाए पिए बद के कुछ ले आई? नहीं तो कहियो मौसी खाए का पूछी नहीं।
0: ले आओ।
1: बेटवा एक बात यार,
0: का
1: कि ये तिजरिया के खाना न खाए के चाहिए, नहीं तो दोस्त लगा थी। हम जानबूझ के तुमका दोस्त लगाए नहीं सकी थी।
0: रहे दो मौसी रहे दो।
1: अरे कैसे रहे दे, तुम्हार मौसी हन कहा जाते ने के माई मरे मौसी जी है, ऐसे थोड़े ना जाए दे अब तुमका। अब तुमका आइस करी थे कि ताजा मट्ठा पियाई थे हिंग जीरा डारी के है।
0: ठीक है मौसी पियाई दियो।
1: मट्ठा तो हम धरे हन संजा के कढ़ी घोरे बदे, अब इन्हें का पियाई दे तो यो महंगाई माँ एक गिलास मट्ठा मोल ले जाए तब पता लागत ये कि कत्ते का है।
0: का हुआ मौसी?
1: अरे भवा का कुछ नहीं बेटवा, हम सोचे थे ने के माठा के तासी ठंडी होती है, अति बखत नुकसान न करे तुमका माठा दे के ना दे।
0: सच्चे मौसी तुम हमार कितना ध्यान रखती हो, सही कहा गवा है कि माई मरे मौसी जिए।
1: अरे मोर बच्चा कैसी बात करत हो तुम, अरे हम तुम्हारा ध्यान न रख पे तो को राखी। अच्छा आइस करे थे तुमका आज के जमाना के अमृत मतलब चाय पियाए दे।
0: ठीक है मौसी चाय पिया दे।
1: लेकिन बेटवा यू चाय तो एकदम करेजा जराए देती।
0: हाँ यू तो आए मौसी, कहा तो लोग ऐसा ही है।
1: हाँ यह तो हम सोचे थे कि तुम एक तो बहरे से चले आए रहे हो, गर्मियान हो और ऊपर से यू चाय झुरसा झुरसा तुम कहाँ पिया दे। हम आज जो ना मानत है भैया कि हम तुमका यू जहर पियाई है।
0: अच्छा मौसी अगर चापा कल के पानी में कौनो दोस्त ना होए तो एक गिलास पानी है पिलाए दो।
1: अरे कैसी बात करे तो बेटा, अब तुमका ठंडा ठंडा पानी पियाई दे उठ के, देखो बिल्कुल बढ़िया वाला। हाँ, ये ले बेटवा गुड़ खाओ और पानी पियो।
0: लाओ मौसी लाओ।
1: ले
0: भैया काली चरण भागते भूत की लंगोटी बली। अच्छा मौसी तो अब हम चली थे और तुमरे गाठी के दर्द बदे शहर से यू तेल लायन, यही से तुमका बहुत आराम मिली, यही का रखो।
1: अरे खूब फूलो फलो बेटा, हमरे लगे तो बस यह आशीष है तो है तुम पंचन का देख खातिर। ठीक बेटा आवत रही हो।
0: बिल्कुल मौसी तुम्हारी बातन के बतासा खाए जरूर रही थे।

अब यू महंगाई माँ गृहस्थी की गाड़ी कैसे खींच तान के चलाई थी है हमारे जाने थी है। ऐसे में मेहमान के सामने इज्जत बचाए खातिर यू बातन केर बता सब परोसे के परत है। अरे यू महंगाई तो दुशासन बन के शिष्टाचार के चीर हरण कर रही है और अपनी अंतरात्मा तो धृत राष्ट्र बन जाती।

0: 엄마.
1: अरे कौन जग जीत आए हो जौना तना चिल्लम चिल्ली कर रहे हो।
0: अरे अम्मा लो प्याड़ा खाओ, तुम्हारी पसंदीदा दुकान बांकेलाल हलवाई खुमस लाए हैं, पूरे 250 ग्राम है।
1: कौने खुशी माता ना पैसा फूकिया है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया।
0: अरे अम्मा यू आमदनी बढ़ावे खातिर लाए हैं।
1: अरे का मतलब है, है? साफ साफ बताओ, पहली न बुझाओ।
0: देखो अम्मा, हमका छोट मोट नौकरी नहीं करे खाए।
1: लाड साहिबी करे के है तुमका तो।
0: अरे पूरी बात तो सुनो पहले।
1: सुना।
0: देखो छोट मोट नौकरी मनाई धोबी कुकुर तैन हो जात है, न घर का और न घाट का, मतलब जैसे जौन पगार मिलत है ना, उमा न उमर पावत है न जी पावत है।
1: अच्छा।
0: यही तय हम करोड़पति वाले खेल में जाए खाते भगवान से मनौती मांगे आए हैं। पूरे 1.25 किलो के प्रसाद माने हैं ना, हम भगवान से कहे हैं कि 250 ग्राम हम अब्बे चढ़ाए दे थे, और बाकी 1 किलो 5 करोड़ रुपया जीते के बाद चढ़ेबे।
1: बेटवा बस 5 करोड़ के दिल तुम 250 ग्राम में निपटाए आयो, बहुत खूब। लाओ लाओ प्रसाद दियो। मंजू, ओ मंजू
2: आए अम्मा। हाँ,
1: रही है। अरे यू पेड़ा धरिया बिटिया, और संजक बाबू आई है तो पानी पिए खाते कुछ है तो है नहीं, तो यह तो मुंह में डाल के पानी पी ली है।
3: अम्मा, ए अम्मा।
1: हाँ।
3: एक पेड़ा हम ले ली
1: काहे, जब सब को देबे तब तक तो हमार मुंह तक ही आओ।
3: एक पेड़ो नहीं दे सकती है, बस कामे बदे खातिर जो ने हमका बलाए लेती है, एक पेड़ा भारी पड़ जाता है अम्मा के ऊपर।
1: बताई हमी बिटिया का, जब देखो तब मुंह ही खोला रहा दे का।
4: अरे मंजू की अम्मा कहाँ हो भाई?
1: अरे आए रहे ने, कहाँ जाए तुमका छोड़ के, कहूँ ना जा सकी थी।
4: हाँ हाँ, जानित है कि पूरे गाँव में कोई माई के लाल नहीं ना, जो उनके सफेद हाथी पाले के हिम्मत कह सके।
1: का कह रहे हो?
4: अरे कुछ नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इतनी दूर से साइकिल चलाए के आए हन, हफ गए हन, तनी एक गिलास पानी पियाए दो।
1: आ, वो तो पियाई थे, लेकिन मंजू के बाबू हमरी समझ में यू ना आवो थे कि तुम अपनी फटफटिया का धोए पोंच कर ढाक ढूंक कर खड़ा कर देते हो और खुद साइकिल पर निकल चला दो पर।
4: अरे मंजू की अम्मा, बात यह है कि फटफटिया तेल पी के चलत है, और साइकिल हमार खून पी के चलत है। पेट्रोल के दाम जैसे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, वही के हिसाब से तो खून सस्ता है, यही से अपन खून जलाई थे और पानी पी पी के खून बनाई थे। अब एक गिलास पानी तो पियाए दो।
1: अरे मंजू, ओ मंजू। अरे बाबू आए गए हैं, पानी ले आओ और मीठो ले आओ।
2: अच्छा लाई थे।
4: अरे मंजू की अम्मा, तुमहु खूब हो, हमरे उस्तरा और हमरे मूड़न।
1: का मतलब है तुम्हारे?
4: मतलब यू के हमरे जेब काट के हमरे मुंह मीठा कराए रहो।
1: तुम्हारे जेब है मैं कछु काटे लायक हो तो तुम्हारी जेब हम काटी।
4: मंजू की अम्मा सही कह रही हो, तुमसे पहले तुम्हार बहिन मतलब हमा साली आधी घरवाली महंगाई डायन हमा जेब काट लेते।
1: इतना घुमाए फिराए के काहे बात कह रहे हो, सीधे सीधे हमका डायन कहो, यह कहा जाते हो?
4: अरे हम तो मजाक कह रहे हैं।
1: मजाक?
4: हंसी मजाक के तड़का ना होई तो जिंदगी बहुत बोझल हो जाई। मंजू की अम्मा, यह से हंसे मुस्कुराए के कोनो मौका ना छोड़े चाहिए।
1: उम्मीद देखो मीठा के नाम सुन के तीनों जने चले आए रहे हैं। आओ आओ तुम पंचे भी आओ आओ।
3: अम्मा
1: हाँ?
3: ई लो मिठाई ले आए।
1: लाओ लाओ लाओ। अरे मंजू, ए मंजू।
3: हाँ।
1: ये माता क्या पेड़ा कम है?
3: हमका नहीं पता अम्मा।
1: अरे अम्मा
3: अम्मा, हम तो डब्बा खोल के देखबो नहीं बहन रहे, सोए गेन रहे। सच्चो अम्मा, विश्वास ना हो तो नीमी वाले बाबा के गिरिया खाई।

0: चुप रहो संजू, तुम तो निमी वाले बाबा क्रिया खाए खाए के निमकौरी जैसे करू हो गई हो। अम्मा हम तो कही थे ना पर्ची निकालो, अपने आप दूध का दूध पानी के पानी हो जाई, अब पता लग जाई कि प्याड़ा को खाई से।
1: हाँ लाओ, हम पर्ची निकाले जा रहे हैं अम्मा।
2: ए, संजू बड़ी तेज बनती है, आई है पर्ची निकाले।
1: अम्मा तुम्हारो नाम पर्ची में लिख दे।
3: हाँ, दिन देखे कर रहेगा के चोरन के पर्ची में हमार नाम निकाला जाये।
0: नहीं अम्मा का नाम ना लिखा जाये, देखो भाई तीनों पर्ची हम लिखित है संजू मंजू और राकेश के नाम की। हम पर्ची उछारी थे और बाबू तुम यही में से एक पर्ची उठाओ।
4: ससुर के नाती, यहाँ हम पानी पिए खातिर बैठन और तुम पंचन के पंचायत लगी। अब तो यह लागत है कि जब तक मुजरिम का काला पानी के सजा ना हो जाए तब तलक हमका पानी पिए ना मिली।
3: चलो हम ही उठाई थी पर्ची।
0: हाँ हाँ हाँ, अम्मा तुम ही निकालो।
3: आय दैया, यही माँ तो मंजू के नाम लिखा।
5: हम जाने तो रहा है कि हमारा नाम लिखा हुई जो काम कराए हो तो मंजू मंजू संजुइया का कुछ नहीं खाती है। हमारा नाम लिखाए थी इन पर्ची में, चोरन की पर्ची में हमारा नाम और हमारे इनसे काम।
3: बढ़िया ही, वहाँ भगवान पर कौन कंट्रोल आई ना ही है निका खाई ले। अब कहती नाई नाई नाई।
4: अरे मंजू की अम्मा, बिटिया खाए पी लें दो, चार दिन के मेहमान आए फिर का पता कैस घर बार मिले। हमका तो रात दिन एक चिंता रहा है कि कौनो तरह अपन मंजू के हाथ पियर हो जाए, लेकिन ये महंगाई में सब चीज के साथ साथ दूल्हों के दाम बढ़ गए हैं।
3: का मतलब दूल्हों के दाम?
4: अरे मंजू के अम्मा, दूल्हा बिकात है
3: आए?
4: जितना लंबा चौड़ा बेटवा, जैसन कमाई धमाई, जैसन घर द्वार, वह हिसाब से दहेज के लंबी लिस्ट।
3: का कह रहे हो? हाँ वैसे मंजू बाबू तुम चिंता न करो, हमारी नजर माँ या कलरी का है, वह का सब जने कल्लू कल्लू कहा थे मुल, वह का नाम है काली चरण। और हाँ, खाली नाम है केर कल्लू है, दिल केर बहुत साफ।
4: अच्छा तो तुम वही के दिल में झांक ले हो?
3: अब देखो मंजू बाबू, हमसे मस्खरी न किया करो, मतलब हमका लागत है कोई हमार मंजू का प्यार से राखी और ज्यादा नाई तो दुई जून के रोटी तो खबावे करी।
4: अच्छा
3: माँ बहुत संस्कारी है, अब देखो अक्सर हमार हाल खबर ले आवती। एक बन्ना आज कल तो कौन बूढ़ पुरनिया के लगे बैठत है, तुम बताओ कोई बैठत है? नाई बैठे हैं। और तो और कब गोभी के फूल, कब हमारी गांठी बदे तेल, कब आँख में न डारे वाली दवा, वह लेके आए जाती।
4: और तुम्हारी बातन तो तू लागत है संस्कारी होए और काफी समझदार हो, यू महंगाई में सही जगह पैसा इन्वेस्ट कर रहा है।
3: अरे का बड़बड़ाए हो मन मन हा?
4: अरे कुछ नहीं, हम तो कहे थे कल का संजय बुलाए लो अपने काली चरण का।
3: अरे हाँ हाँ, काहे नहीं, अब मैं फोन करी थे तुरंत आए।
6: अरे भाई गुड्डू, या देखो होवे वाली सासू माँ के फोन आ रहा है।
7: अरे भाई उठाओ उठाओ।
3: हेलो
8: हेलो
3: हेलो
8: हेलो।
3: हाँ बेटा काली चरण।
8: हाँ मौसी प्रणाम।
3: अरे खुश रहो बेटा खुश रहो। अरे हम कही थे के बहुत दिन हुई के आए नहीं, काल आओ तनी घूम जाओ घरे।
6: ठीक है मौसी। अरे भाई गुट्टू तुम्हारा आइडिया काम कर गवा बे, अबे मंजू के माता जी कल हमका बुलाई ने, शायद मेरी शादी का कया दिल में आया है, इसीलिए मौसी ने हमें चाय पे बुलाया है।
7: क्या बात है काली चरण भैया, अब तो मान गए हो लव गुरु गुड्डू जी महाराज का। एक गोभी के फूल, एक सीसी तेल और आई ड्रॉप में बात ही बन गए, ना ही तो ना जाने कतने गुलाब के महंगे फूल, कतने होटलन में खाना और कतने सिनेमा दिखावे कपरत, और यहो के बाद गारंटी न रहे कि घर में घुसे के मिली कि ना मिली।
6: अच्छा
7: औका तो अब महंगाई का कोसो नहीं, काहे कि महंगाई ने करी भलाई।

0: अरे नहीं गुड्डू भाई, हम तो कैतन मौसी ने करी भलाई। अरे यही लिए तो कहा जाता है माई मरे मौसी जिए।
1: तो अभय श्रोता पंचन सुनिन या नाटक माई मरे मौसी जिए, ये में भागले वाले कलाकार रहे नूतन वशिष्ठ, सुधांशु, राघवेंद्र सिंह, कपिल तिलहरी, ओम प्रकाश और वंदना श्रीवास्तव, आलेख प्रतिभा त्रिपाठी के, प्रस्तुति ज्योति चंद्रा जी के। तो आपका यह नाटक कैस लगा हमका जरूर बतायो भाई, अपन प्रतिक्रिया जरूर भेजियो। और यह के साथ अब हम आपका बताइए कि देखो आजकल भाई गर्मी तो पड़ी रही है, खूब एकदम भरपूर गर्मी हो रही है, तो कैसे या गर्मी के हम लाभ ले सकी थन। हाँ, और आपका बताइए कि यह बदे कि जो ये सूरज देव एकदम आग उगल रहे हैं, तो यही से बिजली बनावा जा सके थे और वही से हम अपन बिजली के बिल कम कर सकी थन, अपन लाभ ले सकी थन। तो यह बदे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चलाई जा रही है और यही के लिए देखो घर की जो छत है वही पे सोलर पैनल लगाए के बिजली उत्पादन करा जाते हैं और बिजली के बिल जो है वही कम हो जाते, कहे से कि उत्पादन होती बिजली के और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करा जाता है या योजना के अंतर्गत। तो आपको बता दें कि सोलर पैनल लगवावे बदे सरकार जो है वही सब्सिडी भी देती और आसान और कम पर ब्याज पर ऋण भी उपलब्ध करावा थी। एक और सुविधा या योजना में है वो आई कि भाई अगर आपके जो सोलर पैनल है वही आपके उपयोग से ज़्यादा बिजली अगर वही में बन रही है तो आप वही का सरकार के ग्रिड में भेज के और वही से अपन ज़्यादा फायदा ले सके, तो मैंने पैसा ले सके, तो पैसा का मतलब कि वही के मूल्य के बराबर आपकी बिजली जो है वही मुफ्त हो जाती, तो आपके बिजली के बिल वैसे हो कम हो जाते। अब अगर पात्रता के बात कर ली तो आवेदक का भारत के नागरिक होवे का चाहिए, अपन छत होवे का चाहिए, आवेदक के नाम पर बिजली का नवीनतम बिल होवे का चाहिए और बताए दे कि 1 किलोवाट सोलर पैनल अगर आप लगावा चाहत हो तो वही के खातिर 100 वर्ग फुट जगह की जरूरत पड़ती है। तो भाई देखो या तो पूरी जानकारी हम आपका दे दिया, आवेदन की प्रक्रिया के बारे में बताए कि यह के बदे आप ऑनलाइन आवेदन बहुत ही आसान है और ऑनलाइन आवेदन खातिर आप यह की आधिकारिक वेबसाइट जोन है पीएम सूर्य घर पोर्टल पर जाके पूरी जानकारी ले सकत हो। और यह जानकारी भाई और यह के साथ भाई गर्मी की बात चली तो एक तो गवनई सुनवा दी, तो आप सब सुनो यह गवनई स्वर है संजू सिंह बहनी की।

तो भाई देखो, गर्मी में अपन ध्यान रखो और बाहर निकलने से पहले पूरी सावधानी बरतो। और यह के साथ कार्यक्रम के समय भी समाप्त हो रहा है। तो आज के कार्यक्रम से प्रतिभा त्रिपाठी का देव अनुमति। नमस्कार, जय हिंद।

बहनें अभी सुन रही थीं अपना कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

जवानों के लिए कार्यक्रम में फौजी साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। फौजी साथियों जय हिंद। अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं लक्ष्य फिल्म के इस गीत से।

लक्ष्य फिल्म का ये टाइटल ट्रैक अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन की आवाज़ में। बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जवानों के लिए कार्यक्रम, जो कि पत्र और ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम है। तो आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं, निधि चौधरी। और पहली जो मेल हमें मिली है वो हमें मिली है जवानों के लिए कार्यक्रम में ज़िला रायबरेली ग्राम पहाड़ीपुर से रामराज, राजू भानु, रामशंकर, पत्रकार बहाई वाले रक्षा मौर्या, राम सागर शाहू, रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति। और ये सुनना चाहते हैं, ये सभी लोग सुनना चाहते हैं, इनकी फरमाइश है फिल्म नदिया के पार का गीत ये सुनना चाहते हैं। तो चलिए, आपकी फरमाइश में आपके पसंदीदा गीत को हम पहुँचाते हैं आपके रेडियो सेट तक।

कार्यक्रम चल रहा है जवानों के लिए, और कार्यक्रम में अगली जो मेल हमें मिली है वो किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहा आ से, ज़िला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी की मिली है। और ये लिखते हैं कि अहंकार से नहीं विनम्रता से जीत होती है, शब्दों से नहीं कर्मों से पहचान होती है, जो संस्कारों को जीवन में उतार लें उसे दुनिया खुद सम्मान देती है। और इन्होंने साथ ही साथ लखनऊ आकाशवाणी के लिए लिखा है कि यहाँ आपके यहाँ से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं और आप सभी की मधुर आवाज़ बड़ी ही मनमोहक लगती है। आज का इन्हें कुछ तुम कहो कुछ हम कहें कार्यक्रम भी बहुत पसंद आया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय पाल जी। और ये सुनना चाह रहे हैं राजकुमार फिल्म का गीत, तो चलिए आपने इस अच्छे गीत की फरमाइश की है तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत राजकुमार फिल्म का।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार फिल्म का गीत। और कार्यक्रम में अगली मेल हमको मिली है किसान रेडियो क्लब कुर्सठ हरदोई से। सभी आकाशवाणी लखनऊ को सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये बात लिखी है राम खिलावन, अवनीश द्विवेदी, विजय पांडे, मनी राम, देवेंद्र दीक्षित, बबलू यादव, राम प्रसाद, ये सभी लोगों ने एक गीत की फरमाइश की है और वो है अर्पण फिल्म से। तो चलिए आपकी फरमाइश पे हम आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

लता मंगेशकर की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे अर्पण फिल्म का गीत, और इस फिल्म के गीत के साथ ही आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति अपनी दोस्त निधि को दीजिए। फौजी साथियों, जय हिंद।

अभी आप जवानों के लिए कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलांग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार

0: विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है। इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
3: ICU 14 फ्लोर पर है, इसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी सूची कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जांच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई

फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के

0: भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
1: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है। गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
2: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 30,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट।

0: की प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिए डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह से की गई भेंट वार्ता, कृत्रिम गर्भाधान में पशु नस्ल सुधार। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां पशुपालन से आप जुड़े हैं, तो कृत्रिम गर्भाधान से पशु नस्ल सुधार कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके सिंह साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जब पशुओं में नस्ल सुधार की बात होती है तो कृत्रिम गर्भाधान कैसे फायदेमंद हो सकता है?
3: कृत्रिम गर्भाधान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हमारे किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। उच्च गुणवत्ता के वीर्य को अपनी गाय में प्रत्यारोपित कराकर और अच्छी नस्ल की बछिया या बछड़ा प्राप्त कर सकते हैं
2: जी।
3: इसके लिए सर्वप्रथम हमारे किसान भाइयों को ये पहचान होनी चाहिए कि हमारी जो गाय है वो समय से गर्म हो रही है कि नहीं, और गर्म होने के तुरंत बाद ही वीर्य नहीं डलाना चाहिए, कम से कम इंतजार करना चाहिए मध्य गर्मी का।
2: हाँ।
3: गर्मी जो है वो 36 घंटे की होती है, उसके मध्य ही उसको जो है वो वीर्य डलाना चाहिए,
2: यानी गर्भाधान कराएं ताकि सफलता मिले
3: जी। शुरुआत होने के 16 से 20 घंटे की अवधि पर कृत्रिम गर्भाधान ही करा लेना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, प्राकृतिक गर्भाधान है, उसकी तुलना में कृत्रिम गर्भाधान कितना अच्छा है?
3: प्राकृतिक गर्भाधान में हमें नस्ल का पता नहीं होता है, नर वत्सों के नस्ल का हमें पता नहीं होता है
2: जी।
3: जो हमारे सांड हैं उनकी नस्ल का पता नहीं, उसकी माँ कितना दूध देती थी ये हमें मालूम नहीं होता है।
2: हाँ।
3: तो अगर गाय से कम दूध देने वाले सांड से अगर हमने उसका कृत्रिम गर्भाधान करा दिया तो अगली पीढ़ी में गाय का दूध माँ के दूध से बछिया का दूध कम हो जाएगा
2: जी।
3: इसको ठीक करने के लिए हम लोगों ने कृत्रिम गर्भाधान को सर्वप्रथम जो है वो इसमें लागू किया। ये करीब 30 साल से चला आ रहा है
2: और काफी सफल भी,
3: काफी सफल है, और इससे जो है वो हमारा दुग्ध उत्पादन आज हम विश्व में नंबर एक पर हैं और उत्तर प्रदेश जो है वो भारत में नंबर एक पर है दुग्ध उत्पादन में।
2: और जो भी देसी नस्ल हैं उनका अपग्रेड भी हो रहा है?
3: बिल्कुल, जो हमारी देसी नस्लें हैं उनमें निरंतर सुधार हो रहा है। अब जैसे किसी के पास साहिवाल नस्ल है।
2: हाँ।
3: या देसी नस्ल है, तो देसी नस्ल में अगर वो साहिवाल का वीर्य डालता है
2: जी,
3: तो दो पीढ़ी के अंतराल के बाद उसको साहिवाल प्राप्त हो जाएगी।
2: तो डॉक्टर साहब, कृत्रिम गर्भाधान में कुछ खास सावधानियां भी रखनी होंगी?
3: बिल्कुल, सावधानियां बहुत रखनी होंगी, क्योंकि एक तो गर्मी की अवस्था।
2: हाँ।
3: गाय जो गर्म हो रही है उसकी सही अवस्था है कि नहीं,
2: उसकी पहचान,
3: पहचान बहुत जरूरी है। पहचान के लिए हमने बता दिया कि ये पहचान होती है कि गाय पतला स्राव गिराना शुरू करती है
2: जी
3: शुरुआत में, फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती है।
2: हाँ।
3: और दूसरे बछड़ों पर या सांडों पर जो है वो उन पर अटैक कर देती है या उनके ऊपर भिड़ जाती है उनसे।
2: हाँ।
3: और आवाजें निकालने लगती है विभिन्न प्रकार की
2: जी,
3: तेज आवाज में बोलेगी, पानी नहीं पिएगी, खाना छोड़ देगी, और पीछे से स्राव आएगा और पूंछ उसकी उठी हुई रहेगी।
2: कई बार कुछ गाय या भैंस चुप्पी भी होती है
3: जी। चुप्पी में ये होता है कि स्राव आता है लेकिन जो है वो आवाज नहीं करती, क्योंकि ये जो है वो हार्मोन से संबंधित है। हार्मोन अगर सही समय पे नहीं आया है तो उत्तेजना गाय में नहीं आएगी।
2: तो पशुपालक भाइयों बहनों को काफी
3: सावधान रहना पड़ेगा, उन्हें देखना पड़ेगा कि स्राव कब आ रहा है। स्राव तो निश्चित रूप से आएगा।
2: जो गर्मी की बीचों बीच अवस्था है उसको कैसे पहचाने?
3: उसको पहचानने का यह है कि सर्वप्रथम जब पहली बार गाय बोले उसको प्रथम गर्मी माना जाता है।
2: हाँ।
3: और उससे 16 से 20 घंटा के बीच की अवधि को चिन्हित कर लें। उस चिन्हित अवधि में कृत्रिम गर्भाधान करने वाले व्यक्ति को फोन कर ये बता दें कि तुम इतने बजे आना
2: जी,
3: वो जो भी समय हो, और वो आएगा और उस समय में जो है

0: वो वीर उसको पड़ जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान कराते समय कौन कौन सी विशेष बातें हैं डॉक्टर साहब?
1: विशेष बात यह है कि समय से वीर पड़ना चाहिए, श्राव की पहचान होनी चाहिए, श्राव पतला होना चाहिए जो कि उसके पीठ पर भी लग जाता है पूंछ के सहारे। एक तो ये है, दूसरा जो है वो सही समय पर व्यक्ति को बुलाकर और सही नस्ल का वीर डलवाना चाहिए। अब आपके पास अगर फ्रीजियन गाय है, विदेशी नस्ल की गाय है, तो उसमें विदेशी नस्ल का ही वीर डलाएं
0: जी।
1: और अगर आपके पास स्वदेशी नस्ल की गाय है तो उसमें आप स्वदेशी नस्ल का वीर डलाएं। जैसे कि आपके पास ये देसी गाय है
0: जी,
1: और वो हरियाणा से मिलती जुलती है,
0: हाँ,
1: तो आप उसमें हरियाणा नस्ल का वीर डलाएं। अगर उसमें थोड़ी लालिमा लिए हुए, हरियाणा सफेद होती है, और अगर साहिवाल है नस्ल की है, कान खड़े हैं और लाल रंग की है आपकी गाय, तो उसमें साहिवाल का वीर डलाएं। और अगर आपकी गाय के कान लटके हुए हैं
0: जी,
1: तो उसमें गिर नस्ल का वीर डलाएं।
0: डॉक्टर साहब, कृत्रिम गर्भाधान की बात चल रही है, नैसर्गिक जो प्राकृतिक गर्भाधान है उसमें भी कुछ सावधानियों की जरूरत?
1: बिल्कुल, प्राकृतिक गर्भाधान में ये देखना चाहिए कि जो सांड हमें उपलब्ध है, अगर सरकारी सांड भी उपलब्ध कराए जाते हैं
0: जी,
1: तो हमारे किसान भाई ये पता कर लें प्रधान से कि सरकारी सांड उपलब्ध है क्या ये। अगर वो देसी सांड है, घूम रहा है छुट्टा, तो निश्चित रूप से उसका जो है वो माँ का दूध अच्छा नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। लेकिन जो सांड अंशदान पे उपलब्ध कराए जाते हैं
0: जी,
1: उन सांडों से जो है वो प्राकृतिक गर्भाधान कराएं। प्राकृतिक गर्भाधान का एक और फायदा होता है कि जो गायें हीट में नहीं आती हैं,
0: हाँ,
1: या गर्म नहीं होती हैं, अगर उनको सांडों के पास ले जाया जाए मात्र
0: जी,
1: उससे ही वो गर्म हो जाती हैं, क्योंकि उससे कुछ हार्मोन निकलते हैं जो गाय को उत्तेजित करने में कार्य करते हैं।
0: डॉक्टर साहब, कृत्रिम गर्भाधान से आगे आजकल भ्रूण प्रत्यारोपण हो रहा है
1: जी, जी,
0: इसकी क्या कुछ संभावना है और पशुपालक भाई कैसे इससे लाभान्वित हो सकते हैं?
1: भ्रूण प्रत्यारोपण वह तकनीक है जिसमें कि हम गाय के अंदर ही भ्रूण बना देते हैं
0: जी।
1: एक गाय 8 से 10 अंडे देती है,
0: हाँ,
1: और उस 8 से 10 अंडों को हम अंदर ही जो है वो गर्भित करा देते हैं, अधिक 3 बार वीर डाल के
0: जी,
1: जिससे कि गाय के अंदर ही 7-8 भ्रूण तैयार हो जाते हैं एक गाय के अंदर,
0: हाँ,
1: फिर उन भ्रूणों को हम फ्लसिंग विधि से उससे हम बाहर निकाल लेते हैं,
0: हाँ,
1: और बाहर निकाल के भ्रूण को फिर जांच कर लेते हैं, उसमें से 5-6 भ्रूण हमें अच्छे स्वस्थ मिल जाते हैं
0: जी।
1: उन भ्रूणों को फिर हम प्रयोगशाला में ले जाते हैं और वहां उनकी थोड़ी सी टेस्टिंग की जाती है, उनको भोजन दिया जाता है भ्रूण को
0: जी,
1: और उस भ्रूण को फिर जो है वो 5 से 6 गायों को हीट में लाकर उनको उसी से करा दिया जाता है। तो एक गाय के भ्रूण से 5 गाय हमारी जो है वो गर्भित हो जाती हैं एक समय में,
0: और अच्छे नस्ल की,
1: अच्छे नस्ल की।
0: डॉक्टर साहब, कृत्रिम गर्भाधान से नस्ल सुधार की बात चल रही है, तो कई बार होता है कि कृत्रिम गर्भाधान कराया अपने जानवर का लेकिन टिकी नहीं गाय या भैंस
1: जी,
0: उलट गई
1: जी,
0: तो ऐसे पशुपालक भाई करें क्या?
1: ऐसे पशुपालक भाइयों को संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर लें, वो उसकी जांच करेंगे बच्चेदानी की, कि पहली ब्यांत में ठीक से अगर बच्चा नहीं निकला है या उसकी खेड़ी अंदर रह गई है, तो जो है वो संभावना होती है कि वो अगले ब्यांत में वो न टिके, क्योंकि उस पर जो है वो सिस्ट बन जाता है या कार्पस ल्यूटियम एक होता है वो विकसित हो जाता है, और वो जो है वो हार्ड हो जाता है, परसिस्ट कर जाता है
0: जी।
1: तो या तो डॉक्टर उसमें अंदर हाथ डाल के जो गांठ बनी है गांठ को तोड़ देते हैं,
0: हाँ,
1: और अगर नहीं टूटता है तो दवा से तोड़ देते हैं
0: जी।
1: तो ये कार्य कराने के बाद आपकी गाय गर्म भी होगी और जो है वो टिक भी जाएगी।
0: कई बार संक्रामक गर्भपात की भी शिकायत होती है, तो ऐसे में क्या कृत्रिम गर्भाधान फायदेमंद होगा?
1: बिल्कुल, कृत्रिम गर्भाधान का जो वीर है वो हमेशा फायदेमंद होता है, जो हमें प्राकृतिक गर्भाधान है उससे इन्फेक्शन फैलता है।
0: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे कृत्रिम गर्भाधान से पशु नस्ल सुधार के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: 9415-910-951 94-15-9

0: 910 951।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं पशुपालक भाइयों बहनों का कृत्रिम गर्भाधान से पशु नस्ल सुधार के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: मैं यही कहना चाहूंगा किसान भाइयों से कि वे अपने पशुओं का ठीक ढंग से रखरखाव करें, उनको मिनरल मिक्सचर और अन्य हरा चारा अवश्य खिलाएं और अपने पशुओं को अच्छे नस्ल का वीर डलवाकर कृत्रिम गर्भाधान कर बछिया प्राप्त करें, जिससे कि दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और आय में वृद्धि हो जाएगी हमारे पशुपालक भाइयों की।
1: डॉक्टर पीके सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और कृत्रिम गर्भाधान से पशु नस्ल सुधार कैसे हो इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृत्रिम गर्भाधान से पशु नस्ल सुधार, अभी आपने इस विषय पर डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह से की गई ये भेंट वार्ता सुनी। भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। रघुवीर पुत्र राम नायक गिरी, निवासी भदला, थाना दोस्तपुर, जनपद सुल्तानपुर से सूचित करते हैं कि उनकी पुत्री श्वेता दिनांक 16 नवंबर सन 2025 से कहीं लापता हैं। श्वेता की उम्र लगभग 17 वर्ष, कद लगभग 5 फुट, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। जिस समय ये लापता हुई थी उस समय इन्होंने सफ़ेद रंग की कुर्ती और हरे रंग की पैजामी पहन रखी थी। इनके पाए जाने के संबंध में सूचना आप कृपया इस नंबर पर दे सकते हैं। नंबर है 9971473310। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 9971473310। श्री कृपा शंकर दुबे जी ने सूचना दी है कि श्री अरविंद मिश्रा, निवासी रालही का पुरा, थाना लंबुआ, जनपद सुल्तानपुर से जो हैं, उनके पुत्र अभय मिश्रा उर्फ चित्रांश दिनांक 2 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। अभय मिश्रा उर्फ चित्रांश की उम्र लगभग 15 वर्ष 8 माह, कद लगभग 5 फुट 3 इंच, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये इकहरे शरीर के हैं। जिस समय ये लापता हुए थे उस समय इन्होंने लाल रंग की हाफ टी शर्ट और क्रीम रंग का फुल लोअर पहन रखा था। इनके पाए जाने के संबंध में सूचना आप कृपया इस नंबर पर दे सकते हैं। नंबर है 7080681733। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 7080681733। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं। ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब सुनिए एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prasarbharti.gov.in/NIPP/ अथवा akashvani.gov.in/files/nipp.pdf। सूचना समाप्त हुई।
3: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
4: बदल रहा है भारत तेज है रफ्तार,
5: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
4: एक ऐसा कार्यक्रम
5: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
4: विकास की बातें, संगीत की मिठास
5: और एक नए भारत की आवाज़।
4: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
5: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई

0: उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको शिखा श्रीवास्तव के गाए अवधि लोकगीत सुनवाने जा रहे हैं, तो कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए ये लोक भजन शिखा श्रीवास्तव के स्वर में।

कार्यक्रम चल रहा है लोक माधुरी, आज की कलाकार हैं शिखा श्रीवास्तव। तो अब सुनिए ये दादरा गीत शिखा श्रीवास्तव के स्वर में।

अभी आपने सुना ये दादरा शिखा श्रीवास्तव के स्वर में, और कार्यक्रम के अंत में आपको सुनाने जा रहे हैं ये गंगा गीत स्वर शिखा श्रीवास्तव का।

0: अभी आप लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में शिखा श्रीवास्तव के गाए अवधी लोकगीतों का आनंद ले रहे थे। आज का लोक माधुरी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए

0: रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर इस समय अपराहन के 3:16 हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा संपन्न होती है। दूसरी सभा के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे शाम 5 बजे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। अब आरंभ हो रही हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा में सबसे पहले आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: The discussions also...

0: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
1: दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रॉड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इससे फील्ड कमांडरों की परिचालन दक्षता और मजबूत होगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों लगाई जा चुकी हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता 855 मेगावाट है। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन देर से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे रात्रि 11:10 पर। आज का विषय है स्वास्थ्य। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगी अनुप्रिया पटेल, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात 10 बजे। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। खेल जगत कार्यक्रम होगा शाम 7:31 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे दंगल से मेडल तक। विषय है कुश्ती गामा पहलवान और दारा सिंह। आलेख आसिफ इकबाल।

लगता है और स्वर है शमसुल आफरीन और आशिफ इकबाल का। युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग शाम 5:10 पर, जिसमें आज सुनिएगा राष्ट्रीयकृत बैंक की समेकित विकास योजनाएं। जानकारी देंगे राजीव कुमार और आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। नई उड़ान कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर, जिसमें आज नवदृष्टि के अंतर्गत सुनिएगा कपिल की ओबी पर आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा AI की नई पाठशाला। स्वच्छ गांवों के लिए स्मार्ट समाधान, डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र की यह वार्ता आप सुनेंगे लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर। सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन, इस पर डॉक्टर श्याम राज सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता प्रसारित होगी खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर। हिंदी कार्यक्रम होगा रात 8:00, जिसमें आज सुनिएगा कहानी बचाओ। कहानीकार होंगे महेंद्र भीष्म। वाचन संपादन होगा सुरेंद्र राजेश्वरी का। अनिमेश मुखर्जी के गाए गीत और भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर। श्रोता अपनी पसंद के फिल्मी नगमे सुन सकेंगे आपकी पसंद कार्यक्रम में आज रात 9:30 पर। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की, और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल यानी 5 जून 2026 को आकाशवाणी लखनऊ से प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला आप सुनेंगे रात्रि 11:10 पर। कल का विषय है महिला सशक्तिकरण। कल के कार्यक्रम में उपस्थित होंगी अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। जिले की हलचल आप सुनते हैं हर रोज प्रातः 9:15 पर। उर्दू कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का गायन सुनिएगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर, और पंडित राजेंद्र प्रसन्ना का बांसुरी वादन हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में रात 10:30 पर। मीनू वाजपेयी के गाए अवधि लोकगीत सुनिएगा लोकरंग कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर, और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर। पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली पर केंद्रित बातचीत, बोए उम्मीद के बीज बचाएं अमृत सा पानी, सुनिएगा अपराजिता कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर। इस बातचीत में भाग लेंगी मंजरी उपाध्याय और प्रशंसा गुप्ता। सैयद कलबे हसन से गन्ना उत्पादन पर उनकी सफलता की कहानी सुनिएगा विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। डॉक्टर राजीव कुमार सिंह की वार्ता बाल श्रम उन्मूलन आप सुनेंगे कल के युवा तरंग कार्यक्रम में शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम होगा शाम 5:45 पर, जिसमें कल सुनिएगा वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे पर फीचर खामोश जंगलों की पुकार। आलेख है डॉक्टर उमाशंकर सिंह का और नरेशन आरती और आनंद का है। डॉक्टर शिप्रा यादव की वार्ता गांवों में पोषण सुरक्षा सुनिएगा शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में। कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आप सुनेंगे खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर। आलेख एवं वाचन है अमरेंद्र सहाय अमर का और संपादन है डॉक्टर सुशील कुमार राय का। अंग्रेजी कार्यक्रम का समय होगा शाम 7:31 पर, जिसमें कल सुनिएगा वाटर एवरीवेयर वी विल नीड मोर टू ड्रिंक विषय पर एन इंटरव्यू विद IIT रुड़की गोल्ड मेडलिस्ट मीना अग्रवाल। इंटरव्यूअर होंगी डॉक्टर शिबा राकेश। विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष भेंटवार्ता जलवायु के लिए वर्तमान समय आप सुनेंगे हिंदी कार्यक्रम में कल रात 8:00। इस विषय पर प्रोफेसर राम लखन सिंह से भेंट करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। अमृता नंदी के गाए गीत और भजन हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत कार्यक्रम में कल रात 8:10 पर। ये थी जानकारी हमारे आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। युवा साथी सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग।

स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग में और मैं हूं आपकी दोस्त सुरभि। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और हमारा कार्यक्रम सुन रहे होंगे। क्योंकि साथियों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा विषय जो केवल रोजगार का माध्यम ही नहीं है, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और सफलता की नई पहचान भी दिलाता है। जी दोस्तों, समय तेजी से बदल रहा है। पहले नौकरी को ही सफलता का सबसे बड़ा पैमाना माना जाता था, लेकिन आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बन रहा है। आज अनेक युवा अपने हुनर, ज्ञान और नवाचार के बल पर स्वयं का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, और यही है स्वरोजगार की वास्तविक शक्ति। साथियों, आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे स्वरोजगार के विषय में, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। दोस्तों, स्वरोजगार का मतलब है अपने कौशल यानी अपनी स्किल्स, संसाधनों और परिश्रम के आधार पर स्वयं काम शुरू करना और उससे आय अर्जित करना, यानी कि एक अपना काम शुरू करना और उससे अपनी इनकम बनाना। ये कोई दुकान भी हो सकती है, कोई सेवा केंद्र भी हो सकता है, कृषि आधारित कोई उद्यम हो सकता है, ऑनलाइन व्यवसाय, हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, ट्यूशन सेंटर, ब्यूटी पार्लर, डिजिटल सेवा केंद्र या कोई भी स्टार्टअप हो सकता है। बहुत सारे विकल्प हैं जब हम स्वरोजगार की राह को देखते हैं। श्रोताओं, स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को बहुत से लाभ भी मिल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला लाभ है आत्मनिर्भरता। स्वरोजगार व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है और उसे अपने निर्णय स्वयं लेने की स्वतंत्रता देता है। दूसरा है साथियों, रोजगार सृजन। जब कोई व्यक्ति अपना काम शुरू करता है, अपना व्यवसाय शुरू करता है, तो वो केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करता है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है साथियों, दूसरा है आय की असीमित संभावनाएं। नौकरी में आय निश्चित है, लेकिन स्वरोजगार में मेहनत, नवाचार और विस्तार के बल पर हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। साथियों, चौथा लाभ है कि हम स्वरोजगार में अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने के लिए आज़ाद हैं। व्यक्ति अपने कौशल, रुचि और अनुभव के आधार पर कार्य क्षेत्र चुन सकता है, जिससे काम में संतुष्टि और उत्साह बना रहता है। इसके साथ ही साथियों, स्थानीय संसाधनों और प्रतिभाओं का उपयोग होना ये स्वरोजगार का एक और लाभ है। स्वरोजगार के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों को आर्थिक गतिविधियों में बदलने का अवसर पैदा किया जा सकता है, जिससे कि क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलती है। इस प्रकार साथियों, स्वरोजगार आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और नवाचार की भावना को भी विकसित करता है। यही कारण है कि आज का युवा नौकरी खोजने के साथ साथ रोजगार देने वाला बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। तो साथियों, स्वरोजगार केवल कमाई का साधन नहीं है बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और विकास का मार्ग भी है। स्वरोजगार व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता देता है। इसमें निर्णय लेने का अधिकार भी उसके स्वयं के पास होता है और सफलता का श्रेय भी उसी व्यक्ति का होता है। आज के दौर में स्वरोजगार केवल एक विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता बनता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या और सीमित सरकारी नौकरियों के बीच स्वरोजगार युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। डिजिटल तकनीक और इंटरनेट ने व्यवसाय शुरू करना पहले की तुलना में काफ़ी आसान भी बना दिया है। आज एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने उत्पादों और सेवाओं को देश दुनिया तक पहुंचा सकता है। प्रिय श्रोताओं, आज युवाओं के सामने स्वरोजगार के अनेक

अनेक अवसर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन व्यवसाय और ई कॉमर्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीलांसिंग, कृषि एवं जैविक खेती के क्षेत्र, डेयरी, मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सेवाएं, फैशन डिजाइनिंग, बुटीक, हस्तशिल्प एवं ODOP यानी कि एक जिला एक उत्पाद का व्यवसाय। इन सभी क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए राहें खुली हुई हैं। ज़रूरत है इच्छा शक्ति की। इसके लिए साथियों सरकार द्वारा मदद भी मिलती है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, एक जनपद एक उत्पाद योजना, इन सभी योजनाओं के माध्यम से दोस्तों प्रशिक्षण, ऋण, सब्सिडी और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों किसी भी बड़े कार्य की शुरुआत छोटे छोटे कदमों से होती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास और सही दिशा में की गई मेहनत निश्चित रूप से अच्छे परिणाम देती है। यदि आपके पास कोई कौशल है, कोई नया विचार है या कुछ नया करने की जुनून है, क्षमता है, तो उसे अवसर में बदलने का प्रयास कीजिए। याद रखिए हर सफल उद्यम की शुरुआत एक छोटे से विचार से ही होती है। तो साथियों स्वरोजगार केवल आजीविका कमाने का माध्यम नहीं बल्कि आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की मजबूत नींव भी है। आज का युवा यदि अपने कौशल और क्षमता पर विश्वास करे तो वो न केवल अपना भविष्य संवार सकता है बल्कि समाज और राष्ट्र की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। तो साथियों कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक खूबसूरत से गीत का। आइए सुनते हैं ये गीत, मिलते हैं गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: श्रोताओं, किसी भी देश के आर्थिक विकास में बैंकिंग व्यवस्था की अहम भूमिका होती है। खासतौर पे राष्ट्रीयकृत बैंक न केवल लोगों की बचत को सुरक्षित रखने का काम करते हैं, बल्कि विभिन्न विकास उन्मुखी योजनाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान भी देते हैं। किसानों को कृषि ऋण, युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाएं, स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन और छोटे उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार के लिए ऋण सुविधाएं, ये सभी प्रयास समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन्हीं विषयों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ श्री राजीव कुमार जी स्टूडियो में हैं, जो हमें राष्ट्रीयकृत बैंक की समेकित विकास योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
5: जीवन के सुचारू संचालन के लिए यह आवश्यक होता है कि हम अपने घर परिवार के साथ साथ अपने समाज से कुछ न कुछ सीखते हैं और कोशिश यही करते हैं कि हमारी जो विकास प्रक्रिया है वह सुनिश्चित हो सके। लेकिन इससे भी आगे हम बढ़ते हैं, जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ है, आपने देखा होगा कि सरकार की जो योजनाएं हैं वह भी हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो गई हैं। अब समाज जितना आधारित विकास की बात की जाती थी वह थोड़ा पीछे हो गई है, लेकिन सरकार के द्वारा या सरकार के नियंत्रण में बैंकों के द्वारा या फिर विभिन्न विभागों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है। इसलिए आज, जैसा कि आपने सुन ही लिया कि हमारे बीच में राजीव कुमार जी हैं, जो कि AGM हैं, और राष्ट्रीयकृत बैंक की क्या कुछ योजनाएं होती हैं, हमारे विकास के लिए क्या कुछ सहूलियतें होती हैं, उसको जानेंगे। राजीव जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: पहली बात यही जानना चाहेंगे कि कहा जाता है बैंक तो पैसा लेने और देने तक या फिर लोन लेने या देने तक इतने तक सीमित होता है, लेकिन विकास की प्रक्रिया से जोड़ करके यह कार्रवाई की जाती है। इसको अगर हम एक समेकित स्वरूप में देखना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे आप?
6: देखिए, बैंकों का एक दायरा निश्चित, जैसा कि लोगों के

मन में भावना है उस तरह से थोड़ा इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी तक लोग ये सोचते हैं कि पैसों से लेना, जमा करना और लोन एक पर्टिकुलर आदमी को देना, ये ही बैंकों का काम है। ऐसा नहीं है। इसके अलावा बैंकों के द्वारा बहुत सारे सामाजिक काम जो है बैंक ने संचालित कर रखा है। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, अभी जितने भी आपने देखा होगा कि जितने भी रूरल यूथ हैं या अर्बन यूथ हैं जो कि रोज़गार के चक्कर में इधर उधर भटकते रहते हैं, इसमें सरकार का भी अहम रोल है। और बैंक जो है हर मतलब लीड डिस्ट्रिक्ट में, जिसको कहा जाता है लीड डिस्ट्रिक्ट में, एक रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मतलब बना रखा है, जहां पर कि फ्रीली किसी तरह का चार्ज नहीं लिया जाता है और जितने भी इस तरह के युवा होते हैं उनके कौशल को विकास किया जाता है। उनको 8 से 10 दिन तक रहने, खाने और ट्रेनिंग देने का सारा प्रबंध करता है बैंक। और इसके साथ ही काम यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसके अलावा जो है उनको इस ट्रेनिंग के बेसिस पर फिर ये ऋण मुहैया अपनी शाखाओं के द्वारा उसको कराया जाता है, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो और अपनी इनकम

0: जितने भी इस तरह के युवा होते हैं उनके कौशल को विकास किया जाता है, उनको 8 से 10 दिन तक रहने खाने और ट्रेनिंग देने का सारा प्रबंध करता है बैंक। और इसके साथ ही काम यहीं ख़त्म नहीं होता है, इसके अलावा जो है उनको इस ट्रेनिंग के बेसिस पर फिर ये ऋण मुहैया अपने अपनी शाखाओं के द्वारा उसको कराया जाता है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो और अपनी इनकम जनरेट करे और देश के विकास में अपना रोल अदा करे।
1: जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं या पारंपरिक रूप से कहें कि उद्योग धंधे हुआ करते थे हमारे समाज में, बढ़ईगिरी है, लोहारगिरी है, या फिर तमाम ऐसे मिट्टी से बर्तन बनाने वाले वो सब भी हैं, ऐसे लोगों को भी जोड़ करके कौशल विकास प्रशिक्षण में उनको और अच्छे ढंग से समायोजित किया जा रहा है। लेकिन लोन के लिए ये कहा जाता है कि मुद्रा बैंक लोन योजना उसके साथ को लिंक है जिससे कि सुविधा होती है। ऐसा नहीं है केवल वही बैंक नहीं बल्कि सभी बैंक उसमें कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, एक बात ये अच्छी क्लियर हुई। और इसके लिए हम समझते हैं कि जो भी युवा हैं वह आकर्षित होंगे और इस तरह के प्रशिक्षण से जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन एग्रीकल्चर सर्विसेज आपके पद के साथ जुड़ा हुआ है तो वहाँ से हम शुरुआत करना चाहेंगे इसमें कि खेती तो एक देखें कि व्यापक स्वरूप में होती है, तमाम तरह के सीड और फर्टिलाइजर से लेकर जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन सब की आपूर्ति सरकार या फिर एजेंसीज के द्वारा की जाती है। आप कैसे सहयोग करते हैं किसानों को?
0: देखिए, अभी तक मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने किसान भाई हैं और जो भी लोग किसान से एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं उनको कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव होता है। तो मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार प्रकट करूंगा कि ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी अगर किसान और किसान से रिलेटेड यानी जो लोग इंटरेस्टेड हैं फार्मिंग से, अगर उनको तक ये जानकारी मिले तो निश्चित रूप से वो ये काम करेंगे और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना किया है। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में क्या है कि इसके थ्रू अगर मान लीजिए कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करता है, कोई भी उद्यमी, कोई भी 4-5 किसान, अभी क्या है FPO फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, चूँकि हमारे देश में 86% किसान जो है वो तो लघु और सीमांत के दायरे में आते हैं। तो अब किसान गवर्नमेंट ने इनको एक कंपनी के रूप में बनाने के लिए, एक फर्म के रूप में बनाने के लिए बहुत सारे फैसिलिटी दे रखा है जिसके तहत उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना है, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, विपणन की व्यवस्था है और इनको 100 करोड़ तक का लोन प्रोविजन किया गया है जिसमें कि वो कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो फसल का काम करें, चाहे वो एग्रीकल्चर एलाइट्री में पोल्ट्री करें, फिशरी करें, कुछ भी करें। अभी तक क्या था कि हम जैसे एलाइड एक्टिविटी में जैसे गाय भैंस के लोन देते थे, अभी किसान के लिए आपने आप लोग जानते होंगे कि किसान क्रेडिट कार्ड सिर्फ फसल के लिए और उससे रिलेटेड काम के लिए दिया जाता था। अभी अभी सरकार ने गाय भैंस के खरीदने के लिए व्यवस्था तो किसान कार्ड में हुआ करता था, अभी गाय भैंस के द्वारा जो लिमिट टाइप का है वो दिया गया है कि अगर कोई किसान के पास मान लीजिए कि गाय भैंस तो है लेकिन चलाने की व्यवस्था नहीं है, अन्न मतलब ना घास खरीदने की व्यवस्था है, ना दवाई की व्यवस्था है, तो डेली टू डेली एक्टिविटी के लिए भी वो लिमिट ले सकता है वो, और वो लिमिट जो है उसके फसल के लिमिट के अलावे होगा।
1: अच्छा, जैसे व्यापार में होता है जिसे लिमिट
0: उससे उसके अलावे होगा और ये बहुत ही कम ब्याज दर पर है और साथ साथ इसमें भी सब्सिडी दिया जाता है।
1: अच्छा, ऊपर से
0: उस पर सब्सिडी दिया गया, जैसे कि किसान कार्ड में क्या था 3 लाख तक रुपए तक का सब्सिडी मिलता है, यानी किसान को 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है, 2% सब्सिडी बैंकों को दी जाती है और जो किसान समय पर वापस करते हैं उनको 3% जो है वापस कर दिया जाता है, यानी किसान को 4% लगता है। उसी तरह का प्रोविजन अभी एनिमल हस्बेंड्री के रूप में ये कहिए डेयरी कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था किया गया है।
1: अच्छा,
0: और इसमें क्या है कि वो 2 लाख रुपए तक का भी जो लोन लेंगे 2 लाख तक में वो सब्सिडी के पात्र होंगे और उनको भी 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा और टाइम पर ही पे करते हैं तो उनको भी 3% सबवेंशन का प्रोविजन मिलेगा।
1: बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल क्रांतिकारी हो सकता है अगर युवा जागरूक हों और इस तरफ जुड़ें नेशनलाइज बैंकों से, तो निश्चय ही उनके व्यवसाय के लिए और उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। लेकिन एक चीज़ और भी देखा है कुमार साहब कि जब ये कोविड का बड़ा प्रकोप रहा, मुंबई हो, दिल्ली हो या फिर कलकत्ता हो, हर जगह से सब लोग अपने यूपी की तो जनसंख्या बहुत है थी इसलिए सब वापस आते रहे, मुख्यमंत्री जी हों या फिर यहाँ की पूरी सरकार, ये लगी रही कि MSME के माध्यम से उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मुहैया कराना है, उनको यूनिट खड़ी करने के लिए कुछ विशेष सहूलियतें दी जा रही थी, तो क्या ये सहूलियतें जो थी वो आज भी हैं और हैं तो किस स्वरूप में हैं?
0: बहुत बढ़िया, आपने ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा है। एक्चुअली मैं

0: कोविड का अगर हम बात करें तो कोविड की जो महामारी है वो उसने जिस तरह से विश्व को मतलब अपने मतलब क्या कहें पेंडेमिक से जिस तरह से विश्व को थर्राया है, तो हम भी अछूते नहीं हैं। कोविड-19 में जब हुआ था तो उसका इफेक्ट कम था, लेकिन 2021 में जो है इफेक्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा हुआ। इससे हमारे इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और जिसके कारण हमारा जीडीपी, आप समझिए कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ना होता तो हमारा जीडीपी निगेटिव होता। धन्य भाग हरित क्रांति का, धन्य भाग किसानों का, जिसके चलते हमारी जीडीपी निगेटिव में नहीं गई। 2020-21 में और निगेटिव 4% के आसपास रहा, अदरवाइज हम भी निगेटिव में जाते। अभी इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट जो है बहुत अच्छे अच्छे स्कीम लेके आया हुआ है, जिसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनकी कंडीशन जो है वो पेंडेमिक के चलते वो रिपेमेंट नहीं कर पा रहे, उनका खाता स्ट्रेस में आ गया है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको जितने भी उनके खाते हैं उसको रीस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जितना दिन का उनका पेमेंट है उसके लिए अलग लोन दे दिया जाएगा, जो कि वो 3 साल से 5 साल तक में जमा करेंगे और
1: अच्छा
0: अपना काम करते रहेंगे, और इनके अलावा 10% 20% का फंड अलग से दिया जाएगा। ये व्यवस्था किसान ने, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत मिनिमम दिया गया है, कोई मतलब 7.5 से 8 पे एक फिक्स कर दिया गया, इससे ज्यादा चार्ज नहीं लिया जाएगा।
1: मतलब ये समझ सकते हैं कि जो इंटरेस्ट उनका उस बीच का था उसकी भरपाई भी इसी से हो
0: जाएगी,
1: एक सहूलियत हो
0: जाएगी।
1: की बात आप रुकिए नहीं, आगे बढ़ते रहिए, अपना कार्य करते रहिए, हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, आप लोगों का उद्देश्य है। लेकिन ये एमएसएमई में हम ये कहें कि बहुत सारी जगहों पर उद्योग विभाग या फिर और भी विभागों से जुड़ना पड़ता होगा, तो इसको कैसे आप लोग सॉल्व कराते हैं, क्या
0: अभी
1: कुछ होता है?
0: अभी क्या है कि देखिए एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ने इतना अच्छा कर दिया है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है
1: जी,
0: और ऑनलाइन पोर्टल पर ही इसकी एप्लीकेशन आती है, इसलिए सारे डिपार्टमेंट ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपनी कंग्रेस देते हैं, कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है। अभी 59domino.com है साइट है, पोर्टल है, जिस पर एप्लीकेशन देने के बाद उसका टाइम फिक्स है, इतने दिन के अंदर आपको सेंक्शन करना पड़ेगा। और उसमें और वो सेंक्शन होने के बाद उस ब्रांच जिसने बैंक ने सेंक्शन किया है, ब्रांच का नाम है, एक इंटीमेशन कस्टमर को जाता है, एक इंटीमेशन बैंक को जाता है, और तय पीरियड के अंतर्गत वो डिसबर्समेंट होता है। तो एमएसएमई के लिए तो अभी इतना बढ़िया कर दे, लेकिन सिर्फ जरूरत क्या है कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए उस एमएसएमई को, तब उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। और एप्लीकेशन के लिए किसी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है आज की डेट में। तो आप देखिए पहले क्या था, पहले जमाना था कि एमएसएमई के लोग लोन डॉक्यूमेंट साइन के लिए, सेंक्शन होने के बाद साइन करने के लिए आते थे। अभी यूपी में खास करके 5 करोड़ तक का लोन
1: जी
0: के लिए उनको साइन करने के लिए भी नहीं होगा, उसका भी डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन
1: घर बैठे बैठे
0: एक लिंक आपको भेज दिया जाएगा, और आपकी सारी चीज आप लिंक पर डिजिटली साइन करिए और आपको जाने की जरूरत नहीं है।
1: क्या बात है, तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है,
0: और ये अभी प्रोसेस में चल रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये इतना आसान हो जाएगा कि जितने भी हमारे खास करके लघु उद्यमी व्यापारी हैं उनके लिए ये मार्वेलस क्रांति का काम करेगा
1: जी। और बहुत क्रांतिकारी बातें भी आपने कही हैं, और हमको लगता है कि विशेष रूप से जो हमारे सुनने वाले युवा हैं वह आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, और बहुत मन भी कर रहा है कि बहुत और बातें करें, लेकिन समय बाध्य करता है। फिर कभी हम लोग मिलेंगे तो आगे सर्विसेज या फिर अन्य सेक्टर्स जो हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आज आपने समय निकाला हमारे स्टूडियो है इसके लिए, राजीव जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद
2: जी। दोस्तों, तो बैंक आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है, और बस आपके अंदर कुछ शुरू करने का जज्बा होना चाहिए, और तो इसके इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई राजीव जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी का, और नागेंद्र सिंह रघुवंशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने श्रोताओं तक ये भेंट वार्ता पहुँचाई। साथियों, कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक गीत का, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

साथियों, युवा अवस्था सपनों, संभावनाओं और नए अवसर का समय होती है। इस दौर में हर युवा अपने भविष्य को लेकर कई योजनाएं बनाता है, लेकिन करियर चुनते समय एक प्रश्न अक्सर सामने आता है, सरकारी क्षेत्र या निजी क्षेत्र। अक्सर किसी क्षेत्र में आखिर किस क्षेत्र में अधिक अवसर है और सफलता की बेहतर संभावनाएं कहाँ हैं? दोस्तों, वर्तमान समय में रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले जहां अधिकांश युवा केवल सरकारी नौकरी को ही अपनी करियर का लक्ष्य मानते थे, वहीं आज निजी क्षेत्र भी युवाओं के लिए अनगिनत अवसर लेकर आया है। तकनीकी विकास, डिजिटल क्रांति और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विस्तार ने रोजगार के नए द्वार खोले हैं।

तो साथियों, जहाँ सरकारी नौकरी में नौकरी की स्थिरता है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, प्रशासनिक सेवाएं, बैंकिंग, रेलवे, रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, विभिन्न सरकारी विभाग युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करते हैं। सरकारी नौकरी में देश और समाज की सेवा करने का अवसर भी मिलता है। हालांकि इसके लिए कड़ी मेहनत, धैर्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की गंभीर तैयारी की आवश्यकता होती है। साथियों, निजी क्षेत्र की अगर बात करें तो देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार बन चुका है निजी क्षेत्र। सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल मार्केटिंग, मीडिया, वित्त, स्वास्थ्य, पर्यटन, शिक्षा, ई कॉमर्स, विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए तमाम अवसर उपलब्ध हैं। निजी क्षेत्र में कार्य करने वाले युवाओं को नई तकनीक के साथ काम करने और अपने कौशल को विकसित करने और तेजी से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। यहाँ प्रदर्शन और योग्यता को बहुत महत्व दिया जाता है। अब अक्सर युवा ये जानना चाहते हैं कि सरकारी और निजी क्षेत्र में से कौन बेहतर है, तो वास्तव में इसका कोई एक उत्तर नहीं है दोस्तों। यह पूरी तरह व्यक्ति की रुचि, क्षमता और लक्ष्य पर निर्भर करता है। यदि आप स्थिरता, जनसेवा और प्रशासनिक कार्यों में रुचि रखते हैं तो सरकारी क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। वहीं यदि आप नई चुनौतियों को स्वीकार करना चाहते हैं, तो लगातार सीखना चाहते हैं, तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो निजी क्षेत्र बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। दोस्तों, आज के समय में केवल डिग्री प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, सफलता के लिए आपको आवश्यक कौशल का होना जरूरी है। तो साथियों, करियर का चुनाव दूसरों को देखकर नहीं बल्कि अपनी रुचि और क्षमता को पहचान कर करें। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, स्वयं पर विश्वास रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। अवसर हर क्षेत्र में है, आवश्यकता है केवल उन्हें पहचानने और उनका सही उपयोग करने की। तो दोस्तों, आज हमने बात की करियर के विषय में, बात की हमने स्वरोजगार के विषय में, और कल 5 जून है जब हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं और इसी पर आधारित होगा हमारा कल का प्रोग्राम। अब आज का समय, आज तो घड़ी इशारा कर रही है आप सभी से विदा लेने का। अपनी दोस्त सुरभि को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवा तरंग। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

नमस्कार साथियों, एक बार फिर कार्यक्रम नई उड़ान सुनने वाले अपने सभी साथियों का आपकी रेडियो दोस्त पारुल स्वागत और अभिनंदन करती है। दोस्तों, बच्चे किसी भी देश का भविष्य, समाज की उम्मीद और मानवता का सबसे सुंदर स्वरूप होते हैं। ये कोमल, निष्पाप और पूरी तरह से वयस्कों पर निर्भर करते हैं। एक ऐसा संसार जहाँ हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे, खेल सके, पढ़ सके और अपने सपनों को उड़ान दे सके, यही आदर्श समाज की परिभाषा है। लेकिन दुर्भाग्य से आज की वास्तविक दुनिया इस आदर्श से कोसों दूर है। इसी कड़वी सच्चाई की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और इन मासूमों के अधिकारों की रक्षा के लिए हर साल 4 जून को आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है।

पता है। ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि दुनिया भर में हिंसा और अक्रामकता का शिकार हो रहे करोड़ों बच्चों के दर्द, उनकी चीखों और उनके अधिकारों के लिए एकजुट होने का एक वैश्विक आह्वान है। इस विशेष दिवस को मनाने की शुरुआत के पीछे एक बेहद दर्दनाक और ऐतिहासिक घटनाक्रम है। बात साल 1982 की है, जब लेबनान युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चे इजरायली सेना की आक्रामकता और हिंसा का शिकार हुए थे। इस युद्ध ने हजारों बच्चों से उनका बचपन, उनके माता पिता और उनके जीने का अधिकार छीन लिया। इस त्रासदी से विचलित होकर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 अगस्त 1982 को अपने एक आपातकालीन विशेष सत्र में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। महासभा ने लेबनान में इसराइल की आक्रामकता से प्रभावित हुई बड़ी संख्या में निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों के कष्टों और पीड़ाओं को गहरा दुख व्यक्त किया। इसी सत्र में निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 4 जून को आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तब से लेकर आज तक साथियों, हर साल 4 जून को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया भर के संगठन इस दिन के माध्यम से बच्चों के खिलाफ होने वाली हर प्रकार की हिंसा को समाप्त करने का संकल्प दोहराते हैं। साथियों, भारत दुनिया की सबसे बड़ी बाल आबादी वाले देशों में से एक है, इसीलिए यहाँ बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा का मुद्दा और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत में युद्ध जैसी स्थितियां तो नहीं हैं, लेकिन बच्चे अन्य प्रकार की आक्रामकता और हिंसा का सामना करते हैं, जैसे बाल श्रम, घरेलू हिंसा, बाल विवाह और साइबर बुलिंग। भारत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कड़े कानून बनाए हैं। बच्चों का यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पॉक्सो अधिनियम, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट है, उसे बनाया है। इसमें अपराधियों को लेकर कड़ी सजा का प्रावधान है। दूसरा जो कानून सरकार ने बनाया है वो है बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में से हर किसी को श्रम करवाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तीसरा है मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, जिसे हम RTE एक्ट भी कहते हैं, जिसमें 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, ताकि उन्हें अज्ञानता और शोषण के अंधेरे से निकाला जा सके। संकट में फंसे बच्चों की मदद के लिए एक 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपातकालीन फ़ोन सेवा है, जिसे चाइल्डलाइन 1098 कहा जाता है, जो बच्चों को तत्काल सुरक्षा और सहायता प्रदान करती है। साथियों, आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल सरकारों के भाषणों या सम्मेलनों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। एक जागरूक नागरिक और समाज के हिस्से के रूप में हमारी भी कुछ बुनियादी जिम्मेदारियां हैं। यदि आप अपने आस पड़ोस घर या किसी दुकान पर किसी बच्चे के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार या बाल श्रम होते हुए देखें तो मूक दर्शक ना बने, तुरंत अधिकारियों या चाइल्ड लाइन को सूचित करें। आप संवेदनशील बने, बच्चों के साथ हमेशा प्यार और सहानुभूति का व्यवहार करें, उनके विचारों और भावनाओं को सम्मान दें, ताकि वो बिना किसी डर के आपसे अपनी बात कह सकें। सोशल मीडिया, ब्लॉग या चर्चाओं के माध्यम से बच्चों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा के मुद्दों पर बात करें। समाज में जितनी अधिक चर्चा होगी, बच्चे उतने ही सुरक्षित होंगे। अनाथ, बेसहारा या पीड़ित बच्चों की मदद करने वाली संस्थाओं और गैर सरकारी NGOs को अपना समय या आर्थिक सहयोग जरूर दें। आज का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें याद दिलाता है साथियों, कि जब तक दुनिया का एक भी बच्चा हिंसा के साए में जीने को मजबूर है, तब तक हम खुद को पूरी तरह से सभ्य या प्रगतिशील नहीं कह सकते। तो आइए हम सब मिलकर इस संकल्प लें कि हम बच्चों के लिए एक ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जहां बच्चों की खिलखिलाहट हो, जहां डर का साया ना हो, बल्कि किताबों और खिलौनों की दुनिया हो, क्योंकि एक सुरक्षित और खुशहाल बचपन से ही एक बेहतर और शांतिपूर्ण कल की बुनियाद है। और क्योंकि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इसलिए उनसे हम सब का जुड़ाव प्राकृतिक रूप से हो ही जाता है।

0: कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। तब का बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से,
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सरकार ने मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार देश के हर बच्चे को दिया है जो 6 से 14 वर्ष की आयु का हो, तो ये इसलिए है क्योंकि हर एक क्षेत्र में, चाहे नौकरी करनी हो, चाहे स्वयं का व्यापार, चाहे खेती हो या मजदूरी, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा तो आवश्यक होती ही है। इसी तरह आजकल के समय में प्राथमिक शिक्षा की तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा होना, उसकी जानकारी होना कितना आवश्यक है, इस विषय पर आज की श्रृंखला नवदृष्टि में हमारे एंकर साथी कपिल तिलहरी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शिक्षा AI की पाठशाला विषय पर कई लोगों से उनकी राय जानी। तो आइए हम भी जानते हैं कि क्या है लोगों का विचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर।
7: नई उड़ान के इस विशेष सेगमेंट नवदृष्टि में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कपिल। दोस्तों, ज्ञान की दुनिया में बदलाव की एक नई आहट सुनाई दे रही है। कभी किताबों के पन्नों में सिमटी शिक्षा आज डिजिटल स्क्रीन से आगे बढ़कर

0: कृत्रिम बुद्धिमता यानी एआई के साथ एक नए युग में प्रवेश कर रही है। अब सवालों के जवाब केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि स्मार्ट तकनीक भी देने लगी है। सीखने का तरीका बदल रहा है, सोचने का अंदाज बदल रहा है और शायद आने वाली पीढ़ियों की पूरी पाठशाला भी बदल रही है। लेकिन क्या ये बदलाव शिक्षा को और सशक्त बना रहा है? क्या एआई छात्रों का सबसे भरोसेमंद साथी बन सकता है? और इस बदलती तस्वीर को शिक्षक किस नजर से देख रहे हैं? इन्हीं सवालों और संभावनाओं की पड़ताल करने के लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों और शिक्षकों से बातचीत की। उनके अनुभवों, विचारों और उम्मीदों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर शिक्षा की इस नई उड़ान में एआई की भूमिका क्या है।
1: सर, मेरा नाम अनुपम यादव है और मैं फिल्म थिएटर से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पता है सर, एआई इस फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जैसे हम सिनेमेटोग्राफी करते हैं उसके लिए हमें एक स्टोरी बोर्ड बनाना होता है। अब अगर किसी को आर्ट उतने अच्छे से नहीं आती है तो हम एआई का यूज करते हैं स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए।
0: अच्छा।
1: वो हमें आसानी से मिल जाता है, हम उस पर प्रॉम्प्ट डालते हैं, जिस तरीके से हमको स्टोरी बोर्ड चाहिए होता है हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो हमें प्रोवाइड कर देता है। इससे काम हमारा आसान हो जाता है और टाइम भी बच जाता है।
0: अच्छा, ये तो रही प्रैक्टिकल की बात कि आप एडिटिंग करते हैं या फिर बनाते हैं तो स्टोरी बोर्ड बनाना पड़ता है। जब आप क्लास में पढ़ाई करते हैं या थ्योरेटिकल पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उसमें एआई क्या सहायता करता है?
1: पढ़ाई करते समय सर बहुत कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो किताबों से उतना अच्छा नहीं समझ में आता है, लेकिन एआई का यूज करके उस चीज को और बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। पढ़ाई करते समय अगर हम उस चीज को फिगर आउट करते हैं तो वो हमको ऑडियो के रूप में, मतलब वो बोल के भी हमको समझा सकता है, टीचर के तरीके से वो हमको समझा सकता है।
0: तो दोस्तों, अब हमारे साथ हैं नव्या मिश्रा जो कि कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हैं। आइए करते हैं इनसे बात इस विषय पर।
2: AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह काम करना सिखाती है। इसका मतलब कि मशीन डेटा को एनालाइज करके डिसीजन ले सकती है और उसके पैटर्न समझ सकती है, रिस्पॉन्सेस दे सकती है। आज हम उसे डेली लाइफ में अननोइंगली बहुत जगह यूज करते हैं।
0: तो शिक्षा में किस तरीके से योगदान कर रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी AI का सहारा लेने लगे हैं, मतलब उससे क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं?
2: हाँ, AI ने पढ़ाई को काफी कन्वीनियंट और एक्सेसिबल बना दिया है। अब जैसे स्टूडेंट्स किसी भी टॉपिक को आसान भाषा में समझ सकते हैं और अगर किसी को कोई भी सब्जेक्ट टफ लग रहा है तो उसका उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन AI पे मिल जाएगा। जैसे ChatGPT है, वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकाल के दे देता है। AI पर्सनलाइज लर्निंग भी प्रोवाइड करता है, मतलब हर स्टूडेंट अपने पेस के अकॉर्डिंग सीख सकता है। इस वजह से स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव हो जाता है। AI यूज करने के नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं और क्योंकि उसका मिसयूज भी होता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्टली AI जेनरेटेड आंसर्स कॉपी पेस्ट कर देते हैं अपने असाइनमेंट्स में। उससे जो उनका क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होती है वो इफेक्ट हो जाती है, जिससे उनका दिमाग की ओरिजिनलिटी कम हो जाती है। इसलिए AI को शॉर्टकट की तरह नहीं बल्कि हमें लर्निंग सपोर्ट की तरह यूज करना चाहिए। लाइक एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है।
3: मेरा नाम पार्थ है, पार्थ वर्मा।
0: और पार्थ, अभी आप क्या कर रहे हैं?
3: मैं करेंटली नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ।
0: नीट की प्रिपरेशन में क्या आप AI का भी कुछ सहारा लेते हैं, मदद लेते हैं?
3: जी बिल्कुल, मुझे AI कई सारे फील्ड्स में मुझे मतलब हेल्प करता है एजुकेशन के पर्पस पे।
0: तो किस तरीके से आप AI के महत्व को समझते हैं कि शिक्षा में कितना जरूरी है?
3: एजुकेशन की टर्म्स में बात करें, AI हर फील्ड्स में, मतलब अगर मुझे कोई डाउट हो, लाइक मुझे कोई चीज समझ में ना आए तो मैं AI का यूज कर लेता हूँ। प्लस पॉइंट ये है कि AI 24/7 अवेलेबल रहता है, जो कि एक नॉर्मल स्कूल टीचर नहीं रह पाता। और रही बात उसका मिसयूज करने की और मेमोरी पावर वीक होने की, तो वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि उसको किस वे में इंसान यूज कर रहा है। अगर बहुत ज्यादा अगर कोई इंसान AI पे डिपेंड हो जाए, मतलब अपना बिल्कुल भी ब्रेन वर्क ना करे और छोटी छोटी चीजों को AI पे सर्च कर रहा है, तो फिर मेमोरी पावर तो फिर वीक होगी। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो पहले मैं अपने एफर्ट्स डाल लेता हूं कि लाइक मैं कितना लेवल तक सोच सकता हूं, पहले मैं सोच लूंगा। नहीं हो पाता है फिर एंड में मैं फिर AI का यूज करता हूं।

0: तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं अशिता श्रीवास्तव जी, जो कि एक इंटर कॉलेज में टीचर हैं। आइए करते हैं इस विषय पर इनसे बातचीत। अशिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
1: थैंक यू सर।
0: अशिता जी, तो आपका क्या सोचना है एआई को लेकर? क्या ये शिक्षा में सहायक हो रहा है या नहीं हो रहा?
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल के दौर में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। हम सबके मोबाइल में इसने एक अपनी एक खास जगह बना ली है, लेकिन आज ये हमारी जिंदगी में इस तरह से घुल गया है कि सभी स्कूलों में इसको एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है
0: जी।
1: कुछ भी होमवर्क दिया जाता है, बच्चे इजिली अपना होमवर्क उसके थ्रू कर लेते हैं। और भी बहुत सारे इसके फायदे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके नुकसान भी हैं। अगर इसको यूज कर रहे हैं तो एक प्रॉपर रेशियो यानी सही मिश्रण के थ्रू ही हम इसको अपनी जिंदगी में रखें तो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगा। नो डाउट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा काफी समय बच जाता है, जैसे बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं हमारे लाइफ का या फ्यूचर प्लानिंग या बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन, ये सब एआई के थ्रू हम बहुत ही सही जानकारी के थ्रू हम इसको अडॉप्ट कर ले रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं कि ये बहुत ही शॉर्टकट रास्ता है, इससे हमें बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाएगी, हम इसके थ्रू बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन सक्सेस का ये शॉर्टकट नहीं है, हमें एआई का यूज करना चाहिए बिल्कुल। ये हमारी क्रिएटिविटी को और इन्हांस में मदद करता है, लेकिन बच्चे क्या है कि आजकल अपनी क्रिएटिविटी को किसी पे ही डिपेंड कर दिया है, जो अपनी एबिलिटी है या अपना उनका खुद का जो ईश्वर ने उनको दिया हुआ है वो चीज कहीं ना कहीं लैक होती जा रही है। तो क्या होता है कि हमारे बच्चों का जो स्किल है, जो क्रिएटिविटी है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। इस पे हमें अपना बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है।
0: तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं राघव शुक्ला जी, जो कि एजुकेशन कंसल्टेंट हैं और बहुत सारे जो शिक्षा की फील्ड है उसमें इनको महारत हासिल है और एआई भी उसी में से एक है। इनसे करते हैं बातचीत। राघव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आमंत्रित करने के लिए कपिल जी। आपके माध्यम से बच्चों को नई नई चीजें बताने का मौका मिला।
0: सबसे पहले तो एक जो बेसिक होता है, जो लोग अभी नहीं एआई से इतना अवगत है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे?
2: सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एआई कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि हम लोग जिससे फेमिलियर नहीं है ना। दिस इज़ अ टेक, और टेक का क्या काम क्या होता है कि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर करता जाता है। तो इसी में ही अब जैसे एआई है, तो एआई हमें किस रूप से शिक्षा में एक अलग एफिशिएंसी और एक अलग मुकाम कैसे हासिल कराता है। एआई से हमारे बहुत सारे कार्य होते हैं सरल हो जाते हैं। जैसे एज एन एडटेक कंसल्टेंट हम लोग जब बच्चों के टेस्ट वगैरह कराते, तो पहले क्या होता था कि बच्चों का एक हमें टेस्ट लेना पड़ता था, फिर उनके हम लोग एनालिसिस करना पड़ता था और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है ना, बहुत टाइम टेकिंग। एआई के आने से क्या है कि अब ये प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है। अब जैसे बच्चे ने टेस्ट दिया तो तुरंत ही उसका एनालिसिस निकल आता है कि बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, उसको किन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। उसका ये भी सामने निकल के आ जाता है कि उसने कितनी देर में कौन से सवाल किए और किस टाइप के सवाल कर पा रहा है, कि पर्टिकुलर टॉपिक्स में उसका वहाँ पर एक पार्ट है वो बहुत मजबूत है, उसको कहाँ दोबारा हमें काम करना है। तो इससे हम शिक्षकों को भी काम बहुत आसान हो जाता है और बच्चों के लिए भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और जैसे एक चीज़ होती है कि बच्चों को डाउट्स आ जाते हैं ना। अब डाउट के लिए क्या कि बच्चों को ऐसे टीचर का इंतजार करना पड़ रहा है कि जब टीचर फ्री होगा तब हमें डाउट्स अपने क्लियर होके मिलेंगे। हम लोगों ने क्या किया, अब एआई की मदद से जब इसको हमने अपने सिस्टम से जब इंटीग्रेट किया है, इसको जब मिला दिया है, तो जैसे ही बच्चा कुछ उसको दिक्कत होती है वो हमारे पोर्टल पे या वेबसाइट पे, क्योंकि एआई इंटीग्रेटेड है, वो सवाल डालता है, उसको उस बच्चे को उस चीज़ का सोल्यूशन भी मिल जाता है तुरंत। और प्लस एक एआई वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाता है जिसमें एक एआई में मास्टर बन के आ जाता है जिसको एकदम सामने से पढ़ाता है और समझाता है एक एक चीज़, जैसे वीडियो में टीचर समझाता है। तो ये सब चीज़ों से बच्चों की शिक्षा भी अपग्रेड होती है और उनको समझ ज़्यादा जल्दी आता है। क्यों? क्योंकि विजुअल रिप्रेजेंटेशंस में हमारे दिमाग में ज़्यादा अच्छी तरह चीज़ें कैप्चर होती हैं। तो एआई से ये सब चीज़ें हुई सर कि सिखाने का जो प्रोसेस था वो ईजी एवं इंटरेस्टिंग हो गया, तो उसको फिर समझ में ज़्यादा बिल्डिंग उसकी नींव अच्छी होती जाती है।
0: तो दोस्तों अब हमारे साथ हैं त्रिलोचन एस कालरा जी, जो कि एमिटी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में फोटोग्राफी स्किल्स एंड एंकरिंग की फैकल्टी हैं। करते हैं इनसे बात। त्रिलोचन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
3: नमस्कार जी, थैंक यू सर, आपने मुझे याद किया।
0: धीरे धीरे करके एआई जो है दिन ब दिन हम लोगों के जीवन का हिस्सा बनता है।

0: तो शिक्षा में इसका क्या महत्व है, क्या रोल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: देखिए, जहाँ तक एजुकेशन की बात है, तमाम छोटे स्कूलों में भी स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन अगर बड़ी कक्षाओं की बात करें, यूजी और पीजी के जैसे कोर्स या हाई स्कूल या इंटर, इनमें जब इनको जो नियमित रूप से क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर ये ध्यान से उसको सुने और उससे ये समझें कि सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस की मेन पॉइंट्स क्या है, उसके सब टॉपिक्स को दिमाग में रखें, तो इनको किसी भी रूप में AI टूल्स की कोई जरूरत नहीं पड़ती है।
0: अच्छा।
1: लेकिन प्रॉब्लम ये आती है जब ये कक्षाओं में जब पढ़ाया जाता है, तो इस वक्त इनका मनस्थिति कहीं और होती है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है, ये स्टूडेंट एग्जाम से एक हफ्ता पहले से पढ़ना शुरू कर देते हैं। इतने कम समय में जब इनका अपनी नेचुरल जो इनकी बुद्धि है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की आस में वो फेल हो जाती है। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो फोन में सब कुछ करने के बावजूद भी उसमें से सही आंसर नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता है कि हमें इसको 20 लाइन में देना है, हम इसको 18 लाइन में भी कर सकते हैं, तो कितने काम की चीजें जो पूछी जा रही वो हम ऐड कर दें, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए नुकसानदेह है। हायर लेवल की पढ़ाई करने के लिए इनको AI टूल्स वहाँ हेल्प भी करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कहीं से फेल है ये, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी तरफ है, जब इनको रिसर्च चाहिए, उनके पास कंटेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनको स्लाइड शो तैयार करना है, प्रेजेंटेशन तैयार करना है, स्क्रिप्ट लिखनी है, तो उनको कृत्रिम रूप से वो कंटेंट उपलब्ध हो जाता है। लेकिन कुल मिला के ये है कि मोस्टली स्टूडेंट डिपेंड तो इसी पे हो गए हैं, उसी कारण हमारी बुद्धि ने सोचना ही बंद कर दिया है।
0: तो दोस्तों, अब हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के लॉयर एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो कि लॉ के बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं स्किल एनहांसमेंट की, कि किस तरीके से वकालत में जो नई स्किल्स हैं उनको सीख के आगे बढ़ा जा सकता है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम नई उड़ान में।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद।
0: तो अभी जैसे आप स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो किस तरीके से जो है AI पदार्पण कर रहा है लॉ के क्षेत्र में भी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं।
2: बिल्कुल, तो सर्वज्ञात है ये बात तो, और सर्वविदित है कि AI यानी कृत्रिम जो अपना इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब है ये इंटेलिजेंस बेस्ड ही सिस्टम। इट्स जस्ट दैट यहाँ पे जो इंटेलिजेंस है वो एक नेचुरल या एक इंसान, एक इंडिविजुअल का ना होके मशीन लर्निंग मॉडल पे बेस्ड है।
0: पहले के लॉयर्स होते थे या स्टूडेंट होते थे, उनको केसेस बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाते थे। अभी क्या है, AI तुरंत आदमी खोलता है, देखता है, तो देखने के बाद में जो है उसकी मेमोरी पावर भी कुछ कम हो रही है, या ऐसा ये र्यूमर है खाली?
2: कई बार होता है कि बच्चों के अंदर कॉम्प्लेसेंसी या एक तरीके से कम्फर्ट बढ़ जाता है कि वो शायद मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ऐसा होता है अक्सर। हमें जब जैसे जगजाहिर एक सिद्धांत है कि जितनी ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन होगी, जितनी ज़्यादा जुझारू माहौल आपको मिलेगा, उतना ही ज़्यादा परिपक्व और पॉलिश होके आदमी निकलता है। तो जब हमारे पास फैसिलिटी आ जाती है, तो थोड़ा सा तो हम एक बार हमारी अंदर की जो जुझारूपन है उसको थोड़ा सा उसमें कमी आती है। लेकिन ये जरूर है, समझना जरूरी है कि हर जगह टेक्नोलॉजी को तरीके से अभिशाप मानना, एज अ बेन मानना उचित नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी कई बार एनेबलर भी होती है। तो हम भी अपने जो नए ट्रेनीज हैं उनको ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल आप अगर एक पर्टिकुलर तरीके से करेंगे, एक निश्चित तौर पे करेंगे, तो बिल्कुल भी वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि आपके लिए अच्छी है। बस ये है कि हम उसको एक यंत्र के तौर पे इस्तेमाल करें और अपने काम को आसान करें, तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा पूरक है।
0: तो श्रोताओं, आपने सुने छात्रों और शिक्षकों के विचार। इन बातों से स्पष्ट होता है कि AI और नई तकनीक शिक्षा के क्षेत्र में नया अवसर लेकर आ रही है। जरूरत है इन्हें समझदारी और जिम्मेदारी के साथ अपनाने की, ताकि सीखने की प्रक्रिया और अधिक प्रभावी और रोचक बन सके। इसी उम्मीद के साथ शिक्षा और तकनीकी का ये सफर हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैं कपिल इस सेगमेंट से आपसे लेता हूँ विदा।
3: तो साथियों, ये सुनकर हमें पता चला कि जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही AI के भी दो पहलू हैं। अगर हम पूरी तरह से इस पर निर्भर हो जाएंगे, तो हमारी बुद्धि, हमारी याददाश्त सब कम होती जाएगी, और अगर इसे हम सिर्फ सहायक के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो हम जिस तरह से पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसमें और इजाफा ही होगा। तो कपिल जी का धन्यवाद कि वो ऐसी चीज़ें हमारे सामने, हमारे श्रोताओं के सामने लेके आए। और अब साथियों, मैं कर लेती हूँ आपसे कुछ रोज़गार और विकास की बातें। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज विमान क्षेत्र को राहत देने के लिए ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी है। इसके तहत तेल विपणन कंपनी

को 10,000 करोड़ रुपए तक की ब्याज मुक्त बजटीय सहायता दी जाएगी ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनी रहे। इससे यात्रियों पर किराए की अस्थिरता का प्रभाव कम पड़ेगा और दूरस्थ और क्षेत्रीय शहरों को हवाई संपर्क निरंतर बना रहेगा, जिससे पर्यटन, व्यापार और निवेश पर सकारात्मक असर पड़ेगा। और साथियों, केंद्र सरकार ने देश भर में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और ओडिशा में चौड़ीकरण और नए मार्गों का निर्माण होगा। इससे उद्योगों तक माल ढुलाई तेज होगी, किसानों की उपज मंडियों तक जल्दी पहुंचेगी और पर्यटन स्थलों तक पहुंच आसान होगी। और साथियों, कुछ रोजगार समाचार। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नए प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। इन केंद्रों में युवाओं को आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और निर्माण क्षेत्र की आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण मिलेगा। उद्देश्य है कि प्रशिक्षित युवाओं को सीधे उद्योगों में नौकरी मिल सके। अनुमान है कि अगले 6 महीनों में 50,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जून जुलाई में होने वाली परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना जारी है। इसी तरह रेलवे भर्ती बोर्ड ने तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए नई अधिसूचना निकाली है और कई राज्यों में शिक्षक भर्ती की तैयारियां भी चल रही हैं, जिससे शिक्षा क्षेत्र में हजारों पद भरे जाएंगे। तो जो भी योग्य उम्मीदवार हैं आप में से, वो आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर सही और पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आपको अपनी उम्र देखनी होगी, अपनी योग्यता देखनी होगी, अपनी शिक्षा देखनी होगी, लेकिन कहूँगी आपसे यही कि आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाकर ही आप ये सूचनाएँ ग्रहण करें। और साथियों, आपको हमारा कार्यक्रम ही कैसा लगता है, अपनी प्रतिक्रिया और अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। आप हमें लिख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो है naiuddan.airlko यानी नई उड़ान airlucknow@gmail.com पर। और अब हमें पत्र भी लिख सकते हैं, जो है, जो हमारा पता है वो है नई उड़ान द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी लखनऊ, 18 विधानसभा मार्ग, लखनऊ 22601 पर। और साथियों, अब घड़ी की सुइयां ये मुझे आदेश दे रही हैं कि मुझे आज के इस कार्यक्रम से आपसे लेनी होगी अनुमति। फिर इसी कार्यक्रम के किसी और अंक में आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आपकी रेडियो दोस्त पारुल का नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम नई उड़ान। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच पर भी। लीजिए आप सुनिए एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती द्वारा कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी हेतु नोटिस इनवाइटिंग प्रोग्राम प्रपोजल NIPP की अंतिम तिथि 31 मई 2026 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दी गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prasarbharati.gov.in/NIPP/ या आप akashvani.gov.in/files/NIPP.PDF पर भी विजिट कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05

0: विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में, मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर और 2400 घंटे डीटीएच और आपके मोबाइल पर। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।

0: महे बहार कहानी कविता और बतकही के फुहार आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार घर आंगन संग होई के तैयार चलो विकास के रफ्तार सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
2: कुछ करिए बस बस बड़ा पौधे, अब कुछ करिए।
1: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर गूंजे सफलताओं की आवाज।
3: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्ज़ुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। वयोवृत्तः चलचित्र निर्माता पहलाज निहलानी अद्य दिवंगतः। अमेरिका देशस्य प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पं ईरान देशं विरुध्य अग्रिम सैन्य कार्याचरणात् निरोद्धुं प्रस्तावं स्व्यकरोत्। केरल राज्ये दक्षिण पश्चिम प्रावृढः आगमनम्। अपि च गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे विश्व योगासन क्रीडा स्पर्धा श्रृंखला इत्यस्य उद्घाटन संस्करणस्य आरम्भः। वैश्विक क्रीडा मार्गसूच्याम् ऐतिहासिकं सोपानम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ली नगरे वेन्ज़ुएला देशस्य कार्यवाहक राष्ट्रपतिना डेल्सी रोड्रिग्स महाभागया सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां भारत वेनेजुएला सम्बन्धानां विविधाः पक्षाः समीक्षिताः। ऊर्जा

0: द्वादश वर्ष प्रपूर्त्यवसरस्य उपलक्ष्ये मन्यमानं परिष्कारोत्सवं सम्बोधयन् उक्तवान्। मीरा युवा भारत इतीदं आधिकारिकरूपेण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इत्यनेन मान्यता प्राप्ता। यतो हि एकस्मिन्नेव सप्ताहे अन्तर्जाल प्रश्नस्य कृते सर्वाधिकानाम् उपयोक्तृणाम् उपाधिं प्राप्तवत्, यत्र प्रश्नानाम् आभासीयरूपेण उत्तरं प्रयच्छन्तः 390,000 अपि अधिकाः प्रतिभागिनः आसन्। केन्द्रीय युवक कार्य क्रीडा मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीयः अद्य नवदिल्ली नगरे आयोजिते समारोहे सम्मानपत्रम् अवाप्नोत्। गतवर्षे अक्टूबर मासस्य 25 दिनांकात् 31 दिनांक पर्यन्तं विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 26,000 प्रश्नस्य इत्यस्य माध्यमेन अभिलेखः प्राप्तः। मनसुख मांडविया इत्यनेन अस्य कृते वर्धापनं प्रदत्तम्। गुजरात आरक्षि विभागेन राज्ये अवैध रूपेण निवसतः बांग्लादेशीय नागरिकान् विरुध्य ऑपरेशन डेल्टा हंट नामना विशेष अभियानम् आरब्धम्। अस्य अभियानस्य अन्तर्गतं गत 40 होरासु 40,000+ बांग्लादेशीयाः गृहीताः, तथा च 280,000+ संदिग्ध जनानां विषये अन्वेषणं प्रचलति। दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अद्य मालवीय नगरे अग्निकाण्डेन आहतान् द्रष्टुं साकेतस्थं निजी चिकित्सालयं गतवती। सा पीडितैः तथा तेषां परिवारजनैश्च सह संवादं कृतवती। प्रत्येकं मृतकस्य परिवाराय 10,00,000 रूप्यकाणां, गंभीररूपेण आहतानां 5,00,000 रूप्यकाणां च अनुग्रहधनस्य घोषणा कृता। बिहार राज्यस्य मुजफ्फरपुर नगरे एकस्मिन् निजी चिकित्सालये भीषणाग्निकाण्डे 3 जनाः मृताः, अनेके च आहताः। एषा घटना गतरात्रौ ब्रह्मपुरा क्षेत्रे अभवत्। गंभीर रोगिणः उपचारार्थं अन्येषु चिकित्सालयेषु प्रविष्टाः। इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, आप सुनिए कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।

0: पंचो जय हिंद।
1: रामजीत भैया।
0: हाँ रेनू बहनी।
1: भैया अच्छा देखो, बहुत से लोग होते हैं जो अपने विशेष तिथिन पर यहाँ कुछ काम कहीं शुरू करते हैं, कि मान लो जैसे कोनो उनका नवा काम शुरू करक है, कहूँ जोन है, कहूँ कोनो रोजगार लगावेक है, तो ये सब चीजन कहीं जैसे चाहे वो अपने महतारी बाप के जन्मदिन हो, चाहे अपन जन्मदिन हो, या लड़का बच्चन के जन्मदिन हो, या फिर कोनो और विशेष तिथि हो घर कोई से संबंधित अपने घर में, तो वहीं पर वो काम ज़्यादा करब शुरू करते हैं।
0: बिल्कुल बहनी ठीक कहती हो, और यही वजह हम एक ठीक बहुत बढ़िया घटना अपने गाँव के बताए दे। हमारे गांव में एक जने हैं सुधा बहनी, तो वह अपने जन्मदिन पर कहीं कि हम आम पापड़ कर काम शुरू करवे, तो वह उनके साथ ही एक ठीक निशा बहनी रही, दोनों जने मिल के वह काम का शुरू किए। फिर धीरे धीरे गांव जवार के बहुत औरतें वह में जुड़ गईं, और अब तो वो बड़े स्तर पर काम करे लाग है। और जब उन्हें पैसा की जरूरत पड़ी तो वह काकिन सबसे पहले बैंक के लगे गईन, फिर बैंक में कुछ कागज पत्र मांगा गवा, और फिर वही का वह हुआ दई के, फिर धीरे धीरे थोड़ा पैसा लेके काम और बढ़ाइन, मशीन लाइन, और अब तो उनका काम जौन है वो और बढ़ गया है।
1: भैया देखो, काम बढ़े सबके बढ़े बड़ा नीक लागत है, काहे कि यहाँ जब अपने लगे रोजगार रहत है ना, तो फिर कोई के मुँह झाके ताके करी जरूरत नहीं पड़त है।
0: बिल्कुल भाई।
1: और अपन सरकार जो है वह के रहा है मनसा है कि हमरे सबके लगे रोजगार होए, कोई जो है बिना रोजगार के ना रहे। तबे देखो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलावा गवा, इसके अंतर्गत जैसे बहुत से लोग हैं जो कोई रोजगार करा चाहते हैं, अपन स्थापित करा चाहते हैं, या फिर सहायता समूह बनाए के जैसे करा जाते हैं कि सहायता समूह अगर बना लेते हैं तो उनके तहत उनका ऋण तो दीने जाते हैं, साथ ही साथ जो काम करा चाहते हैं उनके ट्रेनिंग भी दीन जाते हैं। भैया
0: बिल्कुल बहनी,
1: तो ये बहुत अच्छा मिशन है, और इसमें बहुत जने देखो लाभ भी उठा रहे हैं।
0: बिल्कुल, और यही के जो सरकार के

0: उद्देश्य है वो ई है कि हम पंचन के जौन आय है, जौन घरेलू आय है, जौन हम पंच घरमा करित है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। भाई बाहर तो हम पंच काम करबे करित है, अगर घरों में आय थोड़ा बढ़ जाए तो जिंदगी जौन है वो बहुत आसान हो जाए। और कौनो मेर का जौन छोट मोट खर्च होते हैं वन की ताएं बहुत परेशानी ना हुई और हर मेयर से हम पंच संपन्न रहे।
1: बिल्कुल। और भैया सबसे अच्छी बात ये होते कि जब हम इतना के कोनो रोजगार शुरू करी थे ना तो खाली वो हमरिन तक नहीं सीमित रहा थे,
0: बिल्कुल
1: उमा अपने आस पास गाँव गेवार के घर परिवार के मतलब कई जनन का हम जोड़ ले थे, उनका सबका भी रोजगार दे पाई थे।
0: बिल्कुल बहनी, यही ताएं गाँव घर में कऊ ऐसे महिलाएं और लोग बनावा जाते हैं जे वही के जानकार रहा था, जैसे कृषि सखी हो गईन, पशु सखी हो गईन, तो यह सब वह चीज़ के जानकार रहा थे और वही माँ का लाभ हो सकत है, का नुकसान हो सकत है, कैसे वही का हमें निर्माण करे है, कैसे वही का बनावे है और हमें कैसे वह का बाजार दिए है, कुल मेर के बात वन पंचन से हम पंचन का मिल जात है, जैसे हम आसानी से वही का जान कर आपन काम नवा शुरू कर सके थे।
1: बिल्कुल भैया शुरू कर सके थे। और साथे साथ भैया इमा खाली जो है जैसे अब बताओ ना अचार पापड़ आम यह सब नहीं बना सके थे, इमा बहुत तिना के रोजगार हम पंचे कह सके थे। मान लो कोई अगर पशुपालन करा चाहते है, कोई मत्स्य पालन करा चाहते है, या फिर कोनो और तिना के रोजगार करा चाहते है, बेना बनावा चाहते हैं या डलिया बनावा चाहते हैं या उसका कोनो चीज ऐस आवत है जिससे जो है अपन रोजगार वो स्थापित कर सके थे, उसका लागत है कि हम इमा आगे बढ़ सकित है, तो इस सब चीजन की जो है ट्रेनिंग दी जाती है और उका वो कुशलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करके उका मतलब बड़े स्तर पर भी शुरू कर सकते।
0: बिल्कुल बहनी, और अब तो जौन आपन गांव है वो बहुत ही स्मार्ट हो गवा है, काहे बदे अब देखो सबके लगे वो जौन बड़कवा वाला चकिल का फोन होता ना वो है, तो वही माँ जैसे बोल दे कोनो जानकारी चाहो तो वो जानकारी मिल जात है। मूल वह जानकारी का अपने आस पास के जौन केंद्र है हिमा जाय के वही का ई समझ लो कि जानकारी सही है कि नहीं है, हम वही का कह सकित है कि नहीं कह सकित है, ई नहीं कि जानकारी मिली फिर वही के पीछे पीछे भाग गए, यही मेरे का ना है, बल्कि वह जानकारी के पूरी पुख्ता जानकारी जरूर रखे चाहिए।
1: बिल्कुल भैया जरूर रखे चाहिए। हम तुम्हों का देखी थे कि जब कब कोनो चीज़ तुमका मतलब जाने खोती है तो तुम वही बड़कवा फोन में यहाँ बोला तो हो और जानकारी ले तो तब तुम हमका बतावत हो।
0: बिल्कुल बहनी, और देखो अपन गांव घर यही से धीरे धीरे कितना आगे बढ़ गवा है, और अब तो गांव घर में जैसे सड़क चौड़ी हो गई है, कुल मेर के साफ सफाई देखे मिलत है और अपने गाँव में हर मेर का समाधानों मिल जाता है।
1: बिल्कुल,
0: तो अब कहूँ यहाँ वहाँ जाग जरूरत नहीं हो, यही बदे देखो आज एक बैठकी का विषय लाया बहुत बढ़िया विषय है, वो है स्वच्छ गाँव के लिए स्मार्ट समाधान, तो वो समाधान का है, कैसन है, कैसे हम पंच तक पहुँची, यही के जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र भैया, तो आओ यह जानकारी का सुना जाए और समझा जाए।
2: भारत गाँव का देश है, भारत की आत्मा गाँव में बसती है, यदि हमारे गाँव स्वच्छ स्वस्थ और व्यवस्थित होंगे तभी विकसित भारत का सपना साकार हो सकेगा। स्वच्छता केवल सफाई तक सीमित नहीं है बल्कि यह स्वास्थ्य, पर्यावरण, सामाजिक सम्मान और आर्थिक विकास से भी जुड़ी हुई है। आज तकनीक और नवाचार के युग में स्मार्ट समाधान गाँव की स्वच्छता व्यवस्था को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पहले जहां कचरा प्रबंधन, जल निकासी और शौचालय जैसी समस्याएं बड़ी चुनौती थी, वहीं अब डिजिटल तकनीक, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक उपायों से इन समस्याओं का समाधान संभव हो रहा है। घर घर गीले और सूखे कचरे का पृथक्करण, रंग कोडित डस्टबिन की व्यवस्था, डोर टू डोर कचरा संग्रहण प्रणाली, जैविक कचरे के लिए कंपोस्ट गड्ढों की स्थापना, पुनर्चक्रण योग्य कचरे के लिए संग्रह केंद्र, तरल अपशिष्ट का सोखता गड्ढों या नालियों से निकास, क्रेट वाटर का सिंचाई या पोषण बाग के लिए पुनः उपयोग, समुदाय में जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियान, कचरा प्रबंधन में स्वयं सहायता समूहों और युवा समूहों की भागीदारी, गांव पंचायत द्वारा नियमित निगरानी, ब्लॉक जिला स्तरीय स्वच्छता संसाधनों में समन्वय, सफाई कर्मियों और स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण, सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छ भारत मिशन के दिशा निर्देशों के साथ एकीकरण, राष्ट्रीय लक्ष्य के साथ स्थानीय प्रयासों का संयोजन, इस मॉडल से केवल कचरा ही नहीं संभाला जाएगा बल्कि गांव वासियों में जिम्मेदारी, स्वच्छता की आदत,

और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता का बीज बोया जाएगा। आज कई राज्यों में पंचायत स्तर पर छोटे छोटे कंपोस्ट प्लांट लगाए जा रहे हैं। इससे गांव साफ रहते हैं और किसानों को सस्ती जैविक खाद मिलती है। कुछ स्थानों पर गोबर और जैविक अपशिष्ट से गोबर गैस संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं, जिससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो रही है। स्मार्ट जल प्रबंधन, गांव में गंदे पानी की उचित निकासी न होने से बीमारी फैलती है। अब कई पंचायतों में सोखता गड्ढे, फिल्टर चैम्बर और वर्षा जल संचयन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इससे जल भराव कम होता है और भूजल स्तर भी सुधरता है। सरकार की स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं ने ग्रामीण स्वच्छता को नई दिशा दी है। खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब ध्यान ODF प्लस मॉडल पर है, जिसमें कचरा प्रबंधन और स्वच्छ वातावरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन गांव में एक बड़े जन आंदोलन के रूप में उभरा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में करोड़ों परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध कराई गई है और अधिकांश गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। लेकिन अब चुनौती केवल शौचालय निर्माण की नहीं, बल्कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक कचरे के निस्तारण और स्वच्छ जीवन शैली को अस्थायी बनाने की है। इसलिए आज आवश्यकता है स्मार्ट समाधान की। स्मार्ट समाधान का अर्थ है तकनीक, वैज्ञानिक सोच, स्थानीय संसाधनों और सामुदायिक भागीदारी का उपयोग करके स्वच्छता की समस्या का अस्थायी समाधान करना। बायोगैस और गोबर गैस संयंत्र आज कई राज्यों में गोवर्धन योजना के माध्यम से वेस्ट टू वेल्थ यानी कचरे से कमाई का अच्छा उदाहरण है। स्मार्ट गांव एक महत्वपूर्ण पहलू है। डिजिटल तकनीक का उपयोग आज कई ग्राम पंचायतों, मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सफाई व्यवस्था की निगरानी कर रही हैं। कहीं कहीं कचरा संग्रहण के लिए GPS आधारित वाहन भी उपयोग किए जा रहे हैं। नागरिक मोबाइल से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और पंचायत तुरंत कार्रवाई कर सकती है। यह डिजिटल गांव की दिशा में सकारात्मक कदम है। जब बच्चे स्वच्छता सीखते हैं तो पूरा परिवार जागरूक होता है। जापान जैसे देशों में बचपन से ही बच्चों को सफाई और अनुशासन का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके कारण वहां सार्वजनिक स्थान अत्यंत स्वच्छ दिखाई देते हैं। जबकि स्वीडन में अपशिष्ट प्रबंधन को ऊर्जा उत्पादन से जोड़ दिया है। भारत में भी ऐसे ही स्थानीय नवाचार अपनाए जा रहे हैं, जिस परिणाम स्वरूप गांव अब केवल विकास के लाभार्थी नहीं रहे हैं, वे सेकुलर इकोनॉमी और हरित विकास के सक्रिय प्रेरक बन रहे हैं। कचरे को संसाधन में बदलकर वे सतत विकास के लिए विस्तार योग्य मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे कि मेघालय में एशिया का सबसे अच्छा गांव दर्ज किया गया है, मालवे नोंग। ऐसे ही महाराष्ट्र में पर्यावरण संरक्षण और सिंचाई प्रणाली और जल संरक्षण कार्यक्रम के हेतु रालेगांव सिद्धि और हिबरे बाजार। साथ ही साथ तेलंगाना में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, भूमिगत जल निकासी और शून्य मच्छर के लिए हाजीपल्ली गांव पंचायत उदाहरण के रूप में सामने आए हैं। आज ग्रामीण भारत एक शांत लेकिन गहरे परिवर्तन का अनुभव कर रहा है, जो कि व्यवहार और प्रणालीगत बदलाव को दर्शाता है, जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मल अपशिष्ट उपचार और प्लास्टिक कचरा नियंत्रण को शामिल किया गया है, और जो पर्यावरणीय स्वास्थ्य तथा आर्थिक लाभ प्रदान करता है। हालांकि दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन से जुड़ी पहलुओं को मजबूत करना, पंचायत स्तर पर संचालन और रखरखाव को प्रभावी, व्यवस्था को संस्थागत बनाना, सार्वजनिक निजी भागीदारी और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से दक्षता और वित्त पोषण को बढ़ावा तथा डिजिटल निगरानी और कार्बन डेटिंग जैसे नवाचारी वित्तीय उपायों का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ गांवों के लिए स्मार्ट समाधान के परिणाम स्वरूप हमारा गांव स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भी बन सकता है। और स्वच्छता मिशन जो भारत सरकार के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है, इसके द्वारा घर घर शौचालय की व्यवस्था

0: व्यवस्था कर दी गई है और जिसके परिणाम स्वरूप लोग खुले में जो शौच करते थे उससे जो है निजात मिली है और महिलाओं की सुरक्षा भी काफ़ी समाज में देखने को मिल रही है। और परिणाम ये निकला है कि स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया जा रहा है उससे ग्राम पंचायत में नियमित निगरानी की व्यवस्था कर दी गई है, साथ ही साथ जैविक कचरे और कंपोस्ट गड्ढों की स्थापना कर दी गई है, स्वच्छ एवं सार्वजनिक स्थलों पर दिशा निर्देशों के द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से आजकल काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है और परिणाम ये है कि ग्रामवासियों में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी जागरूकता देखने को मिल रही है।
1: रेनू बहने।
2: हाँ रामजीत भैया।
1: देखो बिल्कुल अपने गांव में गांव घर के लोगन में और साथ ही साथ जो अपने छोट लड़का हैं वनहू में स्वच्छता के प्रति जिम्मेदारी देखे को मिल रही है, तो स्वच्छ गाँव के लिए स्मार्ट समाधान पर इतनी बढ़िया तना डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र भैया बताएं, यही के लिए इनके बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनी एक चीज और है कि जो अभी बतावत रहे कि हम पंचन का यही कहता है सोचे चाहिए और अपने गांव घर का स्वच्छ रखे चाहिए, तो हमारे जो छोट लड़कौनु है ना वह कहत रहे भिनसर वह कि बप्पा स्कूल में अभी कुछ दिन पहले बतावा गया है कि यहाँ वहाँ कूड़ा नहीं डाले के चाहिए, यहाँ वहाँ कचरा नहीं डाले के चाहिए, और जौन तू बैठे बैठे खात हो ना और वहीं कई वो कूड़ा कह देते हो यही बेर कूड़ा नहीं करे के चाहिए। तो ये बेर का जो जागरूकता है ये विद्यालय स्तर पर पंचायत स्तर पर हर जगह फैलाई जा रही है और सरकारों यही का जागरूकता के रूप में हम पंचन का बताए रही है कि हम पंच कूड़ा कचरा न करी और जितना हो सके अपने गांव घर का स्वच्छ राखी और बढ़िया राखी।
2: बिल्कुल भैया ये सब जिम्मेदारी हम इन सबकी है कि हम पंचे इका कैसे अपने लड़का बच्चन का आगे समझाई और सिखाई और आगे इका बढ़ाई। और रंजीत भैया एक बात और है कि भाई देखो ये सब तो सिखावे वाली जोन बात है लेकिन साथे साथे हमका इस समय पर यहाँ अपनी सेहत का भी बहुत ध्यान रखे का और अपने लड़कों बच्चन का बड़ा ध्यान रखे का।
1: बिल्कुल बहनी इस समय एक तो जो मौसम के परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा है और कबो कबो इतनी तेज धूप हो जाती है इतना तेज घाम हो जाता है कि मूड चटका ही लागत है और ये जुड़ते कुछ घंटन बाद पता लागत है कि बरखा बुनी आई गई, तो यह हमें बहुत बचे की जरूरत है।
2: बिल्कुल भैया बचे की जरूरत है और पहले से तैयार रहे की जरूरत है कि हमका ये सब मौसम प्रभावित ना कह सकें। अगर भाई घाम में निकल रहे हो तो भाई पहले से अपने मुड़ैछा उड़ैछा जो गमछा उमछा होते हैं अंगोछा बांध लियो खोपड़ी में यहाँ, और अगर मान लियो घामे वाला चश्मा हो तुम्हारे लगे जो करिया करिया होते हैं तो भाई उका जरूर लगा लियो। कहे कि यहाँ जब ज्यादा तेज घाम पड़त है ना तो कबो कबो आँखी उठी होती हैं गर्मी के मारे, तो भाई इसे बचाव हो जाते हैं। और जब घर से निकलो तो भाई देखो जोन है जोन चीज़ें अपनी होती हैं जोन कहा था मौसमी चीज़ें होती हैं जैसे खीरा है ककड़ी है ये सब चीज़ें खाओ, तरबूज खाओ खरबूज खाओ, और निकले के टाइम घर से तनिक बढ़िया जोन है शरबत तरबत सत्तू केर पी लियो है या फिर ठंडा पानी लेके निकलो, और जब घरों में रहो तो ये सब चीज़न के सेवन करत रहो भाई।
1: बिल्कुल आपन जोन जिम्मेदारी है वही का समझाओ और अपने सेहत का बचाओ और हाँ। जब सेहत बढ़िया हुई तब देखो गांव घर जोन है अपन घर परिवार आगे बढ़ी और घर परिवार खुश रही कौन मेरे का दिक्कत ना हुई, और तब देखो सोहर वोहर जोन गाँव है यो नौबत आई।
2: बिल्कुल भैया जब घर में लड़का बच्चा होते हैं तो बड़ा आनंद आवत है बड़ा खुशी के माहौल रहते हैं, और जब खुशी के माहौल रहते तो भाई देखो गावत बजावत तो मन ही है
1: बिल्कुल
2: है, बिना गाय बजाए खुशी जोन है अपन पूरी नहीं होती है। तो भाई देखो आज हम एक सोहर लेके आए हैं तो और इका सुना जाए रंजना रंजिता मिश्रा व दीपिका मिश्रा बहनी के स्वर मैया सासू रस बेनिया
1: सुना जाए।

0: जेनू बहने।
1: हाँ राम जी भैया,
0: देखो घर में जौन आनंद है वो तो रहबे करत है, और सुन के जौन मन है एकदम गदगद हो जात है, वही खोई जात है।
1: भैया हम खोइन गए रहे।
0: हाँ वो हम देखें।
1: हाँ तो हमका तो बड़ा आनंद आवा, लेकिन भैया का है ना आनंद आनंद तो देखो सब आवत है समय समय पर यहाँ, लेकिन ये जौन हम अब यह सोचित है साथे साथे कि हम पंचे अपन खेती बाड़ी चाहे जितना करी है, लेकिन मतलब जैसे लागत है खर्चा को वो पूरा ही नहीं पड़ते हैं। पता चला खेती बाड़ी कह रहे हैं और जितना कमाई थे खाई थे फिर लगाई थे फिर कमाई थे खाई थे, यह मतलब कि ये नहीं है कि कोनो दिक्कत तकलीफ होत है, लेकिन जैसे जौन चाहत है मने ना उतना बचाए नहीं पाई थे भैया।
0: बिल्कुल बहनी, और यकरी तहां बहुत बढ़िया है कि हम पंच कृषि विविधीकरण अपनाई। अब यही में देखो जे पंच बागवानी के हैं या बाग अपन लगाए हैं तो वह समय सबके जो आम के बाग है वही में फल टूटत है और सबके फल बाजार में आए रहे हैं, बहुत जने पकावे तय अपन रखे हैं तो वो फल तनी और देर से आई, तो धीरे धीरे तीन चार महीना उनके बहुत बढ़िया तना गुजरी, और ई उनके जौन है ये अतिरिक्त धन है जौन अतिरिक्त आय है, तो ऐसे कहा है कि वही का वह कहूँ दूसरे जगह लगा सकत है। मूल यही की तय हम पंचन का सोचक पड़ी कि हम कौन विधि कृषि विविधीकरण अपनाई, और जितना भाई हम पंचन का सामर्थ है जितनी आपन जमीन है वह हिसाब से हम आपन कृषि विविधीकरण करी तो हमार जो बात कहो ना नुकसान वाली नुकसानों कम हो जाए फायदों हो और हम पंच कौनो नवा काम कर सकब।
1: मतलब हम पंचे खाली अपनी पारंपरिक खेती पर निर्भर ना रही कि पता चला गेहूं धान ले रहे हैं तो वह गेहूं धान वही खेते से बस गेहूं धान निकाल रहे हैं उगा रहे हैं, ई पर निर्भर ना रही, हम उके साथे साथे कोनो और काम करत रही जो खेती से अपन भाई उके जुड़ाव हो और अपने घर ही में रह के भी कर सकी कि मतलब अपन खेती बाड़ी चला करे और साथे साथे मान लो जैसे

0: पशुपालन भी कह सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: है, बागवानी कह सकते हैं, या फिर मसाला वसाला केरी फसलें ले सकते हैं, फूलन केरी खेती कह सकते हैं, मतलब तमाम ई तिना केरे काम हैं जिनका हम कई के और जो है अपन आय के यहाँ हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा रामजीत भैया एक बात और है, वो ये है कि अगर हम कृषि विविधीकरण का अपनाई है तो हमका बहुत फायदा भी होते हैं।
1: बिल्कुल है? अब जैसे जौन फल है, फल के जैम बन जात है, जूस बने लागत है, और जैसे जौन जेकरे घरे भाई ढेर कुल्ले मवेशी हुए, जानवर हुए, हरहा गोरु हुए, तो वह अपन खाद के काम कर सकत है, और यह समय खाद के दामो बढ़िया मिलत है, तो हम पंच मतलब कुल मेर के काम कर सकी थे, और गांव घर के जितनी चीज है वो हर चीज में पैसा है मूल, हम पंचन का वही का ध्यान दिए परी।
0: बिल्कुल ध्यान धरे एक परी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम कृषि विविधीकरण भैया अपनाई थे ना, तो जो अपन माटी की उर्वरा शक्ति होते हैं ना, मान लो हम एक एक फसल लेते रहे थे तो उससे जो है अपन उर्वरा शक्ति की कम हो जाते हैं, लेकिन मान लो अगर हम उमा दलहन तिलहन इस तरह की चीजें ले लागे तो पोषक तत्व के बने रहते हैं, उर्वरा शक्ति बनी रहते है, मतलब माटी की गुणवत्ता भी बनी रहते है, और साथ ही साथ भाई जो बात बताओ कि मान लो जो अपन पशु हैं मवेशी हैं उनके अगर गोबर निकलत है तो हम अपने खाद के रूप में यहाँ जो है इस्तेमाल कर लेते हैं।
1: बहनी बहुत पते के बात कहो कि हम पंच फसल चक्र अपनाई के और ये कुल कई के आपन जो आमदनी है वही का बढ़ा सकी था, आपन जो जोखिम है वही का कम कर सकी था, और अपने जिंदगी में कुछ नवा सोच सकी थे।
0: बिल्कुल भैया नवा सोच सकी थे, और जोखिम वाली बात है तो वो तो बहुत मतलब जरूरी है कि अगर मान लो हम एक खेती पर यहाँ निर्भर है और भाई मौसम खराब हो गया, आपदा आ गए कोनो, और मान लो हमारी फसल पूरी चौपट हो गए, तो भाई देखो हमारा नुकसान तो होता है, लेकिन अगर हम कोनो और चीज उसके साथ कह रहे हैं तो वो नुकसान बहुत हद तक हमारा कम हो जाते हैं और हम उसे उबर आई थे। तो ये सब तिना के काम जो है हमका मतलब विविधीकरण अपनावे चाहिए, और अपनी जो है आय का भी बढ़ावे चाहिए, और अपन जोखिम भी कम करे चाहिए।
1: बिल्कुल, और यही मा एक बहुत अच्छी चीज है कि हम पंच जैसे अपन गाँव घर है, गाँव घर में क्यारी बनाई के या अपन घर के पिछवाड़े क्यारी बनाई के हम सब्जियों खेती कर सकते थे। अब सब्जियों खेती में का है बहुत जगह नहीं लेते, अगर लता जो लता वाली सब्जी है वरना छप्पर पे चढ़ाई दे ना ही छत पे चढ़ाई दो तो बढ़िया तनी फरती हुए हैं, फल वही के बढ़िया आवत है, साफ सुथरा रहा है, और वही के बाजार में दामो दुई पैसा बड़ी के मिलत है।
0: बिल्कुल भैया, मतलब अगर उके प्रबंधन सही तरीके से कई ले गए तो देखो उके दाम भी अच्छे मिला था और लागत भी कम आवत है, और जो है साथे साथे मतलब अपने और चीजन के साथ तैयारो हो जाती है।
1: बिल्कुल, मूल यकरी ता जरूरी है कि हम पंच यही माँ काम करी यही के बारे में सोची। अब जैसे अब कौदा का हो जाते है कि हम पंच समझ नहीं पाई थे कि हम का करी, या अगर कौनो सब्जी या कौनो हम चीज कह रहे हैं तो वही माँ पूरी जानकारी नहीं रहा था, तो मन बहुत आग पीच करा था।
0: बिल्कुल भैया आग पीच करते, तो इके मारे तो जो है हम पंचे अपनी बैठके में यहाँ जो है विशेषज्ञ लोगन का बुलावा करी थे कि भाई अगर जानकारी सही मिल जाए और समय पर मिल जाए तो देखो कोनो तिना के कोनो दिक्कतें नहीं हुई। तो आज हम यही तिना की एक जानकारी लेके आए हैं, एक भेंटवार्ता है सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन वार्ताकार है डॉक्टर श्याम राज सिंह भैया, और देखो इनसे बातचीत करी ने डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो दोनों जन की बतकही सुनी जाए और लाभ लीन जाए।
1: बिल्कुल,
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां सब्जियों का व्यावसायिक उत्पादन आप कर रहे हैं वहां सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन इस समय कैसे करें, कौन सी तकनीक अपनाएं, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान रामानखेड़ा लखनऊ से प्रधान वैज्ञानिक फसल उत्पादन डॉक्टर श्यामराज सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां सब्जियों की नर्सरी तैयार करना चाहते हैं किसान भाई बहन तो क्या सलाह है डॉक्टर साहब?
3: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, सब्जियों की नर्सरी उत्पादन में गर्मी होने के नाते विशेष तकनीकी का ध्यान रखना है। इस समय किसान भाई अपने लिए फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च और खरीफ प्याज के नर्सरी तैयार करने के लिए जो है तैयारी कर रहे होंगे। उसके लिए किसान भाई चाहिए कि जो है किस तरह से समुचित प्रजाति का चुनाव करें और किस तरह से नर्सरी को रोग मुक्त नर्सरी उत्पादित करें जो कि आपके उत्पादकता को बढ़ाए और कम लागत में अधिक उत्पादन दे सके।
2: यानी मुख्य खेत में रोपाई के पहले अच्छी नर्सरी तैयार हो जाए तो ये बड़ी बात होगी। डॉक्टर साहब उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिनका चुनाव करें भाई बहन?
3: किसान भाई उन्नत प्रजाति का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सही प्रजाति चुनें। अगर

0: देर से होने वाली प्रजातियों को आगे लगाएंगे तो उसमें फूल न बनने के बजाय तेजी से बाड़वार होगी, और अगेती प्रजातियों को अगर लेट में लगाएंगे तो बटन के आकार का बनेगा। उसी तरह से अगर खरीफ की प्याज का तकनीकी का उपयोग करने के लिए रबी की प्याज की प्रजातियां चुनेंगे तो उसमें जो है फूल बन जाएंगे और गांठ नहीं बनेगी, तो इसलिए प्रजातियों का सही चुनाव करें। टमाटर के लिए अरका रक्षक, अरका सम्राट, पूसा रूबी, पूसा हाइब्रिड 1, काशी यमन और अविनाश 2 का प्रयोग करें।
1: और अगेती गोभी में
0: अगेती गोभी में आप जो है पूसा कथकी, पूसा दीपावली, काशी कुषाण, अरली कुआरी और अरका क्रांति का उपयोग करें। पत्ता गोभी के लिए गोल्डन एकर का उपयोग करें, पूसा मुक्ता का उपयोग करें और प्राइड ऑफ इंडिया का उपयोग कर सकते हैं।
1: खरीफ प्याज में डॉक्टर
0: खरीफ
1: साहब
0: प्याज में अरका प्रकृति, अरका निकेतन, N53, BS53
1: ये सब अच्छी
0: ये
1: प्रजाति।
0: प्रजातियां हैं। भीमा सुपर और भीमा लाल नई प्रजातियां आई हैं, इनका उपयोग जो है करके अच्छी उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब जहाँ उन्नत प्रजातियाँ चुन लिए किसान भाई बहन, तो नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है।
0: नर्सरी के लिए स्थान महत्व रखता है और दो तरह से नर्सरी उगाते हैं, एक हम सीधे खेत में और दूसरे हाई तकनीकी का उपयोग करके पाली हाउस में उगाते
1: यानी
0: हैं।
1: हाईटेक तकनीक।
0: हाईटेक तकनीक से उपयोग करते हैं। सो सामान्य नर्सरी के लिए स्थान का चुनाव ऐसी जगह पर करें जहां पानी न हो, मृदा जो है दोमट या बलुई दोमट हो, जीवांश युक्त हो और हर साल एक ही जगह पर न उगाएं, सब जगह चेंज करते रहें, पानी की सुविधा हो और 6 से 8 घंटे तक जो है प्रकाश आता हो, ऐसी जगह का चुनाव करें।
1: और जल निकास का प्रबंध भी हो।
0: जल निकास का उचित प्रबंध हो और इस बात का ध्यान रखें कि जो है ज्यादा कीट और बीमारियों वाली जगह न हो, पशुओं से सुरक्षा हो।
1: तो डॉक्टर साहब जहाँ भी मुख्य नर्सरी होगी, हाईटेक नर्सरी के अलावा जहाँ खेत में नर्सरी लगाएंगे तो जमीन की सतह से ऊंची हो।
0: जमीन की सतह से ऊंची हो या ये समय के अनुसार है, इस समय जमीन के सतह से ऊंची नर्सरी का उपयोग करेंगे क्योंकि पानी की बरसात है, गर्मी आएगी, बरसात होगी तो नर्सरी डूबने के बाद डंपिंग ऑफ और बीमारियां लग सकती हैं, इसलिए हमेशा ऊंची बनाएं। नर्सरी बनाने के लिए ऊंची क्यारी का उपयोग करें, 15 सेंटीमीटर जमीन से ऊंचा रखें, जमीन को जो है नर्सरी की चौड़ाई 1 मीटर रखें और लंबाई आवश्यकता अनुसार 3 से 5 मीटर तक रख सकते हैं किसान भाई। इस बीच में 1 से 1.5 फीट का जगह रखते हैं जिससे कि आप आसानी से घास और खरपतवार निकाल सकें, निराई गुड़ाई कर सकें।
1: क्या जहां नर्सरी डालने जा रहे हैं उसका शोधन भी जरूरी है, भूमि शोधन?
0: भूमि शोधन बीमारियों से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। भूमि शोधित करने के तमाम तरीके हैं, आप सौरीकरण कर सकते हैं। सफेद पॉलीथीन 50 माइक्रॉन की बताई गई नर्सरी की साइज के अनुसार पॉलीथीन से
1: बिछा
0: ढकें,
1: दें।
0: बिछा दें और चारों तरफ से इस तरह से ढक दें कि उसके अंदर जो है हवा का पास न हो सके, जिससे टेम्परेचर बढ़ जाता है और आजकल 30 से 40 सेंटीग्रेड का तापमान है। 3-4 सप्ताह में जितने कीड़े और बैक्टीरिया होंगे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद नर्सरी का शोधन करें। अगर यह नहीं हो पाता है तो फॉर्मल्डिहाइड 13 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला करके 1 वर्ग मीटर जगह में 10 लीटर पानी से उस घोल से
1: तर कर
0: आप
1: दें।
0: तर कर दें और उसके ऊपर काली पॉलीथीन से ढक दें। फिर 24 घंटे बाद आप जो है उसको निकाल करके गुड़ाई करें, जब फार्मेलिन की महक खत्म हो जाए तब उसका उपयोग करें। ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं, अगर आप केमिकल के यूज न करना चाहें तो ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। 50 ग्राम ट्राइकोडर्मा 10 किलो गोबर की खाद में मिला करके आप बीज बुआई से 1 सप्ताह पहले जो है नर्सरी के जमीन में अच्छी तरह से मिला दें और उसको जो है नमी बनाए रखें जिससे कि फंगस में अच्छी तरह से डेवलप हो जाए, फिर नर्सरी की जो है बुआई करें।
1: डॉक्टर साहब नर्सरी की भूख मिटाने के लिए खाद और उर्वरक का प्रबंधन भी करना होगा।
0: किसान भाई जैसा कि बताया कि 10 केजी प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो है गोबर की सड़ी हुई खाद या बर्मी कंपोस्ट मिलाएं, उसके साथ 100 ग्राम यूरिया, 150 ग्राम DAP और 150 ग्राम पोटाश अच्छी तरह से मिला करके 1 हफ्ते पहले जमीन में, उसके बाद बुआई करेंगे तो अतिरिक्त जो है न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी नर्सरी अच्छी तैयार होगी।
1: ये जो 150 ग्राम DAP और 150 ग्राम यूरिया, ये कितने क्षेत्र?
0: 3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़े जो है क्यारी
1: एक
0: के लिए,
1: क्यारी
0: एक
1: के लिए।
0: एक बेड के लिए जो है पर्याप्त है।
1: तो डॉक्टर साहब बीज का उपचार भी तो जरूरी है।
0: बीज का उपचार अगर किसान भाई बीज जो है अच्छी कंपनी से खरीद रहे हैं तो बीज शोधित मिलता है, नहीं तो जो है कैप्टान या बेबेस्टीन से 2.5 ग्राम से बीज को उपचारित करके
1: प्रति किलोग्राम
0: प्रति किलोग्राम से उपचारित

0: करके लगाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ, आजकल जो है कुंचन रोग या विषाणु रोग का है, तो उसके लिए 0.3 मिलीलीटर इमिडा क्लोरोपीड 1 लीटर पानी में मिलाकर बीज को आधे घंटे तक डुबोएं, उसके बाद सुखा कर लगाएंगे तो सफ़ेद मक्खी नहीं आएगी, जिससे कि पर्ण कुंचन रोग से बचा जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, बीज की बुआई भी तो महत्वपूर्ण है।
0: बीज की बुआई करते समय किसान भाई ध्यान रखें, लाइनों में लगाएं, 7 से 10 सेंटीमीटर की लाइनें बनाएं, और बीज जितना बड़ा है उससे 2 से 3 गुना गहराई, माने 2 से 3 सेंटीमीटर पर आप जो है गहराई में जो है बुआई करें। खाद और बालू के मिश्रण को अच्छी तरह से ऊपर से पतली लेयर लगा दें और हजारे से पानी दें। अगर पानी उस तरह से देंगे तो बीज एक जगह इकट्ठा हो सकता है। लगाने के बाद आप जो है फ्यूरा डान का किनारे किनारे छिड़काव कर दें, नहीं तो चींटियाँ आपके बीज को जो है नुकसान पहुंचा सकती हैं। और उसके बाद हजारे से पानी दें, 1 हफ्ते में जो है जर्मिनेशन हो जाता है और 1 महीने के अंदर जो है सब्जियों की पौध तैयार हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जब पौध जम जाएगी तो उसके बाद कठोरीकरण भी तो करना होगा।
0: अधिक सर्वाइवल के लिए, अधिक जो है पौधे जो है खेत में चलें, उसके लिए कठोरीकरण जरूरी है। कठोरीकरण में जब पौधे 3 से 4 पत्ते को हो जाएं, 1 हफ्ते के लिए पानी रोक दें। पानी कम होने से जो है पौधे में सशक्तिकरण आता है, जड़ें जो है नीचे पानी की उसमें जो है थोड़ी बढ़ जाती हैं, जिससे आप निकाल करके खेत में लगाएंगे सर्वाइवल बढ़ जाता है। जिस दिन आपको लगाना हो करें, हल्की सी सिंचाई करें, पौधों को निकालें और रोपाई जो है शाम के समय या जिस दिन बादल हुआ है उस समय करेंगे तो अधिक से अधिक जो है पौधे खेत में सर्वाइव करेंगे।
1: यानी शाम के समय करें तो ज्यादा अच्छा।
0: शाम के समय का समय सबसे अच्छा है, या जिस दिन जो है बादल छाए हों उस दिन रुपाई करें।
1: डॉक्टर साहब, पौध रोपण और उसके संरक्षण में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं?
0: पौधे निकालते समय आप ट्राइकोडर्मा का 10 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके उसमें जो है जड़ को थोड़ी देर के लिए आधे घंटे के लिए, तो उससे जो है आपके पौधों की बढ़वार रुकती है। तीसरा, 19-19-19 का 3 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल करके उससे जड़ से उपचारित करके लगाने पर पौधे की वृद्धि अच्छी होती है।
1: यानी जल विलेय उर्वरक,
0: जल विलेय उर्वरक
1: एनपीके,
0: एनपीके का उसके घोल में जड़ों को डुबो करके लगाने पर स्टार्टर सॉल्यूशन के रूप में काम करता है, जड़ें अच्छी होती हैं और पौधा अच्छी तरह से स्थापित होता है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ हाईटेक नर्सरी तैयार करनी है तो वहाँ कौन कौन सी बारीकी, आजकल प्लग ट्रे आ गए हैं, या थैली में अगर पौध तैयार करना चाहें लो टनल में या पाली हाउस में? तो
0: आजकल बीज का दाम बहुत बढ़ गया है, किसान भाई ट्रेच का उपयोग करके आप जो है उसमें टनल, या मैं बता रहा था कि जो है विषाणु का है तो लो टनल में बना करके उसमें आप उपयोग करके सही समय पर सही पौधे उत्पादन कर सकते हैं और जो बीमारी रहित होगी और अधिक से अधिक सर्वाइवल और अच्छी ग्रोथ कर सकती है। उसके लिए 3 भाग जो है बर्मी कुलाइट कोकोपीट, 1 भाग बर्मी कुलाइट और 1 भाग परलाइट मिला करके मिश्रित करें और उसमें जो है बीज को ट्रेज में भर करके एक बीज को एक खाने में लगाएं और उसको उससे ढक करके रख कर छाए में रखें और पानी का छिड़काव करें। ये ध्यान रहे कि जो है मृदा रहित कोकोपीट में करने के लिए हमें 19-19-19 का 3 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके और एक एक हफ्ते पर छिड़काव करना होगा, जिससे पौधों की वृद्धि अच्छी हो सके।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सब्जियों के नर्सरी प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9455058875 9455058875 94555088875।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का सब्जियों के नर्सरी प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाई इस समय सरकार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाई हुई है, जिसमें नर्सरी के उत्तम तरीके से जो है नर्सरी तैयार किया जाता है। अगर आप वहां से करें तो अपने
1: जिला उद्यान अधिकारी
0: से संपर्क करके उनको बीज दें और वो जो है अच्छी तरह से नर्सरी तैयार करके आपको समय पर रोग रहित नर्सरी दे सकते हैं।
1: डॉक्टर श्यामराज सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: रामजीत भैया।
3: हाँ रेनू बहनी।
2: देखो, सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन ये पर इतनी अच्छी तरह से बताएं डॉक्टर श्यामराज सिंह भैया।

0: और तीन अच्छे तरह से पूछें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो इनका दोनों जन का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी दे
1: दे
0: ली।
1: खातिर
0: हाँ,
1: बिल्कुल।
0: और भैया देखो इस समय अमिया के सीजन चल रहा है, हैं घरन घरन अमिया आ रही हैं और काहे कहती हैं भाई मने ही तो ले आओ, तब जैसे तुम तो गए हो ले आयो जाए के तुड़ के ले आयो हैं, या नहीं मिली तो कोई मांग के ले आओ, और भैया मेहरुवन खातिर हो जाता है वो दिक्कत।
1: अरे कौनो दिक्कत नहीं है, अब हमारे घर इतन का हम 30 किलो अमिया ले आए रहन, अब वो 2-3 दिन खैर हमें सुनोबो किन मूल कुल छील दिन, और कुल छील के वही का कुछ गलका बन गया है, कुछ खटाई बन गई है, और एकाठ मतलब 2-3 दिन चटनी बनी, और चटनी
0: वह
1: खैर
0: तो
1: लगभग
0: भैया वह
1: हाँ
0: तो सबसे बड़ी दिक्कत है भैया,
1: सिलबट्टे वाली।
0: हाँ जो तुम पंचे चटनी तो खइयो, अब यहो कहियो कि सिलबट्टा पीसो, मिला आजकल की बिटेवे भाई देखो सिलबट्टा तो पीस नहीं पाते, हम तो पीसन है लेकिन अब जो बिटेवे होती है कहती भैया हम सिलबट्टा ना चलो भाई, सिलबट्टा की चटनी हमसे ना पिसाई, तो आज यही तिना के एक गौने हम लेके आए हैं, देखो सरिता मिश्रा बहनी कह रही हमसे ना चटनी पिसाई, इस सब मेहरवन के दर्द आया और इका सुना जाए।
1: बिल्कुल।

0: रामजीत भैया
1: हाँ रेलू भाई
0: देखो एक दु अमियाले तो सही रहे जो तुम पिसवा लियो अब ना पिसवायो भैया नहीं तो तुमका रोटी ना मिल पाई।
1: वो बतिया तो ठीक कहती हो अब ध्यान रखब।
0: और भैया याक बात और
1: हमका
0: पता चला है कि मौसम तनिक बिगड़ा वाला है तो अगर मौसम के हाल हो तो बता दियो भैया।
1: बिल्कुल बहनी मौसम के ध्यान तो हम पंचन का रखा इनका परत है और भारत सरकार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम केंद्र लखनऊ के अनुसार जौन मौसम के जानकारी है 4-5-6 दिनांक मा पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश मा कहूँ कहूँ पर गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है। साथ ही मेघ गर्जन के साथ झोंकेदार हवा चले के संभावना है और 6, 7 और 8 मा कौनो विशेष चेतावनी नहीं है।
0: अच्छा भैया
1: यह मौसम की जानकारी है।
0: तो भैया बाजार भाव बता दीन जाए तनी।
1: बिल्कुल
0: तो भैया देखो हमरे लगे 4 मंडी के थोक बाजार भाव है तो आओ बताई का लखनऊ कानपुर गोंडा अयोध्या। लखनऊ में यहाँ आज गेहूं दड़ा रहा है 2586 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में यहाँ 2585 रुपया, गोंडा 2528 रुपया और अयोध्या में रहा 2585 रुपया। अगर चावल मोटा वाला बात की जाए तो लखनऊ मंडी में यहाँ रहा 3480 रुपया, कानपुर में यहाँ 3500 रुपया, गोंडा 3050 रुपया और अयोध्या में यहाँ रहा 3050 रुपया। चना छोटा वाला लखनऊ मंडी में यहाँ 6680 रुपया, कानपुर 3380 रुपया, गोंडा में यहाँ 6700 रुपया और अयोध्या में यहाँ 6400 रुपया प्रति क्विंटल। मटर सफ़ेद वाली लखनऊ मंडी में यहाँ रही 4450 रुपया, कानपुर में यहाँ 4530 रुपया और गोंडा में रहा 4215 रुपया और अयोध्या में 4250 रुपया।
1: और यही के साथ बात कर ली जाए सब्जी के तो आलू जौन सफ़ेद रहा वो लखनऊ मंडी में रहा 760 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 660, गोंडा 925 और अयोध्या 720 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। प्याज जौन लाल होते हुए के लखनऊ मंडी के बाजार भाव 1340, कानपुर 1300, गोंडा 1300, अयोध्या 1200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। लहसुन के लखनऊ मंडी के बाजार भाव रहा 7200, कानपुर 8200, गोंडा 9000 और अयोध्या के 7030 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। बैगन लखनऊ मंडी में रहा 1700, कानपुर 1680, गोंडा 2500 और अयोध्या 2085 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। और टमाटर रहा लखनऊ मंडी में 1580, कानपुर 1270, गोंडा 1225 और अयोध्या 1200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से। और अब बात कर ली जाए कल के कार्यक्रम में।
0: बिल्कुल भैया कल अपने कार्यक्रम लोकायतन में यहाँ हुई गांवों में पोषण सुरक्षा, वार्ताकार हुई है डॉक्टर शिप्रा यादव बहनी और खेती किसानी में हुई है किसान डायरी जो उनकी कृषि समाचार पर आधारित हुई, आलेख एवं वाचन अमरेंद्र सहाय अमर जी के हुई है, संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया के हुई।
1: बिल्कुल और यही के साथ है पंच भाई नोट कर ले हम पंचन केर पता तो कागज कलम उठा लिए और लिखा है पता है कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन नंबर 226001।
0: बिल्कुल भैया और हमारे कार्यक्रम कस लागत है ईका हमका पाती लिखकर जरूर बतावें। और भैया देखो मौसम खराब होने वाला है ठीक है और जून के महीना भी चल रहा है पानी बरसे वाले की संभावना रहा थे तो ऐसे में यहाँ अपन गोरु जोन हरहा बछेड़ू है उन्हों के बहुत ध्यान रखे।
1: बिल्कुल बहनी जोन बयाला व्याला है वही का तनी तोप के रखे ऐसा ना हो कि हम पंचन सोते है और पता लगा रात भर गोरु भीगत है तो यही का तनी ध्यान रखे।
0: बिल्कुल भैया और देखो अब कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त तो जो है पंच भाई से लीन जाए आज्ञा
1: जय हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है, जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिंग के।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। वाराणसी में आज से 2 दिवसीय ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की शुरुआत हो गई है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में रूस, इथोपिया और मिस्र हाइब्रिड मोड में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने बताया कि इस आयोजन में रचनात्मक अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संस्कृति आधारित सतत विकास आदि विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है।
2: तो बैठक में जो मेन मुद्दे हैं कि कहाँ पे जो ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं, जो क्रिएटिव इकोनॉमी है, जो हमारे आर्टिसंस हैं, आर्टिस्ट हैं, परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उनको कैसे हम आपस में कोलैबोरेट करा के जो हमारे मेंबर कंट्रीज की अर्थव्यवस्था है उसमें उनका योगदान बढ़ा सकते हैं। जो नए चैलेंजेस हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी है, उसको कैसे हम सबको मिलके उस पर काम करना है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में पौधरोपण कर प्रदेशव्यापी अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस वर्ष राज्य में एक दिन

0: में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रदेश के 17 नगर निगमों, 825 विकास खंडों, 762 नगर निकायों समेत सभी ग्राम पंचायतों में यह अभियान कल पूरे दिन चलेगा। वन विभाग के साथ ग्राम्य विकास, पंचायती राज, कृषि, उद्यान आदि विभागों के सहयोग से अमृत सरोवरों, तालाबों, सड़कों, एक्सप्रेसवे, नदियों के किनारे पौधे लगाए जाएंगे। इसमें विद्यालयों, महाविद्यालयों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों की भी सहभागिता होगी। पौधरोपण अभियान के तहत लखनऊ मंडल में 62 लाख, वहीं बरेली और प्रयागराज में करीब 32 लाख पौधे लगाए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में बायो युग ग्रीन कमांड 2026 का शुभारंभ करेंगे। यह पहल पारंपरिक प्लास्टिक के विकल्प के रूप में बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत, रक्षा क्षेत्र, शोध संस्थानों और पर्यावरण विशेषज्ञ शामिल होंगे। प्रदेश में 8, 9 एवं 10 जून को आरक्षी, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग द्वारा रियायती किराए पर अंतर जनपदीय विशेष बसों का संचालन किया जाए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि भर्ती परीक्षा की शुचिता, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ किसी भी स्तर पर समझौता ना हो। उन्होंने अभ्यर्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 6 जून को परीक्षा आयोजन का पूर्वाभ्यास कराने और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस परीक्षा में लगभग 29 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: प्रदेश में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी भर्ती की 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। परीक्षा में लगभग 50% पंजीकृत अभ्यर्थी ही शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया, परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए AI आधारित मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के कारण परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और विश्वसनीय रही। नई दिल्ली में आयोजित पीएम सूर्यघर पुरस्कार समारोह में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत देश भर में हुए सोलर इंस्टॉलेशन के आधार पर प्रदेश ने टॉप 3 स्टेट इंस्टॉलेशन श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया। जिला स्तर पर सोलर इंस्टॉलेशन और राज्यवार वेरी हाई कंज्यूमर बेस श्रेणी में प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया, जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई, जिससे कारोबार करना आसान हो गया। वहीं 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र में एनडीए सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में कल से 21 जून तक विशेष आयोजन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन जनभागीदारी आधारित

0: कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनसेवा, सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं के हित और जनकल्याण से जुड़े प्रत्येक कार्यक्रम का क्रियान्वयन संवेदनशीलता और जन सहभागिता के साथ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 5 से 21 जून तक की अवधि में जनप्रतिनिधि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुँचाने का काम करें। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपालों का आयोजन कर जन समस्याओं के समाधान, योजनाओं की समीक्षा और शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था की जाए। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: इसी क्रम में आज विभिन्न जनपदों में मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर इस विशेष जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
2: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष,

0: बारे में जानकारी दी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कानपुर में मीडिया प्रतिनिधियों से संवाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 12 साल भारत के उत्कर्ष, आत्मविश्वास और वैश्विक प्रतिष्ठा के वर्ष रहे हैं।
1: इन 12 वर्षों में जो उनके कार्य और कृतित्व रहा वो बेमिसाल रहा। ये 12 वर्ष भारत के उत्कर्ष इसके रूप में सिद्ध हुआ है। और यदि हम कहें कि उनके कार्यों को गिनाना शुरू करें जनहित के, देश हित के, अंतर्राष्ट्रीय जगत के हित के, तो एक ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने बड़े और कड़े निर्णय लिए हैं जिनकी कल्पना करना जनता सोच भी नहीं सकती थी।
0: 17 जून को अफगानिस्तान और भारत की टीम के बीच लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सचिन आनंद शुक्ला ने बताया, मैच के टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो चुकी है। गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, हमीरपुर समेत प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज तेज आंधी और बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। साथ ही राज्य के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक के पहले दिन संस्कृति आधारित सतत विकास पर हुआ मंथन। ब्राजील, चीन, इंडोनेशिया समेत 11 देशों के प्रतिनिधि हो रहे हैं शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यावरण दिवस पर लखनऊ से करेंगे प्रदेश व्यापी अभियान का शुभारंभ। राज्य में एक दिन में 5 करोड़ पौधे लगाने का है लक्ष्य। मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल लखनऊ में करेंगे बायो युग ग्रीन कमांड का शुभारंभ। बायो प्लास्टिक को बढ़ावा देगी यह पहल। और केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कल से 21 जून तक होंगे विशेष आयोजन। मुख्यमंत्री ने दिए विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो।
3: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए खेलों की गतिविधियों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खेल जगत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए दंगल से मेडल तक। विषय है कुश्ती, गामा पहलवान और दारा सिंह। आलेख है आसिफ इकबाल का और स्वर है शमसुल आफरीन के साथ आसिफ इकबाल का।

0: स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्रोग्राम खेल जगत में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं
1: शम्सुल आरफीन।
0: नमस्कार। दोस्तों, जब शरीर पर लाल माटी लगती है, जब रगों में खून नहीं बल्कि जीतने का जुनून दौड़ता है और जब अखाड़े में दो पहलवान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो पूरा देश अपनी सांसें थाम लेता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे पुराने जोशीले और जांबाज खेल की, जो है कुश्ती।
1: जी हाँ, कुश्ती एक ऐसा खेल जो सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि दिमाग, दांव पेच और अटूट अनुशासन का है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम मिट्टी के अखाड़े से लेकर ओलंपिक के मैट तक के सफर पर निकलने वाले हैं।
0: अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुश्ती कोई नया खेल नहीं है। प्राचीन काल में इसे मल्ल युद्ध कहा गया है। राजा महाराजाओं के दौर में पहलवानों को राज्य का गौरव माना जाता था। लेकिन कुश्ती सिर्फ इतिहास नहीं, हमारी संस्कृति है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र के गांवों में आज भी सुबह 4 बजे जब दुनिया सो रही होती है तब अखाड़े की मिट्टी खोदी जाती है। पहलवान अपने आराध्य के सामने सिर झुकाते हैं

0: बदन पर सरसों का तेल और मिट्टी मलते हैं।
1: और जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मिट्टी सिर्फ धूल नहीं है, ये इन पहलवानों की माँ है जो इन्हें गिरकर संभलना और थपकी देकर जीतना सिखाती है। अखाड़े की कुश्ती के नियम भी गजब के होते हैं। धोबी पछाड़, कल जंग, भारत द्वाज, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो दांव हैं जो सेकंडों में बाजी पलट देते हैं। और खुराक, भाई साहब खुराक तो सुबह सुबह बादाम की ठंडाई, किलो भर दूध और देसी घी, तभी तो वो लोहे के डोले बनते हैं।
0: लेकिन अब हवा बदल चुकी है। अब अखाड़े के लंगोट के साथ साथ पहलवानों ने सिंगलेट, जिसे कुश्ती की ड्रेस कहा जाता है, वो पहन ली है और मिट्टी के जगह ले ली है मैट ने। भारत का ओलंपिक इतिहास कुश्ती के बिना अधूरा है। साल 1952 में आजाद भारत को पहला व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती में ही मिला था।
1: जी हाँ, और उसके बाद सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक, रवि दहिया, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जैसे शेरनियों ने दुनिया को दिखा दिया कि जब भारतीय पहलवान मैट पर उतरता है तो सामने वाले के पसीने छूट जाते हैं। भारतीय पहलवानों ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है, चाहे वो ओलंपिक हो, राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर एशियाई खेल। कुश्ती भारत के लिए सबसे ज्यादा मेडल लाने वाले खेलों में से एक रही है।
0: जी हाँ, ओलंपिक में भारत ने कुश्ती में अब तक कुल 8 मेडल जीते हैं, जिनमें 2 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज मेडल। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक मेडल भी कुश्ती में ही आया था, जो केडी जाधव साहब ने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में हासिल किया था। राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवानों का हमेशा एक तरफा दबदबा रहा है। भारत ने यहाँ कुल 114 मेडल जीते हैं, जिनमें 49 गोल्ड शामिल हैं। 49 गोल्ड के साथ साथ 39 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों का पहला कुश्ती गोल्ड लीला राम सांगवान ने 1958 में कार्डिफ में हैवीवेट कैटेगरी में जीता था।
1: और पिछले यानी 2022 के बर्मिंगम राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के सभी 12 पहलवान मेडल जीतकर लौटे थे, जिसमें 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज शामिल थे। विनेश फोगाट यहां लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में, जिनमें 2014, 2018 और 2022 में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। एशियाई खेलों में मुकाबला काफी कड़ा होता है, क्योंकि यहाँ ईरान, जापान और मध्य एशियाई देशों जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के वर्ल्ड क्लास पहलवान हिस्सा लेते हैं। इसके बावजूद भारत ने यहाँ कुल 65 मेडल अपने नाम किए हैं। कुल मेडल्स की तादाद जो है वो 65 है, 11 गोल्ड, 15 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज।
0: जरा सोचिए, हरियाणा या कोल्हापुर के एक छोटे से गांव से निकला हुआ लड़का या लड़की, जिसके पास कभी जूतों के लिए पैसे नहीं थे, वो दुनिया के सबसे बड़े मंच पर जाकर जब मेडल जीतता है और बैकग्राउंड में जन गण मन बजता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब।
1: बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोस्तों ये सफर जितना चमकीला दिखता है उतना है नहीं। कुश्ती एक बेहद क्रूर खेल भी है। 6-6 मिनट के मैच के लिए सालों की तपस्या लगती है। 100-100 ग्राम वजन कम करने के लिए पहलवान बूंद बूंद पानी को तरसते हैं, प्लास्टिक सूट पहनकर कड़कती धूप में दौड़ते हैं। टूटे हुए कान, फटी हुई मांसपेशियां और घुटनों का दर्द, हर यह पहलवान की असल कहानी है। भारत में इस खेल के 2 प्रारंभिक नायक थे, आज आपका परिचय उनसे कराते हैं, जिनकी कहानी बड़ी हैरत अंगेज है।
0: अखाड़े की मिट्टी, पसीने की खुशबू और एक ऐसा नाम जिसके सामने आते ही दुनिया भर के बड़े से बड़े पहलवानों के हौसले पस्त हो जाते थे। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने 52 साल के करियर में एक भी कुश्ती नहीं हारी। इतिहास उन्हें रुस्तम हिंद और उन्हें द ग्रेट गामा के नाम से जानती है।
1: जी, और 22 मई 1878 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे गुलाम मोहम्मद बख्श, यानी हमारे गामा पहलवान, कुश्ती उनके खून में थी। लेकिन सिर्फ 5 फीट 7 इंच के इस कद के इंसान ने कैसे पूरी दुनिया के रेसलिंग किंगडम पर राज किया? चलिए जानते हैं अखाड़े की उस शहंशाह की कहानी जिसे आज भी दुनिया अजेय कहती है।

0: कहते हैं कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। गामा की अजेय शक्ति के पीछे थी उनकी वो कड़ी मेहनत, जिसे सुनकर आज के एथलीट्स के भी पसीने छूट जाते हैं। जब गामा सिर्फ 10 साल के थे, तभी से उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। उनकी रोज की कसरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो रोज 3000 से ज्यादा बैठक, 1500 से ज्यादा पुशअप्स लगाते थे। इतना ही नहीं, अपनी ताकत को फौलाद बनाने के लिए वे 54 किलो के पत्थर का एक भारी कॉलर अपने गले में पहनकर उठक बैठक किया करते थे।
1: तो अब बात करते हैं उस डाइट की, जिसे पचाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। द ग्रेट गामा की रोजाना की खुराक में 10 लीटर दूध, 1.5 किलो बादाम का पेस्ट, 3 टोकरे ताजे फल और तकरीबन 6 से 7 किलोग्राम देसी चिकन शामिल था। दतिया और पटियाला के महाराजाओं की देखरेख में उनकी इस शाही खुराक और ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम किया जाता था।
0: गामा पहलवान ने भारत में सबको हरा कर रुस्तम-ए-हिंद का खिताब तो जीत लिया था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी।

0: साल 1910 गामा अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन पहुंचे। वहां विदेशी पहलवानों ने उनके छोटे कद का मजाक उड़ाया। गामा ने खुली चुनौती दे दी, मैं लंदन के किसी भी पहलवान को सिर्फ 5 मिनट में चित कर सकता हूँ, चाहे उसका कद और वजन कुछ भी हो।
1: और इस चुनौती को स्वीकार किया उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन पोलैंड के स्टैनिस्लॉस ज़िबिस्को ने। 10 सितंबर 1910 को दोनों के बीच मुकाबला हुआ। गामा ने पहले ही मिनट में ज़िबिस्को को जमीन पर ऐसा पटका कि पूरे 2.5 घंटे के मैच में ज़िबिस्को जमीन से उठ नहीं पाए। मैच ड्रॉ रहा, लेकिन अगली फाइट में ज़िबिस्को डर के मारे मैदान में ही नहीं आए और गामा को वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियन घोषित कर दिया गया। इसके बाद अमेरिका के बेंजामिन रोलर और स्वीडन के जोहानसन जैसे सुरमाओं को भी गामा ने मिनटों में धूल चटा दी। दुनिया दंग थी कि भारत की मिट्टी से निकला ये पहलवान अखाड़े का भगवान बन चुका था।
0: गामा सिर्फ अखाड़े के ही नहीं, दिल के भी बड़े पहलवान थे। 1947 में विभाजन के वक्त जब वो लाहौर की मोहिनी कॉलोनी में रह रहे थे, तब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर वहाँ के हिंदू पड़ोसियों की दंगाइयों से रक्षा की थी। उन्होंने छाती तानकर कहा था, मेरे जीते जी मेरे पड़ोसियों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उन्होंने खुद अपने पैसों से उन परिवारों को सुरक्षित सीमा पार करवाया। मगर अफसोस, दुनिया को जीतने वाले इस महान पहलवान का आखिरी वक्त तंगी और बीमारी में गुजरा। साल 1960 में लाहौर में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।
1: आज गामा पहलवान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अजय विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। यहाँ तक कि मार्शल आर्ट्स के लेजेंड ब्रूसली भी गामा पहलवान के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में गामा के कसरत के तरीकों को शामिल किया था। सलाम है भारत माँ के इस वीर सपूत को, जिसने कुश्ती की दुनिया में वो मकाम हासिल किया जो ना उनके पहले कोई कर पाया था और ना शायद कभी कोई कर पाएगा। द ग्रेट गामा, एक ऐसा नाम जो हमेशा अजय रहेगा।
0: अब बारी आती है दूसरी हस्ती की, रुस्तम-ए-ज़मां दारा सिंह। एक ऐसा नाम जो सुनते ही 56 इंच का सीना, फौलादी कलाई और अखाड़े की मिट्टी की खुशबू जहन में आ जाती है। क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने जिंदगी में 500 से ज्यादा कुश्ती लड़ी और एक भी नहीं हारी? एक ऐसा इंसान जिसे किंग कॉन्ग जैसे 200 किलो के दैत्य को उठाकर फेंकने के लिए जाना गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के लाडले और अखाड़े के अजय योद्धा दारा सिंह की।
1: 19 नवंबर 1928 को पंजाब के अमृतसर के एक गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया दीदार सिंह रंधावा। मिट्टी और किसानी से जुड़े इस लड़के को बचपन से ही पहलवानी का शौक था। सुबह तड़के उठना, सैकड़ों दंड बैठक लगाना और अखाड़े की मिट्टी में पसीना बहाना इनका रोज का नियम था। धीरे धीरे दीदार सिंह दारा सिंह बन गए

0: पंजाब के छोटे छोटे दंगलों से निकलकर पूरी दुनिया पर छाने के लिए तैयार हो गए।
1: दारा सिंह की कदकाठी ऐसी थी कि बड़े बड़े पहलवान उन्हें देखकर ही पसीना छोड़ देते थे। 6 फीट 2 इंच का कद और करीब 130 किलो का वजन। 1950 और 60 का दशक दारा सिंह के नाम रहा। उन्होंने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जीती और उस समय पंजाब और उस समय हिंद का खिताब अपने नाम किया।
0: लेकिन इतिहास तब रचा गया जब 1956 में उनका सामना हुआ ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक पहलवान किंग कॉन्ग से। किंग कॉन्ग का वजन दारा सिंह से लगभग दोगुना था, लेकिन दारा सिंह ने अपनी फौलादी ताकत और दांव पेच से 200 किलो के किंग कॉन्ग को न सिर्फ उठाया बल्कि रिंग से बाहर फेंक दिया। इस मुकाबले ने उन्हें दुनिया का रुस्तमे जमा यानी विश्व चैंपियन बना दिया।
1: अखाड़े में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद दारा सिंह ने रुपहले पर्दे का रुख किया। उन्होंने किंग कॉन्ग, फौलाद और जग्गा जैसी कई हिट फिल्में की। वे भारत के पहले ऐसे एक्शन हीरो थे जिन्होंने स्क्रीन पर बॉडी और डोले शोले दिखाए थे।
0: लेकिन दारा सिंह के कैरियर का एक बड़ा मोड़ आया साल 1987 में। रामानंद सागर ने उन्हें अपनी रामायण में हनुमान की भूमिका के लिए चुना। दारा सिंह ने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि लोग आज भी उनके किरदार को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं।
1: खेल और अभिनय के बाद दारा सिंह राजनीति में भी आए और राज्यसभा सांसद बने। 12 जुलाई 2012 को इस महाबली ने दुनिया को अलविदा कह दिया। दारा सिंह सिर्फ एक पहलवान या अभिनेता नहीं थे, वो भारत की शान थे। एक ऐसा लीजेंड जिसने सिखाया कि अगर इरादे फौलादी हों तो हर किंग कॉन्ग को हराया जा सकता है। शत शत नमन इस भारत माँ के वीर सपूत को।
0: आज के खेल जगत में कुश्ती के मैदान से बस इतना ही। हम गामा पहलवान और दारा सिंह दोनों लीजेंड्स को सलाम करते हैं और कुश्ती में भारत के सुनहरे भविष्य को देखते हुए हम पहलवानों को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।
1: खेल जगत से विदा दें आसिफ इकबाल
0: और शमसुल आरफीन को। जय हिंद।
2: खेल जगत कार्यक्रम में दंगल से मेडल तक शीर्षक में आज आपने सुना कुश्ती गामा पहलवान और दारा सिंह। आलेख था आसिफ इकबाल का और स्वर था शमसुल आफरीन और आसिफ इकबाल का। अब आज का खेल जगत कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज़ ऑन AIR ऐप और DTH पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत।

0: अभी आप कुमार सानू और अलका याग्निक को सुन रहे थे सनम फिल्म में। गीतकार थे समीर, संगीतकार आनंद मिलिंद।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहब्बत फिल्म का गीत विनोद राठौर और सोनू निगम की मिली जुली आवाज़ों में। समीर के लिखे बोलों की तर्ज बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: हिंदी कार्यक्रम के सुनने वालों को सुरेंद्र राजेश्वरी का नमस्कार। श्रोताओं, आज के संक में आपको सुनवाते हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है बचाओ, और ये कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं महेंद्र भीष्म।
1: मैं एक नन्हा सा वृक्ष हूँ, इस सुंदर संसार में आए मुझे कुछ एक वर्ष ही हुए हैं। नीले आकाश के नीचे पर्वतमालाओं की तलहटी में विस्तृत सुरम्य वन के ठीक मध्य में लताओं से आच्छादित वृक्षों की हमारी रमणीक बस्ती है। मेरे माता पिता, भाई बंधु एवं बुजुर्ग सभी मेरे आसपास हैं, जिनकी छत्र छाया में पल बढ़ रहा हूँ। प्रकृति के महत्वपूर्ण घटक नाना प्रकार के जीव जंतु हमारे बीच पलते बढ़ते हैं। जब सूर्य देव आकाश के बीचों बीच आ जाते हैं, तब हमारी जड़ों के ऊपर की कुछ भूमि पत्तों से छनकर आते प्रकाश से प्रकाशित हो उठती है। छोटे बड़े जड़ तरुओं की शाखाओं पर अनगिनत पक्षी अपना बसेरा बनाए हुए हैं, जिनके कलरव से दिवस का प्रारंभ और स्तब्धता से अवसान प्रतीत होता है। रात्रि की नीरवता में हम वृक्ष विश्राम करते हुए भी विभिन्न प्रकार के प्रदूषण को स्वयं में आत्मसात करना कतई नहीं भूलते, और भोर होते ही हम सभी प्राणी मात्र के लिए वायु प्राणवायु के संचार में लग जाते हैं। जड़वत रहते हुए भी हमें सारे संसार की सूचना रहती है। दूर दूर तक विचरण करने वाले हमारे साथी पंछी वापसी पर हमें अपने रोमांचक यात्रा वृतांत सुनाते, साथ ही भूगोल, इतिहास और समसामयिक घटनाओं की ढेर सारी जानकारी देते। मेरे जैसे नवातीत वृक्ष अपने बुजुर्गों से बहुत सी रोमांचक घटनाएं और कहानियां नित्य सुनते रहते। इन्हीं से हमें ज्ञात हुआ था कि हम पेड़ पौधों को जीवधारी के रूप में सर्वप्रथम भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया था। यद्यपि प्राचीन सनातन धर्मी मान्यता यह रही है कि हम पेड़ पौधे भी अन्य जीव जंतुओं की भांति सुख दुख का अनुभव करते हैं, फिर भी हमें सर्वप्रथम वैज्ञानिक प्रमाणिकता डॉक्टर बसु के द्वारा ही मिल सकी है। भारतीय संस्कृति में तो हमें देवतुल्य स्थान प्राप्त है। भारतीय आयुर्वैज्ञानिकों की तो यहाँ तक धारणा है कि संसार में ऐसी कोई वनस्पति नहीं जो अभिसज्ज हो। सनातन धर्मी हम में से कई वृक्षों को चिरकाल से पूजते चले आ रहे हैं। उनका प्रत्येक वृक्ष से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। हमारी देखरेख, हमारा रखरखाव सब इसी प्रकृति के संचालन में होता चला आ रहा था, जिसके हम पेड़ पौधे महत्वपूर्ण घटक माने जाते हैं। किंतु जब से मनुष्यों द्वारा अपनी प्रगति का वास्ता देकर हमारा सफाया करना प्रारंभ कर दिया गया है, तब से हमारे सामने अपने अस्तित्व को बनाए रखने की चिंता आ गई है। दीन दूनी रात चौगनी घटोत्री हुई है, इसके लिए एकमात्र मनुष्य ही जिम्मेदार है, जो तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आज भी हमें अपने निज स्वार्थों और इच्छाओं की पूर्ति के लिए नष्ट करते चले आ रहे हैं। हम पेड़ पौधों के कटाव को नियंत्रित करने के लिए मनुष्यों की सरकार ने अनेक कानून और नियम बना रखे हैं। हमारी सुरक्षा के लिए पूरा एक विभाग संगठित कर रखा है, फिर भी हम वृक्षों को किसी न किसी बहाने या चोरी छुपे आज भी काटा जा रहा है। अभी विगत वर्ष की घटना है, हमारी रक्षा के लिए नियुक्त एक वन रक्षक को, जिसे हम वृक्षों की बहुत चिंता थी, ठीक दोपहर को उसे हमारे सामने दुश्मन मनुष्यों ने

वैसे ही काट डाला जैसे वे हम वृक्षों को काटकर मार डालते हैं। उस वन रक्षक ने हमारी रक्षा के लिए अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए, जिसे हम जड़ प्राणी सिवाय मूक सहानुभूति के कुछ न दे सके। यही तो हमारी लाचारी है। हम स्थिर रहकर सदैव कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, परंतु कुछ कह पाने या कर पाने में पूर्णतया असमर्थ रहते हैं। अरे, अपने ही भाई बंधु के अपने ही सामने कटते मरते लाचार देखते रहते हैं। हाँ, प्रकृति जरूर बदला लेती है। हमारी कमी से वह बौखला उठती है और हमारी कमी को वह अपने बदले रुख से लोगों को महसूस कराती है। हमारे बड़े बूढ़े बताते हैं कि सदियों से हमने मनुष्य की हर प्रकार से मदद की, यहाँ तक कि उनके मृत शरीर को पंचतत्व मिलाते हुए चिता के रूप में हम स्वयं भस्म होते या ताबूत बनकर दफन होते चले आ रहे हैं। परंतु जिस तरह से हम वृक्षों की अंधाधुंध कटाई जारी है, उससे यह भय स्पष्ट उत्पन्न हो चला है कि क्या भविष्य में हमारा अस्तित्व ही नष्ट करके ये मनुष्य मानेंगे जो अपनी प्रगति के सामने इतने अंधे हो चले हैं कि वे हमें नष्ट कर परोक्षता स्वयं के लिए बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। एक तरह से वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मनुष्यों के बीच के ही कुछ लोग हमारी सुरक्षा की आवाज उठाते हैं, चिपको जैसे आंदोलन करते हैं। इसके बावजूद भी हम वृक्षों की कटाई निरंतर जारी है, कोई कमी नहीं आने पा रही है। आवश्यकता है जनमानस को पूर्ण रूप से समझने की, चेतावनी देने की कि हमारे अस्तित्व के साथ ही उनका भी अस्तित्व जुड़ा है। अगर हम नहीं रहेंगे तो वह भी हमारे अभाव में अधिक समय तक नहीं रह पाएंगे। यद्यपि हमारे रक्षकों ने हमारे बचाव और हमारी विभिन्न प्रजातियों की रक्षा के लिए भरसक प्रयत्न कर रखे हैं, विभिन्न प्रकार की नई नई प्रजातियां विकसित कर वन अभ्यारण्य विकसित कर लिए हैं, फिर भी जिस तेजी से हमारे कम होने का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उतनी तेजी से हमारी वृद्धि नहीं हो पा रही है। फलस्वरूप विश्व के कई स्थानों पर हम पर्यावरण के उस निर्धारित मानक से भी तेजी से पिछड़ते चले जा रहे हैं जो पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। पक्षियों को भी आशंका हो चली है कि भविष्य में वह अपने नीड कहाँ बनाएंगे। जिस अधाधुंध गति से अपनी प्रगति का वास्ता देकर मनुष्य हमें साफ कर रहे हैं, उनके काले कलुषित हाथ कभी भी हमारी गर्दन दबोच सकते हैं। हमारी बस्ती में अजीब सा मातम जैसा माहौल छाया रहता है। पता नहीं कब हम सबका नंबर आ जाए। कूर मनुष्य से कौन हमारी रक्षा करेगा? क्या ये निरे मूर्ख मनुष्य इतनी सी बात भी नहीं समझ सकते, जो आज अपने आप को सबसे बड़ा बुद्धिमान जीवधारी मानते हैं, कि हमारा पर्यावरण संतुलन में कितना बड़ा योगदान है? हमें नष्ट करने वाले आतताई दुष्टों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, जो कानून का उल्लंघन कर हमें किसी न किसी तरह से काटने पर आमादा रहते हैं। दक्षिण से शीत ऋतु बिताकर लौटे पक्षियों के समूह ने यह सूचना देकर कि निकट से गुजरने वाली पहाड़ी नदी में मनुष्यों ने बांध बनाने का निश्चय किया है, हम सभी को भयभीत कर दिया है। उन्होंने बताया कि बांध बनाने की पैमाइश पूरी कर ली गई है। हम सारे के सारे पेड़ पौधे बांध के जलाशय की परिधि में आते हैं। हे भगवान, कोई तो हमें उनसे बचाए जो यह नहीं मानते कि यहां बांध बनाने से उनको पर्यावरण असंतुलन के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। दयालु प्रभु ने हम सभी की करुण पुकार जल्दी ही सुन ली। कुछ दिन के लिए बांध निर्माण कार्य रोक दिया गया। पंक्षियों ने हर्षित हो बताया, बांध निर्माण का विरोध कर रहे स्थानीय मनुष्यों ने बांध निर्माण कार्य रोकने के लिए आंदोलन छेड़ रखा है। उनके बीच के कुछ लोग उच्चाधिकारियों, शासन की बागडोर संभाले नेताओं से बातचीत करने देश की राजधानी गए हुए हैं। एक आस बन गई कि चलो, कुछ मनुष्य अभी भी हमारे साथ हैं जो हमारे अस्तित्व के लिए संघर्षरत हैं, पर हम ज्यादा दिन चैन से नहीं रह पाए। बांध निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। पक्षियों ने बताया, देश के कर्णधारों ने तथाकथित मनुष्यों की सरकार ने हमारे अस्तित्व की रक्षा करने वाले पर्यावरणविदों और स्थानीय नेताओं की बात नहीं मानी। अधिक महत्व के लिए कम महत्व का त्याग करना ही होगा, का तर्क देकर दो टूक जवाब दे दिया, जिससे बांध निर्माण का विरोध कर रहे लोगों में घोर निराशा छा गई। हम लोग पुनः अपने नष्ट हो जाने की आशंका में दिन रात घुलने लगे। जिस तेज गति से बांध निर्माण कार्य रात दिन चल रहा था, उसी गति से बांध निर्माण कार्य का विरोध मुखर हो उठा था। पक्षियों से ही पता चला कि दो पर्यावरणविद आमरण अनशन के चलते अपनी देह त्याग चुके हैं, किन्तु इतना सब हो चुकने के बावजूद भी शासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी थी। पक्षियों ने बताया कि कुछ स्थानीय स्वार्थी नेताओं ने शासन से मुआवजे की मांग शुरू कर दी है। क्या यह इनके लिए संभव है? कदापि नहीं, हम तो सदा से प्रकृति के साथ हैं। एक दिन भोर पक्षियों ने रोज की तरह चहचहाना छोड़ हम सभी को मनहूस खबर सुनाई कि सरकार के साथ स्थानीय नेताओं का एक समझौता हो गया है, जिसमें सरकार ने बांध निर्माण कार्य रोकने के अलावा सारी बातें मान ली हैं। मुआवजे की धनराशि, विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या के समाधान हो जाने के बाद बांध निर्माण कार्य का विरोध कर रहे स्थानीय लोग अब पुनर्वास मुआवजे की धनराशि को पाने की जोड़ तोड़ में लग गए। हम पेड़ पौधों की और किसी को देखने की फुर्सत नहीं थी। विभिन्न पर्यावरणविदों के बांध निर्माण के विरोध में पत्र पत्रिकाओं में बड़े बड़े लेख छपे, जो हमारे लिए इस पृथ्वी ग्रह के अंतिम दिन होने वाला था। चारों ओर मनुष्यों ने मारकाट मचा रखी थी। धीरे धीरे वह हमारी बस्ती के छोटे बड़े सभी बासिंदों को काटते मारते चले

0: रहे थे। एक एक कर हमारे सभी साथी बड़े बड़े महारथी बुजुर्ग जो हमें आदि काल से चली आ रही विभिन्न कथाएं सुनाया करते थे, एक दूसरे को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए प्राण उत्सर्ग कर रहे थे। मनुष्य बेरहमी से उनकी देह काट रहे थे। उनके कटे टुकड़ों को ट्रकों में लादकर दूर भेजा जा रहा था। आतताइयों ने एक बड़ा सा आरा लेकर मेरे पास स्थित मेरी माँ के शरीर पर चलाना प्रारंभ कर दिया। माँ दर्द से कराए उठी। उसके शरीर से बह रहे रक्त को देख मैं बिलख उठा। काश ईश्वर ने हम पेड़ पौधों को इस संसार में भेजने के साथ ही हमें अपनी रक्षा स्वयं कर पाने लायक भी बनाया होता। काश वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु जैसा कोई आज होता जो इन आतताइयों को हमारे खून और आंसू को इस समय पढ़ा सकने में समर्थ होता। अब मेरी माँ के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे, उनकी आंखें झपक रही थीं। उनका आधा शरीर कट चुका था, वह किसी भी पल लहराकर गिर सकती थी। दो मोटे अर्धनग्न काले आतताई बेरहमी से अपना आरा उनके कोमल शरीर पर चलाए जा रहे थे। चारों ओर हमारे ही लोगों की लाशें छत बिछत लहूलुहान शरीर कटे पड़े थे। आकाश में सूर्य तेजी से चमक रहा था। वह धारा जो कभी सूर्य की किरणों को तरसती थी आज पूरा प्रकाश पाकर भी दुखी थी। उसे भी हम सबसे बिछोड़ने का बेहद अफसोस है, परंतु हाय उसे भी विधाता ने सिवाय अफसोस करने के कुछ नहीं दिया जो विरोध कर पाती। क्या विधाता ने मनुष्य के सिवा किसी को भी विरोध करना नहीं सिखाया? विधाता ने ऐसा न्याय क्यों किया? आखिर क्यों उसने हम सबको अपनी रक्षा और विरोध कर पाना नहीं सिखाया? काश बेटे, माँ की कारुणिक पुकार सुन मैं चौंक उठा। वह कराह कर मेरे ऊपर मेरी रक्षा करने के लिए झुक गई थी। मैं बिलख उठा। माँ की बेबस आंखों में मैंने झांक कर देखा, जिसमें अपने से ज्यादा मेरी चिंता थी। उसने मेरी आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछ मुझे अपने आंचल में समेट लिया। बेसुध होने से पहले मैं तेज स्वर में माँ से लिपटते हुए चीख पढ़ा, माँ, माँ बचाओ, माँ मुझे बचाओ।
1: बचाओ, अभी आप ये कहानी सुन रहे थे जिसे प्रस्तुत कर रहे थे महेंद्र भेष में। इसके साथ ही हिंदी कार्यक्रम का आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए अनिमेश मुखर्जी के गाए गीत और भजनों का। पहले आपको सुनवाते हैं अनिमेश मुखर्जी की आवाज़ में ये भजन।

अभी आप अनिमेश मुखर्जी की आवाज़ में ये भजन सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के गाए सूर्या फिल्म के गीत से। संतोष आनंद की कलम से निकले इस गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

चित्रपट से कार्यक्रम का अगला नगमा आप सुनेंगे दो आंखें बारह हाथ फिल्म से। इस गीत को सुनील ने लिखा है, जिसकी धुन बनाई है बप्पी लहरी ने, और ये गीत आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए दम लगा के हिस्सा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृहमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने

0: और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
1: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ इंजन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक प्रदान करता है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है।

0: दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
3: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
4: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की। दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के

0: pocket and light rainfall accompanied by thunderstorms and lightning tonight. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asks CMs of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex-fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol-petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number 1, while Priya Ghangas and Vishwanath Suresh enter top 3. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। भारत और वेनेजुएला ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। नीज तवानाई, तिजारत और सेहत देखभाल के शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरकी रियासतों के वज़राए आला को हिदायत दी है कि वो नई नस्लों के लिए AI, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज करें। आलमी योग आसन स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप अहमदाबाद में शुरू हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि ये योग आसन को एक आलमी खेलकूद की शनाख्त फराहम करेगी। भारत ने इथेनॉल और पेट्रोल मिलाकर बने ईंधन से चलने वाली पहली फ्लेक्स फ्यूल मुसाफिर गाड़ी का आगाज़ किया है। जुनूब मगरबी मानसून केरलम पहुंच गया है। IMD ने आइंदा 7 दिनों में केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आलमी बॉक्सिंग दर्जाबंदी में भारत की जैस्मिन लेम्बोरिया आलमी नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं, जबकि प्रिया घंगास और विश्वनाथ सुरेश टॉप 3 में पहुँच गए हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला के कारगुजार सदर डेल्सी रॉड्रिक्स के साथ बातचीत की। दोनों लीडरों ने बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। नीज तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, सेहत देखभाल और ऑटोमोबाइल के अलावा दीगर शोबों में तआवुन के नए मौके की जस्तजू की। बातचीत के बाद मीडिया से खिताब करते हुए मशरिकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि दोनों फरीकों के दरमियान आज के तबादला ख्याल में दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में तशराकत पर तवज्जो मरकूज की गई। इन दिनों वेनेजुएला के तवानाई के शोबे में बुनियादी तब्दीली रुनुमा हो रही है। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर भी तबादला ख्याल किया। फरीकैन ने बाहमी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने और आलमी जुनूब के मफादात को आगे बढ़ाने के अपने अहद का इरादा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने शुमाल मशरक में तशद्दुद के अहद को ख़त्म कर दिया और इस खित्ते को तनाज़ों के एक मरकज़ से बदल कर मौाक़े का मरकज़ बना दिया है। शुमाल मशरकी कौंसिल NEC के 73वें मुकम्मल इजलास में शिरकत के बाद जनाब शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि आज NEC खित्ते की तरक्की के लिए कलीदी मनसूबाबंदी के एक इदारे के तौर पर काम कर रही है, साथ ही लोगों की उमंगों को पूरा कर रही है और सकाफत को फरोग दे रही है। NEC की मीटिंग में वजीर दाखिला ने वज़राए आला को हिदायत दी कि वो अमन व कानून पर तवज्जो करने के बजाय शहरियों के हकूक के तहफ्फुज़ पर तवज्जो करें, क्योंकि शोरिश पसंदी अब एक मसला नहीं रहा है। उन्होंने रियासतों को हिदायत दी कि वो नई नस्लों के लिए मस्नूई जिहानत, मशीनी आमोजिश और ब्लॉक चेन बुनियादी ढांचे की तामीर करें। जनाब शाह ने यह भी कहा कि ऊद की लकड़ी, गैर मुल्की तजारत और सेहत से मुतालिक सियाहत के शोबों में शुमाल मशरक के इम्कानात तलाश करें। शुमाल मशरकी खित्ते की तरक्की के महकमे के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी NEC के इजलास में शिरकत की और कहा कि सभी लीडर इस अज़्म के तईं मुत्तहिद हों कि एक ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा खुशहाल शुमाल मशरक की तामीर की जाए। NEC के मुकम्मल इजलास में अहम लीडर यकजा हुए, जिसमें पूरे शुमाल मशरकी खित्ते के गवर्नर साहिबान, वज़राए आला और पॉलिसी साज शामिल हैं। इस इजलास से मुतालिक बातचीत करते हुए मेज़बान वज़ीर आला

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जहां संगीत बनता है दिलों की जुबान और आपके पत्र और ईमेल बनते हैं हमारी महफिल की शान। मैं हूं आपका मेज़बान पंकज शुक्ला और अगले आधे घंटे तक हम साथ मिलकर सुनेंगे हिंदी फिल्मों के सदाबहार मधुर और दिल को छू लेने वाले गीत। इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे आपके भेजे हुए पत्रों और ईमेल में लिखी फरमाइशें।

तो तैयार हो जाइए संगीत के उस सफर के लिए जहां हर गीत किसी श्रोता की पसंद है और हर धुन किसी दिल की आवाज। अब आपको बता दें अपनी फरमाइश भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com।

आइए शुरू करते हैं आज के पहले मेल से आपकी फरमाइशों का सिलसिला। और ये पहली मेल हमें मिली है शिवाजी नगर वडाली देशमुख से। राजेश खोबड़े जी ने ये मेल हमें भेजी है। आपके साथ कुछ और नाम हैं, शिवसागर, इंदिरा ताई, छकुली ताई, दीपाली, सुनैना, स्वराज, तनुज। आपने सुनना चाहा है कुछ कुछ होता है फिल्म का गीत। आपको ये गीत सुनवाऊं उससे पहले बता दूं कि इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है छत्रपति संभाजी नगर से। राजेश सांवले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश की। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत है कुछ कुछ होता है फिल्म से।

आपकी पसंद कार्यक्रम की अगली मेल हमें मिली है ग्राम पहाड़ीपुर जिला रायबरेली से। हमारे नियमित श्रोता हैं रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार भाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर साहू, रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति। आप सबने सुनना चाहा है सूर्या फिल्म का गीत, और इसी गीत के लिए एक और मेल हमें मिली है गुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से। लिखने वाले हैं सुरेंद्र संधु, अनीता संधु, रोहित संधु, रितेश संधु, शिखा संधु, प्रीतिशा संधु और मैक्स। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत जो आ रहा है आपके रेडियो सेट पर सूर्या फिल्म से है।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में नगीना फिल्म का गीत। इस गाने की फरमाइश हमें भेजी है विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी ने सांडी जनपद हरदोई से, और इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर सिंह छिंदा, जसवीर सिंह जस्सी, सीता और गीता की। तो लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत नगीना फिल्म से।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला नगमा आप सुनेंगे मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ों में। ये गीत सुनना चाहा है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है खुर्जा उत्तर प्रदेश से, तिलक राज अरोड़ा की, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत मधुमती फिल्म से।

आपकी पसंद कार्यक्रम में अगली जो फरमाइश हमें मिली है वो भेजी है ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला लखीमपुर खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी ने। इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिली है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे ने। आप सब सुनना चाह रहे हैं धनवान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडिकर की आवाज़ में। और अभी अभी इसी गाने के लिए एक और मेल हमें मिल गई है, ये है तिलक राज अरोड़ा जी की। तो सुनिए आप सबकी पसंद का ये गीत जो आ रहा है बाप के रेडियो सेट पर।

तो श्रोताओं, धनवान फिल्म के इस गीत के साथ ही आज के आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आपके पत्रों, ईमेल और प्यार भरे संदेशों ने हमारी इस संगीत यात्रा को और भी यादगार बना दिया। हमें उम्मीद है कि आज सुनवाए गए गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा। आप भी अपनी फरमाइशें, सुझाव और संदेश हमें पत्र और ईमेल के माध्यम से भेजते रहिए। हो सकता है अगली बार आपके पसंदीदा गीत इस कार्यक्रम का हिस्सा बन जाए। मैं पंकज शुक्ला आपसे अनुमति चाहता हूँ। फिर मिलेंगे नई फरमाइशों, नए संदेशों और बेहतरीन फिल्मी गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और संगीत के साथ जुड़े रहिए।

सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ये आकाशवाणी है। आज के राष्ट्रीय क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इंटरनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। वी प्रेजेंट मैथिली फोक सॉन्ग बाय सौम्या मिश्रा, एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। सौम्या मिश्रा हेल्स फ्रॉम मधुबनी बिहार। She is a gifted folk vocalist, acclaimed for her soulful renditions in Maithili, Hindi and Bhojpuri. Her music reflects a deep connection to the cultural traditions of Mithila, while carrying a freshness that appeals to contemporary audiences. Sowmya Mishra has performed at numerous prestigious cultural festivals and stage programs across the country, enchanting listeners with her melodious voice and heartfelt expression. In today's program, the accompanists are Haribhushan Jha on tabla, Lalit Kumar on octopad, Aman Krishan on dholak, and Shashibhushan Jha on keyboard. She begins her rendition with a composition titled Chanan Bhel.

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती, जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा। We will now listen a composition titled कोहके बारी कोयलिया हो रामा।

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नूर बहैया।
1: That was a मैथिली composition performed by सौम्या मिश्रा. She concludes her rendition with a composition titled बाटे हेरी दिन काटी नोर बहैया.

0: होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अवन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशिभूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बेहला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह और गान पर के संतोष कुमार राव, सेक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना, जिसका बोल है मन हृदय जेते सबु कथा तम आगे प्रिय कही देली। मतलब है अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

चलिए अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़िए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थीबा कथा मानव तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आउ किछि जाने नाही। मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूं एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके बाद अंग्रेजी में।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
2: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉ. अलका गुर्जर और डॉ. सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चंफाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।

0: रिले करेंगे।
1: भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर। पार्टिसिपेंट्स आर डॉक्टर वी के पॉल, फॉर्मर मेंबर नीति आयोग, एंड डॉक्टर एन के अरोड़ा, प्रेसिडेंट एम्स बिलासपुर। मॉडरेटर इज प्रियंका अरोड़ा।
3: स्वस्थ नागरिक किसी भी सशक्त और समृद्ध राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम के मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत ने पिछले 12 वर्ष में स्वास्थ्य क्षेत्र में परिवर्तन की एक नई गाथा लिखी है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, गरीबों के लिए उपचार की बेहतर व्यवस्था, आधुनिक अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों का विकास तथा डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ता दायरा, इन सभी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा और नई गति दी है। यही परिवर्तन आज करोड़ों भारतीयों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का आधार बन रहे हैं। मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति विषय पर आज हम स्वास्थ्य क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वी के पॉल और एम्स बिलासपुर के अध्यक्ष डॉक्टर एन के अरोड़ा। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
4: बहुत बहुत नमस्कार।
3: तो जी, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर पॉल, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले 12 वर्ष में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में आए सबसे बड़े संरचनात्मक बदलावों को आप किस रूप में देखते हैं?
4: पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विजनरी लीडरशिप में स्वास्थ्य क्षेत्र में अनप्रेसिडेंटेड जो कभी नहीं हुए वो रिफॉर्म्स हुए और वो बदलाव आया है। इसके बहुत सारे डायमेंशन है, लेकिन मैं सर्वोपरि अगर उन डायमेंशन को देखूं तो जो एक्सेस टू हेल्थ केयर बढ़ी है
3: जी,
4: और जो हेल्थ केयर की वजह से जो बोझ पड़ता था नागरिक पे, खासकर जो गरीब परिवार है, इन दोनों में सुधार लाने के लिए, एक्सेस को बढ़ाने के लिए और जो आर्थिक बोझ स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पड़ता था उनमें जो कमी आई है, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि वो है। इसको हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की नज़र से भी देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं मिले, और जब स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं तो व्यक्ति की और सिटीजन जेब के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। ये जो हुआ है वो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और उसी के साथ साथ उसी बजट स्पीच में 2018 के बजट के अंतर्गत आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अब उनको हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहते हैं
3: जी,
4: जो हमारी प्राइमरी केयर की व्यवस्था बनी और जो सेकेंडरी और टर्शरी केयर में हेल्थ सर्विसेज को पहुंचाने के लिए जो एक मैकेनिज्म बना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत, मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जोड़ के देखूं तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ जो सुधार और जो जन जन तक इसका फायदा हुआ है उसको मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ।
3: जी हाँ, यह भूतपूर्व पहल रही है और आज भी विश्व में सबसे बड़ी योजना के रूप में मानी जाती है। डॉक्टर अरोड़ा, अगर आपसे जानना चाहें तो जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 12 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं?
5: जैसे कि प्रोफेसर पॉल ने कहा कि एक आम व्यक्ति के जेब से आज से 12 वर्ष पहले अगर वो 100 रुपए डॉक्टर की इलाज पे या अपनी किसी बीमारी के इलाज पे खर्च करता था तो उस समय 60 रुपए उसकी जेब से जाते थे, आज ये घट करके 35-40 रुपए के बीच में आ गया है। ये एक आमूल परिवर्तन है। और दूसरी चीज जो डॉक्टर पॉल कह रहे थे, जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनको इस स्ट्रैटेजिक तरीके से रणनीतिक तौर पर इनको बनाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को इस देश में 2 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलने की जरूरत नहीं होती। यानी कि 2 किलोमीटर का जो दायरा है, रेडियस है, उस बीच में एक आयुष्मान मंदिर है
3: जी।
5: तो जिसको हम एक्सेस है या स्वास्थ्य सेवाओं की प्रति जो उसकी प्राप्ति के लिए उसकी जो सुविधा है वो उसमें बहुत जबरदस्त परिवर्तन किया गया है। दूसरा एक चीज और है, मेड इन इंडिया या भारत में निर्मित जो एक पूरा का पूरा अभियान चला है उसके अंतर्गत कई चीजें हुई हैं। और मैं यहाँ पर टीकाकरण क्षेत्र का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि अब इस देश में 100% जो टीके हैं वो भारतीय दिए जाते हैं
3: जी।
5: कोविड के दौरान जो 228 करोड़ टीके दिए गए

0: वो पूरे के पूरे भारत में निर्मित थे, और उसकी वजह से जो देश में बचाव हुआ उसके बारे में जितना कहा जाए वो कम है। एक और चीज करी गई है और जो मेड इन इंडिया की तरफ बहुत बड़ा कदम रहा है कि अनुसंधान में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिससे कि हमारी इलाज करने की तरीके, इलाज करने के लिए दवाइयां, इलाज करने के लिए वैक्सीन और किसी भी बीमारी के लिए अब भारत में सुविधाएं उपलब्ध कराना, उसमें आशातीत वृद्धि हुई है। आज से 12 साल पहले लोगों को बाहर जाना पड़ता था, अब किसी भी इलाज के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आए।
1: जी बिल्कुल डॉक्टर अरोड़ा, और हम जब आयुष्मान भारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जाती है, तो ये किस तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र में गेम चेंजर साबित हुई है डॉक्टर पॉल?
2: हमारे देश में सुविधाओं की कमी रही कई सालों तक, उसके साथ साथ में सिटीजन को अपने आप को स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने के लिए जो खर्चा होता था उसका समाधान का तरीका निकाला गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 60 करोड़ हमारे जो नागरिक हैं, 60 करोड़
1: जी,
2: उनको 5 लाख का कवरेज हर साल, उनके परिवार के अंदर 5 लाख का कवरेज जो है वो सेकेंडरी टर्शरी केयर के लिए दाखिला जब होता है अस्पताल में तो वो सरकार कवर करती है
1: जी।
2: और इसके साथ साथ बहुत सारे राज्यों ने और भी अपने अपने नागरिकों को एक्स्ट्रा भी जोड़ लिया है। अब ये जो सेवाएं दे जा रही हैं ये लगभग 1900 से ज्यादा पैकेजेस की तरह से है कि आपको डेंगू का बीमारी हुई तो एक पैकेज डेंगू का है, आपको घुटने के रिप्लेसमेंट की जरूरत है एक पैकेज है। आप सोच सकते हैं कि हमारे सबसे ज्यादा जो मार्जिनलाइज्ड हमारे नागरिक भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उनको टर्शरी केयर में हार्ट की सर्जरी, आप नी रिप्लेसमेंट और इवन किडनी ट्रांसप्लांट और बुखार की बीमारी, एनकेफेलाइटिस, स्ट्रोक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ब्लड की बीमारियां, कैंसर, इन सब बीमारियों को उनको कैशलेस, उनको सामने पैसा नहीं देना है और उनको सेवाएं मिल रही हैं 30,000 से ज्यादा अस्पतालों में, जिनमें कि कम से कम 12,000 प्राइवेट हॉस्पिटल भी जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ दिया गया एक आम नागरिक के लिए, ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन है। आयुष्मान भारत पीएमजे के अंतर्गत हर रोज 85 से 90 हजार व्यक्ति अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और उनका मुफ्त इलाज हो रहा है, रोज 80 से 90 हजार। अभी तक 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे दाखिले हो गए हैं, 10 करोड़ से ज्यादा। देखिए कितने लोगों को ये फायदा कैशलेस कवरेज का जो हुआ है। अगर हम देखें कि इससे कितनी बचत हुई है समाज को, देश के नागरिकों को, तो ये आंकड़ा आता है 1,52,000 करोड़ का फायदा जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें कि इससे मेरे को रीच कैसे बढ़ी, तो जब शुरू हुआ था तो जो बेनिफिशरीज है, लाभार्थी हैं, उनमें लगभग एक 0.7%, less than 1% ही बेनिफिशरीज का फायदा ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम मैच्योर हुआ, आपको जान के खुशी होगी कि अब 2 से 2.5% लोग, मतलब कि 2.5 से 3 गुना बेनिफिशरीज को एक्सेस सब मिल रहे हैं। तो लोग बैठे रहते थे, अब इसको अपनी सेवाओं का को लेके जाते हैं। कैंसर से पीड़ित व्यक्ति जो है, एक स्टडी हमें दिखाती है कि जिनको पीएमजे का कवरेज नहीं है वो टाइम पे पहुंचते हैं 30% लोग सिर्फ, और आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वो 90% लोग टाइम पे पहुंच पा रहे हैं सेवा, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास ताकत है इलाज लेने के लिए। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि 2024 से इस कार्यक्रम के साथ में 70 और 70 से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों जोड़ दिया गया है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अमीर गरीब सबके लिए। तो ये 6 करोड़ नागरिक हैं जिनको कि एक्स्ट्रा एक आयुष्मान भारत में जगह मिली है। ये लगभग 4.5 करोड़ फैमिलीज परिवारों को बिलोंग करते हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम के अंतर्गत वयो योजना जो है पीएमजे की, उसके साथ जोड़ के वयोवंदन योजना में ये समावेश हुआ है। तो जो सबसे नीडी लोग हैं उनको, क्योंकि उस उम्र पे ज्यादा बीमारियां होती हैं, तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो उस समाज को प्रोटेक्ट करना और इस स्कीम के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ी बात है और उपलब्धि है। ये इतने बड़े स्केल के ऊपर रोज दाखिले हो रहे हैं और उन सबका इलाज हो रहा है।

0: और इससे गरीब की जेब पे बोझ कम हुआ है, लेकिन ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि उनको एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर मिलना शुरू हो गया है।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर अरोड़ा, अगर मैं आपसे बात करूं, आप लंबे समय से टीकाकरण कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष और कोविड टीकाकरण अभियान ने भारत के जो सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र को किस प्रकार मजबूत किया है?
2: ये जब आप टीकाकरण की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में इस चीज को सराहा गया है। 2014 में कुल 63% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण होता था और आज ये बढ़कर के 93-94% हो गया है। अभी NFHS का डेटा 2 दिन पहले आया है 2024-25 का, एक्चुअली उसमें डेटा 22-23 का है।
1: जी, जी।
2: और उसके हिसाब से 88.7% बच्चों में संपूर्ण टीकाकरण उपलब्ध हो रहा। और इसका कारण, और आपने मिशन इंद्रधनुष का जो उदाहरण दिया कि जो बच्चा रह जाए जिसको टीका नहीं मिला हो उसको देने का प्रयास किया गया, और साथ ही साथ गर्भवती महिलाएं जिनको टिटनेस का टीका नहीं मिला उनको भी देने का। लेकिन ये टीका खाली कहने भर से नहीं है। इस कार्यक्रम में जो नवाचार किया गया कि इस देश का हर बच्चा जो टीकाकरण के लिए उसका अधिकार था उसको मैप आउट किया गया, उसकी पहचान की गई और उस तक पहुंचने का प्रयास किया गया। और यह जो प्रयास था जिसको हम माइक्रो प्लानिंग कहते हैं, ये हम सीखे खास तौर पे जब हम पोलियो उन्मूलन कर रहे थे। पूरे के पूरे टीकाकरण में हमारा अब हर बच्चा, हर महिला जो है हमारे एक तरीके से हाथ पे लिखा रहता है। और अब इसको आगे ले जाकर के UN IT प्लेटफॉर्म है जिससे कि हर एक एक हमारी रजिस्ट्री बन गई है जिसमें बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। लेकिन इसका मुख्य लाभ जो हुआ है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुदृढ़ता आई है, क्योंकि अब जब मैं बच्चों के तक पहुंचता हूं, गर्भवती महिलाओं तक पहुंचता हूं, तो खाली टीकाकरण नहीं है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित बाकी जो समस्याएं हैं उनको भी वहां तक लेके जाने का प्रयास किया जा रहा। साथ ही साथ जो ये माइक्रो प्लान वाला सिस्टम है इसका प्रभाव हमारी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के द्वारा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये खास तौर पे 2 बड़ी बीमारियां हैं
1: जी।
2: ये भी अपने आसपास के जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर के चारों तरफ लगभग 5,000 की पॉपुलेशन होती है वहां तक पहुंचाने में भी इसी उपक्रम का उपयोग किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के जो भी नवाचार किया जा रहा है टीकाकरण में उसका प्रभाव खाली बच्चों की और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं पर सुदृढ़ नहीं हुआ है लेकिन बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रभाव पड़ा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इस समय जो भारत का टीकाकरण कार्यक्रम है वो हमारी सारी की सारी सरकारी जो भी हमारे कार्यक्रम है, अभियान है, उसमें सबसे ज्यादा कवरेज या पहुंच जो है टीकाकरण कार्यक्रम की है। इस देश के लगभग 97% जो टीकाकरण के अधिकारी हैं उन तक कम से कम एक टीका लग चुका है। तो यही एक रास्ता है जिससे कि बाकी जो सेवाएं हैं उनको भी पहुंचाया जा सकता है।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अभी डॉक्टर अरोड़ा ने आयुष आरोग्य मंदिरों की बात की और बहुत ही महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिहाज से। और अभी देश में 1,70,000 से अधिक हमारे यहाँ आयुष्मान आरोग्य केंद्र हैं। तो अगर बात करें आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसका विस्तार किया जा रहा है ताकि जो आयुर्वेद है और आयुष उपचारों को उसमें शामिल किया जा सके। तो सरकार कैसे आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा को एक साथ लेकर चल रही है?
0: आपके सवाल में 2 हिस्से हैं
1: जी।
0: पहले मैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की जो बात कही है उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूंगा
1: जी।
0: किसी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं में जो प्राइमरी केयर होती है, प्राथमिक सेवाएं जो होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में प्राथमिक सेवाओं में जो सुदृढ़ता आई है, हमारे सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालों से काम निभा रहे थे बिल्कुल लिमिटेड तरीके से, जितना भी कर पा रहे थे लिमिटेड था। 2018 में आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिनको आज हम आयुष्मान आरोग्य मंत्र कहते हैं, उनकी संरचना, उनकी सोच लेके आए, जो एक लिमिटेड प्राथमिक सेवाएं होती थी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ या संक्रमित बीमारियों की, इन्फेक्शियस बीमारियां, कम्युनिकेबल डिजीज की, वो तो करना ही है, उसमें भी और डेप्थ और इंटेंसिटी लेके आए। लेकिन जो नहीं हो रहा था, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी इतनी प्रोमिनेंट है, कैंसर, अब ये सेवाएं प्राथमिक सेवाओं में आयुष्मान आरोग्य में निहित हो गई।

0: कि हम इनको एक सीमित तरीके से, सीमित इन द सेंस कि पीरियोडिक, इतने साल के बाद हर व्यक्ति का एक चेकअप होगा, हर साल ब्लड प्रेशर चेक होगा, हर साल शुगर चेक होगी डायबिटीज के लिए, और कैंसर तीन साल में, पाँच साल जैसा प्रोटोकॉल है, उस पर तीन कैंसर, मुंह का कैंसर, कैंसर सर्विक्स, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर लेडीज में, और ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, इसकी सबकी स्क्रीनिंग होगी। इसके अलावा मेंटल हेल्थ को साथ में जोड़ा गया, आई आँख का इलाज, ENT कान का इलाज, नाक का इलाज, डेंटल हेल्थ, फिर एल्डरली केयर को भी जोड़ा गया इसमें। तो 12 पैकेजेस बने, शुरू के 5 पैकेजेस, 4 पैकेजेस के बजाय उसका आयाम बढ़ गया। अब और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 170,000 ये बने, उसमें दो तरह के हैं, एक सब सेंटर लेवल का होता है 6,000 पॉपुलेशन के लिए, और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर का होता है, लगभग 30,000 का उसका दायरा होता है। कुल मिला के ये यूनिट बन जाता है, एक PHC वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर, और 5 या 6 या 4 या 5 सब सेंटर वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन जाता। अब बिल्कुल आश्चर्य भी होगा आपको, 120,000 नए मिड लेवल प्रोवाइडर्स, इनको करने के लिए टीम को बढ़ाया गया। हमारी पुरानी टीम थी आशा वर्कर थे एक गांव में लगभग 1,000 की पॉपुलेशन पे, फिर हमारे पास ANM थे, कहीं कहीं मेल हेल्थ वर्कर होता था, लेकिन 120,000 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को लगाया गया है। इतनी रेवोल्यूशनरी बात है कि इतने संख्या में एक ह्यूमन रिसोर्स को प्राइमरी केयर के पीछे लगाया गया, और ये टिपिकली BSc पास हमारी नर्सेस होती हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और सब जगह पे टेलीमेडिसिन का प्रावधान हुआ
1: जी।
0: सब जगह पे 100 से ज्यादा दवाइयाँ, सब सेंटर वाले में 105 दवाई और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 170 फ्री मेडिसिन, सब सेंटर वाले में 14 डायग्नोस्टिक टेस्ट फ्री, और PHC वाले में 42 से ज्यादा फ्री डायग्नोस्टिक टेस्ट का प्रावधान किया गया है। तो सारे समाज को, सारे जितनी पॉपुलेशन है उसको एक सूत्र में बांध के कमिटमेंट है कि हम इनका चेकअप करेंगे, कमिटमेंट है कि हम उनको याद दिलाएंगे कि दवाई आपको फ्री मिल रही है, दवाई जब खत्म होती है तो अगली दवाई आप लीजिए, जरूरत होगी तो टेलीमेडिसिन के द्वारा जोड़ा जाएगा, और जो बाकी सेवाएं शुरू से हैं, इम्यूनाइजेशन है, मदर चाइल्ड हेल्थ है, TB कंट्रोल, लेप्रसी, ये जो प्रोग्राम वो तो चल रही है, उनमें भी ताकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस प्लैनेट पर सबसे बड़ा जो प्राइमरी हेल्थ केयर का जो एक रेवोल्यूशनरी काम हो रहा है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, वो आज हमारे देश में हो रहा है, और ये बहुत दूर तक हमें लेकर जाएगा, क्योंकि क्रॉनिक बीमारियों को बचाने का तरीका सिर्फ यही होता है कि या तो वैसे ही हम अपने आप को, अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, नहीं तो हम डिटेक्ट करें, और प्राइमरी हेल्थ के द्वारा डिटेक्शन भी हो, प्रिवेंशन भी हो, हेल्थ प्रमोशन भी हो, और जरूरत पड़े तो फिर ट्रीटमेंट भी हो, जिसमें फिर PMC जुड़ जाता है।
1: बिल्कुल, देखा जाए इतनी बड़ी आबादी है हमारे जैसे देश की, तो घर घर जाकर इस चीज की जांच करना और उनको बताना, रोकथाम के लिए उपाय बताना, तो बहुत बड़ी बात है।
0: दूसरी बात आपने कही कि हमें ट्रेडिशनल मेडिसिन को जोड़ा गया, बहुत बड़ी बात है
1: जी।
0: ये हिस्टोरिक जब देखा जाएगा तो हिस्ट्री में ये माना जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के आने के बाद में जो भारत का अपना सिस्टम थे, आयुर्वेद था हमारा, सिद्ध है हमारे पास, यूनानी है, ये सब हमारे भारत में पनपे हुए सिस्टम है, ये इन सब की जो योग है वो भी स्वास्थ्य के लिए भी और स्वास्थ्य से भी ऊपर का है, वो उन सब को एक मेन स्ट्रीम में लाना, उनको लिए बजट प्रदान करना, उनके सिस्टम को स्ट्रेंथन करना और उनको एक इंटीग्रेटिव अप्रोच में जोड़ना, और को जो बढ़ोतरी मिली है वो बहुत बड़ी बात है कि दोनों का समावेश हो, आधुनिक कार्यक्रम, आधुनिक पद्धति का भी हो और ट्रेडिशनल का भी हो, ताकि दोनों मिलके एक व्यक्ति को, एक नागरिक को वो दे पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा, स्वास्थ्य रहे, बीमारियां नहीं हो, मन भी अच्छा हो, तन भी अच्छा हो और आत्मा भी अच्छा हो, इन सब का जो जोड़ इंटीग्रेटिव अप्रोच में लेके आए हैं, ये भारत का मॉडल जो है ये दुनिया देखेगी। और आयुर्वेद का जो प्रचलन है वो बड़ा है, आयुर्वेद की जो दवाइयाँ हैं उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है, हमारे एक्सपोर्ट बढ़े हैं, और बिल्कुल ये मेन स्ट्रीम में दोनों को ले जाने का जो माहौल बना है और जो ताकत आई है, ये भी अनप्रेसिडेंटेड
1: है। बिल्कुल, एक साथ ले जाना तो बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर अरोड़ा, हम जैसे बात कर रहे थे टीकाकरण की भी, तो इन दिनों सरकार जो कैंसर है उसकी डिटेक्शन, अर्ली डिटेक्शन पर, स्क्रीनिंग पर बहुत ध्यान दे रही है, और खासकर जो सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है, तो आप आज के परिप्रेक्ष्य में इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं?
2: जो HPV वाला टीकाकरण है, और इसके अलावा डॉक्टर पॉल ने 3 कैंसर्स के बारे में बताया, एक तो महिलाओं के बच्चेदानी के मुंह वाला कैंसर जिसको सर्वाइकल कैंसर है, उसी के

0: ये वैक्सीन है ये।
1: जी
0: उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर और मुंह का कैंसर और एक तीसरे कैंसर के लिए वैक्सीन ऑलरेडी दी जा रही है जो हेपेटाइटिस बी है, उसकी वजह से लिवर का कैंसर हो जाता है। तो कैंसर की तरफ जो है, क्योंकि जैसे कि हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय में हम सब लोगों का ध्यान बहुत अधिक आकर्षित हुआ है कैंसर की बीमारी की तरफ, उसकी स्क्रीनिंग के लिए, जल्दी पहचान के लिए, फिर इलाज के लिए, और इस दिशा में बहुत सारा काम किया गया है। तो एक तो स्क्रीनिंग के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया,

0: आप में एक गजब की चीज है कि और ये एम्स बड़े शहरों में नहीं करे गए। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में देवघर करके एक जगह है, कई लोगों को मालूम भी नहीं होता, मतलब
1: जी
0: ऐसी जगह किया है जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन या पिछड़े इलाकों में किया गया है। हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में है, इसी तरीके से JNK में दो हैं और बाकी पूरे कंट्री में इस तरीके से करे गए हैं, और खास तौर पे ऐसे क्षेत्रों में किया गया है एम्स को स्टैब्लिश, जहां से ज्यादा लोगों के पास टर्शरी केयर, जो सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा
1: जी
0: उपलब्ध हो, और इनमें कैंसर के इलाज के लिए बिल्कुल आधुनिकतम मशीनें उपलब्ध हैं। इन सारे में ये सब नए इंस्टीट्यूशन है, उसके बावजूद कैंसर की तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान इस तरीके से किया जा रहा है कि जो क्षेत्रीय और स्थानीय समस्याएं हैं, और उसमें हमारे कुछ कैंसर स्थानीय तौर पे बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो लेरिंजियल कैंसर, मुंह का कैंसर बहुत कॉमन है, और सर्वाइकल कैंसर भी बहुत ज्यादा है। तो उन क्षेत्रों में उन पे विशेष तौर पे ध्यान दे करके उसकी स्क्रीनिंग है, उसके बचाव के लिए क्या तरीका किया जाए, उसके इलाज के लिए क्या किया जाए। और अब ये जो HPV वैक्सीन के बारे में आपने कहा, ये हमारी बच्चियों के लिए 9 से 14 साल की लड़कियों के लिए है, और ये वैक्सीन इतनी सुरक्षित है, और वैक्सीन मिलने के बाद कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या महिलाओं के बच्चेदानी का मुंह का कैंसर प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। इनफैक्ट WHO की तरफ से ये मुहिम चलाई जा रही है कि ये वैक्सीन के साथ साथ अगर हम स्क्रीनिंग और इलाज करते हैं तो अगले 15-20 साल में इस समस्या से निजात मिल सकती है। तो कुल मिलाकर कैंसर की तरफ जो है बहुत बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। कुछ बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बाकी सरकार जिनको सहायता कर रही है, जैसे टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इनके चारों तरफ पूरे देश में शाखाएं बनाई जा रही हैं, और कुल मिलाकर हर एक प्रदेश में कैंसर का एक रीजनल सेंटर बनाया गया है,
1: जी
0: जिससे कि लोगों को दूर दराज चल करके जाने की जरूरत ना पड़े और घर के पास ही ये सुविधाएं उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर हम आज देखें, आज भारत डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो जो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है और जो स्वास्थ्य आईडी जैसी पहल है, वो आम नागरिक के लिए जो स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह से सरल और प्रभावी बना रही है?
2: भारत का जो डिजिटल हेल्थ की तरक्की हुई है वो दुनिया में बिल्कुल अलग और शायद सबसे आगे की तरक्की की तरह मानना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन शुरू किया गया और उसके जो डिफरेंट स्वरूप हैं उसमें एक है कि हमारे पास हर नागरिक का इवेंचुअली एक डिजिटल आइडेंटिटी होगा, उसको हम आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कहते हैं, आभा। तो आपको हैरानी होगी 87 करोड़ व्यक्तियों का, नागरिकों का आभा आइडेंटिटी आज हमारे पास अवेलेबल है। 87 करोड़, 140-145 करोड़ में से। इसका क्या फायदा है कि इस सिस्टम के द्वारा, इस आइडेंटिटी के द्वारा जो मेरे हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं वो उसके ऊपर लोड हो सकते हैं, वो पुराने नए अगले सब जुड़ सकते हैं, और जब किसी ने इसको देखना है और प्रस्तुत करना है और रिकॉर्ड की तरह भी है तो वो डॉक्टर साहब उसको देख के फैसला कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जैसे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स हमारे और से और लोड होते जाएंगे, ये एक इनोवेशन का भी जरिया बनेगा, और इसमें बहुत सेवा की ईज जो है, ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ एक्सेसिंग हेल्थ, वो अचीव होगी। इसमें फिर जो टेली मेडिसिन में जो तरक्की हुई है, जैसे मैंने बताया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टेली मेडिसिन हो गया है, हमारे पास ई संजीवनी एक टेली मेडिसिन है, रोज हजारों कंसल्टेशन उसके ऊपर होती है, हजारों, और उसमें इतने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। उसके अलावा प्राइवेट स्पेस में टेली मेडिसिन हो रही है, इंस्टीट्यूशंस में एक रेवोल्यूशन आ गई है टेली मेडिसिन। उसके और डायमेंशन भी है कि हॉस्पिटल की रजिस्ट्री बनेगी, हेल्थ प्रोफेशनल्स की रजिस्ट्री बनेगी, वो सब काम हो रहा है। लेकिन जो डिजिटल हेल्थ है वो एक हिस्सा बन चुका है हमारे देश में हेल्थ सिस्टम का। हम डिजिटल हेल्थ को इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम्स को लागू करते हैं, हम बेनिफिशरीज को चिन्हित करते हैं, हम बेनिफिशरीज को फायदे के साथ जोड़ते हैं, उनको ट्रैक करते हैं। सो डिजिटल हेल्थ में जो इतना इतना बदलाव आया है और जो उसकी वजह से हेल्थ की एक्सेस बढ़ी है, एक्यूरेसी बढ़ी है, और जो इसका फ्यूचर पोटेंशियल है वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। और इसके आगे चलते हुए जब इस टेक्नोलॉजी को हम AI के साथ लिंक करेंगे, इस टेक्नोलॉजी के और सॉल्यूशंस होंगे, तो मुझे लगता है कि भारत बिल्कुल अग्रणी देशों में होगा इस काम में।
1: डॉक्टर अरोड़ा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन रिगार्डिंग मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इशू। व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स ड्यूरिंग द लास्ट 12 इयर्स?
0: वी हैव जस्ट सीन लास्ट 2 डेज सम ऑफ द रीसेंट डेटा। वन ऑफ द की इशू

0: news which has been bothering all of us was stunting in children. And stunting has been traditionally recognized as the quality of health services. And during last, between NFHS 5 and 6, I think the stunting has decreased by 12 or 14 percent points. Now, this is remarkable because this is जिसको कहते हैं बिल्कुल फंसी हुई चीज थी, जिसको ठीक करने में बहुत ही मेहनत लग रहा था. और ये देश भर में पोषण कार्यक्रम शुरू हुआ, महिलाओं का एम्पावरमेंट, उनके पोषण पे विशेष ध्यान देना, उस दिशा में जो काम हुआ है. तो अब हमने देखा है कि बच्चों में जो स्टंटिंग, हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे अपनी पूरी ऊंचाई को प्राप्त और लंबाई को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, वो अब आ गए हैं 29% पे लगभग. लेकिन अभी काम करने की जरूरत है, वो है अनीमिया, खून की कमी है. अब वो गर्भवती महिलाएं हैं, हमारी किशोरी बिटिया लोग हैं और बाकी बच्चों में ये अनीमिया की समस्या ऐसी है. इसकी तरफ जो है अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम आरंभ किया गया है और उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं. लेकिन वो विकास में और मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देश के डिफरेंट हिस्सों में अनीमिया के कारण अलग अलग हो सकते हैं और खाने में खासतौर पे उस चीजों का विशेष ध्यान रखना है. तो कुल मिलाकर के, और एक तीसरी चीज जो महिलाओं के लिए विशेष तौर पे रहा है, कि एक समय था जब हमारे यहाँ केवल 27% महिलाएं अपना प्रसव जो है एक संस्था में करती, चाहे
1: जी
0: सरकारी चाहे प्राइवेट में. आज वो बढ़कर के लगभग 95% हो गया है. ये भी एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. और इसकी वजह से नवजात शिशुओं की मृत्यु, असमय मृत्यु से उसको कम किया गया है. और साथ ही साथ जो हमारी महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी, मैटरनल मोर्टेलिटी, वो एकदम नीचे आ गई है. तो कुल मिलाकर के हम देखते हैं कि जो हमारी माताएं हैं और बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में जो प्रोत्तर विकास हुआ है, उस विकास में एक तेजी आई है, मृत्यु दर में कमी हुई है, चाहे वो माँ हो चाहे नवजात शिशु हो. और इसमें भी हम लोग पूरी कोशिश की जा रही है कि 2030 तक, उससे पहले ही जो हमारे SDG गोल्स हैं उनको
1: जी
0: हम प्राप्त कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन चीजों की उपलब्धि प्राप्त कर सकें जिसमें ज्यादातर देश प्राप्त नहीं कर पाए हैं हमारी तरफ.
1: बिल्कुल। अगर डॉक्टर पॉल आपसे बात करूं, कोरोना के टाइम की जब कभी याद आती है तो अब भी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन उस समय जो भारत की रणनीति थी उसको पूरे विश्व में सराहा गया, दो इट वॉज अ मेजर चैलेंज फॉर अस। सो व्हाट मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टू स्ट्रेंथन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सिंस द COVID-19 पेंडेमिक?
2: उसके बाद में हमने अपनी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया. एक वन हेल्थ मिशन देश में लॉन्च किया गया. उसका तात्पर्य यह है कि जो महामारियां हम अभी देख रहे हैं पिछले दशकों में, और कोविड की महामारी को भी देखा और आगे देखते हैं, तो ये लगता है कि महामारी का जो ओरिजिन है, जो वायरस है, वो एनिमल किंगडम से आता है, बैट से, चमगादड़ से आता है, या बर्ड से आता है, चिकन से आता है. अब इन सब चीजों को समझते हुए क्लियर हो गया है कि हम एनिमल किंगडम से अलग नहीं है, हम वाइल्ड लाइफ के सिस्टम से अलग नहीं है, हम जो हमारा लाइफ स्टॉक है, घरेलू जानवर है, उनसे अलग नहीं है, हम एनवायरमेंट, जंगल, इन सब से सभी जुड़े हुए. तो वन हेल्थ के अप्रोच के द्वारा इन सब सेक्टर्स को और इन सब डायमेंशंस को जोड़ के एक जो मिशन बनाया गया है, उनके अंतर्गत जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है कि कहाँ पे क्या बीमारी हो रही है, पशु में भी क्या हो रही है, ह्यूमन में भी क्या हो रही है, उसको जीनोमिक लेवल तक जाके समझना और उसके बारे में देखना कि वो कैसे प्रोग्रेस हो रहा है, उसको कंटेन कैसे करना है. तो ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट का एक सिस्टम वन हेल्थ के अंतर्गत बनाया गया है. हमारे सर्वेलेंस की पद्धतियों को स्ट्रांग किया गया है. हमारे जो इंडस्ट्री है और साइंस एकेडमी का सिस्टम है, उनको अलर्ट करके उनकी अप्रोच करा गया है कि जो वायरसेस महामारी का रूप दे सकते हैं या उनसे मिलते जुलते हैं, उनके लिए अपनी रिसर्च को बढ़ाओ, उनके लिए तैयार रहो कि पहले से ही वैक्सीन की रिसर्च हमारी बहुत आगे तक हो, ताकि अगर मुसीबत आती है तो हम जल्दी से जल्दी 100 दिन के भीतर वैक्सीन को पैदा करने की ताकत रखें. इसके अलावा जो रिस्पांस है ग्राउंड से, जो रिस्पांस है हमारा, जो एक IDSP का सिस्टम है, 2 लाख से भी ज्यादा जगह से हमें इन्फॉर्मेशन आती है, उसको सशक्त किया गया है. सिंड्रोमिक अप्रोच ICMR ने डिटेक्ट करने का सिस्टम को सशक्त किया गया. वेस्ट वाटर सर्विलेंस भी करा जाए कि सुएज में क्या वायरसेस आ रहे. काफी बड़े तौर पे इन सारे को, पिछले लेसन

0: को लेकर और आज की साइंस को जोड़ते हुए हमने अपनी व्यवस्थाओं को बहुत स्ट्रांग किया है। और ये जो फ्यूचर के लिए हमारी बायो सिक्योरिटी है, फ्यूचर के लिए हमारी जो हेल्थ सिक्योरिटी है, उसके लिए स्टेप जो है पूरे तरीके से लिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर पॉल, अगर बात करें आम आदमी को क्या चाहिए, अच्छी शिक्षा, आवास मिल जाए और अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हो और किफायती दाम पर जब आपको दवाएं मिलती हैं तो उससे बड़ी बहुत ही सुखद एहसास नहीं हो सकता एक आम आदमी के लिए। तो जन औषधि केंद्र ऐसे में कितने महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं?
0: जन औषधि केंद्रों के द्वारा हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन जो गुणवत्ता में पूरी उतरती है उनको उपलब्ध किया जाता है। देश में 19,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्रों का जाल बिछा हुआ है और बहुत तेजी से इसको 25,000 तक लगाने की प्लान है। इसमें हर रोज 10 लाख से ज्यादा व्यक्ति अपनी दवाइयां खरीदते हैं
1: जी।
0: किफायती दाम पे मिलती हैं। मार्केट में जो रेट होता है उससे आधी और कई दवाइयां तो सिर्फ 10% तक भी नीचे उनको उसका प्राइस से मिलता है। बहुत फायदा होता है। अगर हम देखें जब से ये प्रोग्राम चालू हुआ है तो लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बचत भारत के नागरिक समाज को इस कार्यक्रम की वजह से उपलब्ध हुई है। और ये कार्यक्रम के द्वारा जो जन औषधि केंद्र हैं ये सब जगह, सब प्रदेशों में, सब जिलों में इसका डायमेंशन दिखाई देती है, इनकी प्रेजेंस दिखाई देती है। और दवाइयों के अलावा जो मेंस्ट्रुएशन के लिए पैड्स की भी उपलब्धि की गई है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, और जब से ये वाला कार्यक्रम शुरू हुआ है 105 करोड़ से ज्यादा सुविधा नैपकिन जो है मेंस्ट्रुअल नैपकिन दिए गए जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है। तो ये दो काम कर रहा है, एक तो गुणवत्ता की दवाइयां मिल रही हैं, दूसरा व्यक्ति को बचत हो रही है और तीसरा इसकी वजह से एक्सेस बढ़ती है, व्यक्ति सेवाएं ले पाता है, इस्तेमाल करता है तो बीमारी रुकती है और उसका जो जायजा है वो हम रुपयों में नहीं ले सकते। इतना बड़े भले का ये कार्यक्रम है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, नए भारत की जो स्वास्थ्य क्रांति की यात्रा है केवल नीतियों और आंकड़ों की कहानी नहीं है बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन में आए वास्तविक परिवर्तन की गवाही भी है। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर अरोड़ा, आप दोनों का धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए।
2: बहुत बहुत शुक्रिया,
0: धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार के 12 साल नए भारत की स्वास्थ्य क्रांति। इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर वीके पॉल और बिलासपुर एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: In the special series, you were listening to a discussion on 12 years of the Modi government transforming healthcare. Participants were Dr. V.K. Paul, former member Niti Aayog, and Dr. N.K. Arora, President, Ames Bilaspur. Moderator was Priyanka Arora. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
5: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की सायंकालीन सभा यहीं समाप्त होती है। अगली सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।